0: मीडियम एम 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। श्रोताओं, उठिए, जागिए, देखिए नई सुबह आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सूर्य उदयमान हो रहे हैं, उनकी ओर देखिए, कितनी नई सारी, कितनी ढेर सारी ऊर्जा, नई संभावनाएं आपके लिए लेकर आया है नया दिन। तो उठिए, जागिए, आँखों को मलिए, धोइए और ट्यून इन कीजिए आकाशवाणी लखनऊ और जुड़िए हमारे बेहतरीन कार्यक्रमों के साथ। और प्रत्येक दिन नई संभावनाएं लेकर आता है, नई ऊर्जा लेकर आता है और न जाने कितने सारे रहस्य छुपे हैं आज के दिन में। तो फिर मुस्कुरा कर, बाहें पसार कर इस प्यारी सी सुबह का स्वागत कीजिए। दिल से प्रसन्न होइए, मन को शांत रखिए और प्रसन्न होइए। अपने इष्ट, अपने आराध्य का स्मरण कीजिए और इस प्रातःकालीन बेला में शुरुआत कीजिए आज के इस ऊर्जावान दिन की। श्रोताओं, कार्यक्रम आरंभ हो गया है नमस्कार लखनऊ, और आज नमस्कार लखनऊ में आपके साथ हूँ मैं, नंदिनी मिश्रा। स्वीकार करें नमस्कार नंदिनी का। फिलहाल सुबह के 6 बजने वाले, आइए आपको सुनवाते हैं हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट

में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वांस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब हॉर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज़्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दोस्तों, कार्यक्रम आरंभ हो गया। नमस्कार लखनऊ। और नमस्कार लखनऊ में सबसे पहले बात कृषि की। तो आज की कृषि चर्चा में सुगंधित धान की उन्नत कृषि तकनीक, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर सी आर राम कनौजिया।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां खरीफ में सुगंधित धान उत्पादन की योजना बनाए हैं, तो इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र पचपेड़वा बलरामपुर से वैज्ञानिक सस्य विज्ञान डॉक्टर सियाराम कनौजिया साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जहां सुगंधित धान उत्पादन करना चाहते हैं किसान भाई बहन, तो क्या सलाह है आपकी?
2: सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा कि किसान भाई परंपरागत तरीके से सामान्य धान की खेती करते हुए चले आ रहे हैं, उसमें समय पे मजदूरों की उपलब्धता ना होना और क्रांतिक निवेशों का अत्यधिक महंगा हो जाना और लाभकारी मूल्य ना मिल पाना, इससे जो सामान्य धान की खेती है वो आज किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध नहीं हो पा रही है। ऐसी परिस्थिति में यदि किसान भाई सुगंधित धान की खेती करते हैं तो उनको उससे अच्छा लाभ मिल सकता है।
1: तो उन्नत प्रजातियां कौन कौन

0: सी हैं डॉक्टर साहब जो चुन सकते हैं?
1: देखिए, किसान भाइयों को बताना है कि उन्नत प्रजातियों में सुगंधित धान की जो बासमती समूह की कुछ प्रजातियां हैं, और कुछ प्रजातियां जो हमारे लोकल जो हमारे क्षेत्र विशेष की हैं, जिसमें काला नमक की हैं, अच्छी प्रजातियां हैं। इन प्रजातियों का चयन करके वो अपने खेत में उसको लगा करके उससे अच्छा उत्पादन लेकर के अच्छा लाभ कमा सकते हैं, जिसमें बासमती ग्रुप में पूसा बासमती एक है, पूसा सुगंध एक, पूसा सुगंध दो, चार, पूसा सुगंध पाँच, इस तरह की कई ऐसी बासमती ग्रुप की प्रजातियां हैं, जिसमें कुछ काला नमक की नई प्रजाति जो अभी पिछले दो सालों से वो रिलीज हो चुकी है और वो आई है, जिसे वो बौना काला नमक है, जिसमें पूसा नरेंद्र काला नमक एक और पूसा काला नमक CRD2, ये बौनी काला नमक है। ये बहुत ही अच्छी प्रजाति है और ये शॉर्ट स्टेचर होता है इसका, लंबी नहीं होती है और एक लॉजिंग भी नहीं होती, गिरती भी नहीं है और लगभग 4 क्विंटल बीघे जो है इसका उत्पादन भी हो जाता है।
0: अगर एकड़ में बात करें तो?
1: एकड़ में बात करते हैं तो कम से कम जो है 20 क्विंटल प्रति एकड़ उपज इसकी प्राप्त हो जाती है।
0: तो जो काला नमक और

0: ये बोनी काला नमक है, ये बहुत ही अच्छी प्रजाति है और ये शॉर्ट स्टेचर होता है इसका, लंबी नहीं होती है और एक लॉजिंग भी नहीं होती, गिरती भी नहीं है और लगभग 4 क्विंटल बीघे जो है इसका उत्पादन भी हो जाता है।
1: अगर एकड़ में बात करें तो?
0: एकड़ में बात करते हैं तो कम से कम जो है 20 क्विंटल प्रति एकड़ उपज इसकी प्राप्त हो जाती है।
1: तो जो काला नमक और बासमती ग्रुप की प्रजातियां हैं सुगंधित धान की, डॉक्टर साहब उनकी खासियत क्या आप महसूस करते हैं जो नई प्रजातियां हैं?
0: देखिए, जो हमारी काला नमक की जो नई प्रजाति है उसमें खासियत एक चीज़ आई, जो पुरानी हमारी काला नमक हुआ करती थी वो एक तो लंबी होती थी और लॉन्ग ड्यूरेशन की होती थी और आजकल उसमें एक समस्या आ रही है कि लास्ट में उसमें दाने भरने की समस्या हो रही, दाने नहीं भर पा रहे हैं उसमें और लॉजिंग की समस्या है,
1: यानी गिर जाती है।
0: और ले दे करके उपज जो हमारी होती है वो बहुत ही कम होती है, 1-1.5 क्विंटल पर बीघे मान के चलिए, इससे ज़्यादा उपज नहीं हो पाती है, इसलिए जो है ये थोड़ा अब लाभकारी सिद्ध नहीं हो पा रही है। इसी का इम्प्रूवमेंट करके हमारे वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया है, रिसर्च करके ये दोनों प्रजातियों को निकाला है, ये सारी कमियाँ इसकी निकाल दी गई हैं, उपज भी अच्छी मिल रही है और अच्छी सुगंध भी मिल रही है इन दोनों प्रजातियों से।
1: डॉक्टर साहब, जो भी सुगंधित धान की उन्नत प्रजातियां हैं उनके नर्सरी प्रबंधन में क्या कुछ खास है और कब तक नर्सरी पड़ सकती है अगर 1 एकड़ रोपाई के लिए करना है तो?
0: सबसे पहले तो किसान भाइयों को ये मान लेना है कि जो सुगंधित धान की खेती अगर वो करने जा रहे हैं तो नर्सरी डालते समय उनको समय का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ये सुगंधित धान हमारा है और इस सुगंधित धान की बालियां जब 20 अक्टूबर के बाद में निकलती हैं तब जा करके उसमें जो है अच्छी सुगंध मिल पाती है। ऐसी परिस्थिति में उनको जो नर्सरी डालना है वो 15 जून से 30 जून तक नर्सरी डालना है उसमें, और रोपाई जो हो वो जुलाई के अंतिम सप्ताह तक होनी चाहिए, तब जा करके आगे चल करके उनको 20 अक्टूबर के बाद जब उसमें बालियां निकलेंगी तो अच्छी सुगंध उनको मिलेगी उसमें।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे सुगंधित धान के उन्नत कृषि तकनीक के बारे में, अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र पचपेड़वा बलरामपुर आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 9450-31-34-71 9450-31-34-71 9450-31-34-71। हम सभी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहेंगे, जो किसान भाई ज़्यादा खेती करना चाहते हैं अपने धान की, ज़्यादा क्षेत्रफल उनके पास में है उसमें कम से कम सुगंधित धान की खेती 1 एकड़ तो अवश्य रखें और दोनों का कंपैरिजन करके देखें कि किसमें उनको लाभ ज़्यादा मिल रहा है और धीरे धीरे सुगंधित धान की खेती का क्षेत्र पर वो बढ़ावें जिससे उनको धान की खेती में लाभ प्राप्त हो सके।
1: डॉक्टर सियाराम कन्नौजिया साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और सुगंधित धान की उन्नत कृषि तकनीक क्या है इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी, डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो कृषि चर्चा में आज श्रोताओं आपने जाना सुगंधित धान की उन्नत कृषि तकनीक के बारे में, जानकारी दे रहे थे डॉक्टर सियाराम कन्नौजिया और आपसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसी के साथ अब हमारे आज की कृषि चर्चा संपन्न हुई और अब कार्यक्रम नमस्कार लखनऊ में हम आगे बढ़ते हैं और जैसा कि आप सभी जानते हैं आज है शुक्रवार, तो आज बात गांधी

दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास। इस पुस्तक में महात्मा गांधी ने एक जगह लिखा है कि यहूदियों की नाटकशाला में 11 सितंबर 1906 को एक सभा हुई। ट्रांसवाल के भिन्न भिन्न शहरों से प्रतिनिधियों को सभा में बुलाया गया। सभा हुई, नाटकशाला में पांव रखने की जगह भी नहीं थी। सब लोगों के चेहरों पर मैं ये भाव देख सकता था कि कुछ नया काम हमें करना है, कुछ नई बात होने वाली है। ट्रांसवाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अब्दुल गनी सभा के सभापति पद पर आसीन थे। सभा में जितने प्रस्ताव पास हुए थे उनमें सच्चा प्रस्ताव तो एक ही था। उसका आशय इस प्रकार था कि इस बिल के विरोध में सारे उपाय किए जाने के बावजूद अगर वो धारा सभा में पास हो ही जाए तो हिंदुस्तानी उसके सामने हार न माने और हार न मानने के फलस्वरूप जो दुख भोगने पड़े उन सबको बहादुरी से सह

ये प्रस्ताव मैंने सभा को अच्छी तरह समझा दिया। सभा ने शांति से मेरी बात सुनी। सभा का सारा कामकाज हिंदी में या गुजराती में ही चला, इसलिए किसी को कोई बात समझ में ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। एक वक्ता सेठ हाजी हबीब थे। वे भी दक्षिण अफ्रीका के बहुत पुराने और अनुभवी निवासी थे। उनका भाषण बड़ा जोशीला था। आवेश में आकर वे यहां तक बोल गए कि ये प्रस्ताव हमें खुदा को हाजिर मानकर पास करना चाहिए। मैं इस सभा में आए हुए सब लोगों को ये सलाह देता हूं कि वे भी खुदा को हाजिर मानकर ऐसी कसम खाएं। इस प्रस्ताव के समर्थन में अन्य लोगों ने भी तीखे और जोशीले भाषण किए। जब सेठ हाजी हबीब बोलते बोलते कसम की बात पर आए तब मैं चौंका और सावधान हो गया। तभी मुझे अपनी जिम्मेदारी और हिंदुस्तानी कौम की जिम्मेदारी का पूरा भान हुआ। आज तक कौम ने अनेक प्रस्ताव पास किए थे। अधिक सोचने विचारने के बाद या नए अनुभवों के बाद उन प्रस्तावों में परिवर्तन भी किए गए थे। सिद्धांत की दृष्टि से सोचा जाए तो किसी निश्चय में और ईश्वर का नाम लेकर की गई प्रतिज्ञा में कोई भेद नहीं होना चाहिए। जब बुद्धिशाली मनुष्य सोच समझ कर कोई निश्चय करता है तो वो अपने निश्चय से कभी डगता नहीं। उसकी दृष्टि में उस निश्चय का महत्व तो उतना ही होता है जितना कि ईश्वर को साक्षी रखकर की गई प्रतिज्ञा का। लेकिन दुनिया सैद्धांतिक निर्णयों के आधार पर नहीं चलती। वो ईश्वर को साक्षी रखकर की गई प्रतिज्ञा और सामान्य निश्चय के बीच महासागर जितना भेद मानती। किसी सामान्य निश्चय को बदलने में बदलने वाले को शर्म नहीं आती, लेकिन ईश्वर को साक्षी रखकर प्रतिज्ञा करने वाला मनुष्य जब प्रतिज्ञा को भंग करता है तब वो खुद ही नहीं शर्माता, समाज भी उसे धिक्कारता है और पापी मानता है। इस बात ने मानव मन में इतनी गहरी जड़ जमा ली है कि कानून की दृष्टि में भी कसम खाकर कही गई बात अगर झूठी साबित हो तो कसम खाने वाला आदमी अपराधी माना जाता है और उसे कड़ी सजा दी जाती है। ऐसे विचारों से भरा हुआ मैं, जिसे गंभीर प्रतिज्ञाओं का काफी अनुभव था और जिसने प्रतिज्ञाओं के मीठे फल जीवन में चखे थे, सेठ हाजी हबीब के कसम खाने वाले सुझाव से चौंक उठा। मैंने उसके परिणामों का अनुमान एक क्षण में लगा लिया। इस घबराहट से मुझमें उत्साह और जोश पैदा हुआ और यद्यपि मैं उस सभा में प्रतिज्ञा करने या दूसरों से कराने के इरादे से नहीं गया था तो भी मुझे सेठ हाजी हबीब का सुझाव बहुत पसंद आया। इसलिए मैंने सभापति से कहा कि मुझे सेठ हाजी हबीब के कथन का गूढ़ अर्थ सभा को समझाने की इजाजत दी जाए। मुझे इजाजत मिली और मैं खड़ा हो गया। मैं तो ये मानता हूं कि जो मनुष्य सावधान रहकर शुद्ध बुद्धि से प्रतिज्ञा करता है और बाद में उसे भंग करता है वो अपनी इंसानियत अथवा मनुष्यता खो देता है। और जिस प्रकार पारा चढ़ाया हुआ तांबे का सिक्का रुपया नहीं है ये पता चलते ही उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती बल्कि उस खोटे सिक्के का मालिक सजा का पात्र हो जाता है, उसी प्रकार झूठी कसम खाने वाले आदमी की भी कोई कीमत नहीं रह जाती।

गांधी चर्चा संपन्न हुई। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। नमस्कार लखनऊ में श्रोताओं, आइए अब आरंभ करते हैं आज की आराधना।

ईश्वर का आराधन, उनका वंदन मन को पवित्र और शांत कर देता है। इसलिए प्रयास करें कि ईश्वर की आराधना में अपने मन को अवश्य रमाएं।

व्यक्ति भरोसा अगर स्वयं पर रखता है तो वो उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा बन जाता है, और अगर वो विश्वास अपने ईश्वर पर रखता है तो वो उसकी सबसे बड़ी ढाल बन जाता है।

ईश्वर अपने भक्तों को कभी भी ऐसे मार्ग पर नहीं भेजते जिन्हें वे पार ना कर सके। इसलिए व्यक्ति को कभी भी संघर्षों से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर पहले से ही उन समस्याओं से, उन तकलीफों से लड़ने की अद्भुत शक्ति और ऊर्जा विद्यमान होती है।

मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, वो जैसा सोचता है, जैसा समझता है, चीज़ों को जैसे ग्रहण करता है और जैसा विश्वास करता है वो वैसा ही बन जाता है। इसी के लिए कहा गया है कि सदैव अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, जीवन में आपकी नई ऊर्जा, नई संभावनाएं, नई कोशिशें, प्रयास करते रहिए तो नए नए अवसर आपके जीवन में आते रहेंगे और नई ऊर्जा का संचार आपके जीवन में होगा।

इसी भक्ति रचना के साथ और इस शुभेच्छा के साथ कि हमारे सभी श्रोताओं का आज का दिन अति उत्तम बीते, आप सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहे, आपको अपनों का साथ मिले और आप एक सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण करने में अपना संपूर्ण सहयोग प्रदान करते रहे, इस शुभेच्छा के साथ, इस शुभकामना के साथ अब हमारी आज की आराधना यहीं पर सम्पन्न होती है।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीत में प्रस्तुति। आज लीजिए सुनिए इसका भाग 207। इसके अंतर्गत हम आपको सुनाने जा रहे हैं अयोध्या कांड का वो प्रसंग जिसमें सीता जी को स्वप्न में भरत के आने का आभास होता है और श्री राम के व्यथित और चिंतित होने का वर्णन आता है।

श्री राम के प्रेम में शिथिल पड़ गए अयोध्यावासी। मात्र दो ही कोस चल पाए थे कि दिन ढल गया। अतः उपयुक्त स्थान देख सबने बिना खाए पिए वहीं रात्रि विश्राम किया। उस रात सीता जी ने स्वप्न में देखा कि प्रभु के वियोग में भरत संतप्त शरीर लिए पूरे समाज के साथ वहां पधारे हैं। सभी लोग उदास और दुखी हैं। साधुओं की सूरत बदली हुई है। सीता का स्वप्न सुनकर श्री राम व्यथित हो गए। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि ये स्वप्न अच्छा नहीं है, अवश्य ही कोई अशुभ समाचार सुनने को मिलेगा। चित्त की शांति के लिए उन्होंने स्नानादि करके त्रिपुरारी का पूजन तथा साधु संतों का सम्मान किया। देवताओं मुनियों आदि का वंदन कर श्री राम उत्तर दिशा में देखने लगे, जिधर आकाश में धूल छा रही थी। पशु पक्षी आश्रम की ओर भागते आ रहे थे। मन में चिंता हो आई, क्या बात है। उसी समय कोल फीलों ने भरत शत्रुघ्न के आगमन का समाचार सुनाया। श्री राम हर्षित हो गए। फिर ये सुनकर कि भरत शत्रुघ्न के साथ चतुरंगिणी सेना भी है, शंका हुई कि इस प्रकार उनके आने का क्या कारण हो सकता है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। आज आपने सुना इसका भाग 207। इसी के साथ श्री रामचरितमानस से गान संपन्न हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर श्रोताओं कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ। नमस्कार लखनऊ, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से, आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।

0: मुझे बहुत खुशी है आपका नाइस एवियन और पेरिस दौरे के लिए स्वागत करते। फ्रांस भारत की दोस्ती अमर रहे। फ्रांस राष्ट्रपति प्रधानमंत्रिणः मोदिनः एतं प्रवासं अतीव फलदायकम् इति उद्घोषयत्। प्रवासार्थं च कार्तज्ञ भावं ज्ञापितवान्। आगामी फरवरी मासे पुनः मेलनस्य आकांक्षां प्रकटयन् सः अवोचत् यत् प्रवासाय अस्माकं मैत्रीभावाय च धन्यवादः। वयं शीघ्रमेव फरवरी मासे पुनः मेलनाय प्रतीक्षामहे। जय हिंद। केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आभासीय माध्यमेन चतुर्णां राज्यानां कृते MSP इति न्यूनतम समर्थन मूल्येन बृहत् परिमाणे तिलहन क्रयणस्य स्वीकृतिम् अयच्छत्। कृषि मंत्रालयानुगुणम् एषः क्रयण संकल्पः तमिलनाडु गुजरात उत्तर प्रदेश हरियाणा इत्येतेषु राज्येषु मूल्य समर्थन योजनान्तर्गतं प्रचलति। अस्मिन् ग्रीष्मकालीन ऋतौ उत्तर प्रदेशः सर्वबृहत् लाभार्थी राज्यत्वेन उदितः, यस्य कृते 98.2 लाख मेट्रिक टन मितं मुद्गम 97.7 लाख मेट्रिक टन मितं माश अथ च 18.7 लाख मेट्रिक टन मितं कलाय क्रयणस्य अनुमतिः दत्ता। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयस्य सचिवः संतोष कुमार सारंगी न्यगादीत् यत् दृढ़ नीतिगत संरचनया अभिनव सर्वकारीय प्रयासैः भारतम् अद्य जगति नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रे प्रमुख देशत्वेन समुदेति। नवदिल्ल्याम् आयोजिते हरित एवं सतत विकास संधिः इत्याख्ये दशमे संवाद सत्रे नवीकरणीय ऊर्जा ऊर्जा सुरक्षा इति विषये भाषमाणः श्री सारंगी गत दशके भारतस्य अभूतपूर्व प्रगतेः उल्लेखं कृतवान्। तेन प्रतिपादितं यत् एषः विकासः मुख्यतया नवीकरणीय क्रयण अनिवार्यता प्रतिस्पर्धात्मक निविदा दिशानिर्देशाः सहैव स्वचालित मार्गेण 100% वैदेशिक प्रत्यक्ष निवेशं करोति इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र, धड़कन देश की। दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है नमस्कार लखनऊ, और नमस्कार लखनऊ में हम प्रतिदिन आपको ढेर सारे विषयों पर बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां देते हैं, और स्वास्थ्य की अगर बात हो तो उसके लिए भी हम बहुत सचेत रहते हैं। तो आज की स्वास्थ्य चर्चा का विषय है, ज़रूरी है पैरों की देखभाल। तो आइए सुनते हैं आज की स्वास्थ्य चर्चा।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, हमारा आज का विषय है पैरों का स्वास्थ्य, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे पैर न केवल हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखते हैं, बल्कि ये दिन भर की थकावट झेलते हैं। बावजूद इसके हम अपने पैरों की देखभाल पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि स्वस्थ पैर पूरे शरीर की सेहत के लिए कितने जरूरी हैं? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। पैर हमारे शरीर का वो हिस्सा है जिन पर हमारा पूरा वजन टिका होता है। दिन भर चलने फिरने, खड़े रहने और गतिविधियों में शामिल रहने के कारण पैर काफी दबाव झेलते हैं। अगर समय पर इनकी देखभाल ना की जाए तो ये छोटी छोटी समस्याएं बड़ी परेशानियों का रूप धारण कर सकती हैं। पिंडलियों में दर्द, एड़ी में दरारें, पैरों में सूजन या संक्रमण जैसी समस्याएं आम हैं, लेकिन इनका सही समय पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले पैरों को साफ रखना बेहद जरूरी है। दिन भर के दौरान धूल मिट्टी और पसीने के कारण पैरों पर बैक्टीरिया और गंदगी जमा हो सकती है, जो संक्रमण का कारण बनती है। हर दिन अपने पैरों को गुनगुने पानी और माइल्ड साबुन से धोएं। खासकर पैरों की उंगलियों के बीच की जगह को साफ करना न भूलें, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा गंदगी जमा होती है। सफाई के बाद पैरों को सूखा रखें और मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें, ताकि त्वचा में नमी बनी रहे और एड़ियां फटने से बच सकें। पैरों की देखभाल में सही जूते पहनना भी बेहद महत्वपूर्ण है। जूते आरामदायक होने चाहिए और पैर में अच्छे से फिट होने चाहिए। टाइट जूते पहनने से न

0: केवल चलने में परेशानी होती है बल्कि ये पैरों में छाले और दर्द का कारण भी बन सकते हैं। वहीं ज्यादा ढीले जूते पैर में सही पकड़ नहीं बना पाते, जिससे चलने फिरने में संतुलन बिगड़ सकता है। कोशिश करें कि आपके जूते पसीने को सोखने वाले और हवादार हों, ताकि पैर दिन भर ताजगी भरे रहें। पैरों की थकावट दूर करने के लिए इन्हें नियमित रूप से आराम देना भी बेहद जरूरी है। दिन भर के कामकाज के बाद गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक या एसेंशियल ऑयल डालकर उसमें अपने पैर डालें। ये न केवल थकावट को कम करेगा बल्कि रक्त संचार को भी बेहतर बनाएगा। इसके अलावा पैरों की मसाज करना एक बेहतरीन तरीका है, जो मांसपेशियों को आराम देने के साथ साथ त्वचा को भी नरम बनाए रखता है। पैरों के स्वास्थ्य के लिए एक्सरसाइज भी बेहद महत्वपूर्ण है। हर दिन कुछ मिनट अपने पैरों को स्ट्रेच करने और हल्के व्यायाम करने में लगाएं। ये न केवल पैरों की ताकत बढ़ाता है बल्कि शरीर के निचले हिस्से में रक्त प्रवाह को भी बेहतर बनाता है। इसके अलावा अगर आप लंबे समय तक खड़े रहते हैं तो बीच बीच में अपने पैरों को थोड़ा आराम दें। सर्दियों में पैरों की देखभाल पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है। ठंड के मौसम में पैरों की त्वचा रूखी और बेजान हो सकती है। इसके लिए गुनगुने नारियल तेल या शिया बटर का इस्तेमाल करें। नियमित रूप से पैरों पर ये तेल लगाएं, ताकि त्वचा नरम बनी रहे और एड़ियां फटने की समस्या से बचा जा सके। पैरों से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। अगर आपको पैरों में लगातार दर्द, सूजन या लालिमा दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डायबिटीज के मरीजों के लिए पैरों की देखभाल और भी जरूरी है, क्योंकि उनकी त्वचा संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। आयुर्वेद में भी पैरों की देखभाल को महत्वपूर्ण बताया गया है। पैरों में तेल की मालिश करने से न केवल थकावट कम होती है बल्कि ये शरीर की ऊर्जा को भी संतुलित करता है। इसके अलावा गर्म पानी में पैर डुबोने से फंगल संक्रमण और बैक्टीरिया से बचाव होता है। श्रोताओं, पैरों की देखभाल को नजरअंदाज न करें। ये छोटे छोटे कदम आपके पूरे शरीर की सेहत पर बड़ा असर डाल सकते हैं। पैरों की साफ सफाई, सही जूते, नियमित मसाज और एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। याद रखें, स्वस्थ पैर ही एक सक्रिय और खुशहाल जीवन की नींव है। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: तो स्वास्थ्य चर्चा में श्रोताओं, आपने जाना जरूरी है पैरों की देखभाल। और इसी के साथ अब नमस्कार लखनऊ में वक्त हो गया है कि हम आपको आज अपनी विभिन्न सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में बता दें।

आज रात 11:10 पर सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज का विषय होगा पर्यावरण। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। आज रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में सुनिएगा ललित पोखरिया से की गई भेंटवार्ता, कला संस्कृति और चेतना का संगम रंगमंच। आपसे बातचीत करेंगे सुरेंद्र राजेश्वरी। शाम 7:30 पर अंग्रेजी कार्यक्रम में यू विल लिसन टू एन इंटरव्यू विद कम्युनिकेशन एक्सपर्ट एंड मीडिया कंसल्टेंट प्रियंका दीक्षित इन कॉन्वर्सेशन विद डॉक्टर शीबा राकेश। सुबह 9:15 पर जिले की हलचल में आज सुनिएगा संभल और बाराबंकी जिलों के बारे में। सुबह 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम आज आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश होगा। इसमें समाज फरमाइएगा मुबाहिसा, अहले बैत की कुर्बानियां और तारीख एक जायजा। मेहमान होंगे प्रोफेसर कमरून हसन और प्रोफेसर महफूज अली। अब से थोड़ी देर में यानी सुबह 7:10 पर विविधा में मेरे यानी नंदिनी मिश्रा के साथ आज का विषय है सकारात्मकता शक्ति है। हमारी दूसरी सभा में दिन में 1:15 पर बहने सुनेंगी अपना कार्यक्रम अपराजिता। दिन में 2:30

पर विज्ञान और किसान कार्यक्रम में डॉक्टर केशव कुमार जी की भेंटवार्ता सुनिएगा। पशुओं में चारा विषाक्तता कारण और निवारण, आपसे बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। हमारी दूसरी सभा आरंभ होती है शाम 5 बजे और शाम 5:10 पर युवा श्रोता सुनते हैं अपना कार्यक्रम युवा तरंग। शाम 5:45 पर कार्यक्रम होगा नई उड़ान। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर सौरभ राय की वार्ता सुनिएगा, परंपरा और प्रौद्योगिकी

कार्यक्रम होगा नई उड़ान। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर सौरभ राय की वार्ता सुनिएगा, परंपरा और प्रौद्योगिकी से बदलते गांव। किसान भाई सुनिए अपना कार्यक्रम खेती किसानी शाम 6:50 पर। इसमें कृषि समाचार पर आधारित किसान डायरी प्रसारित की जाएगी। आलेख एवं वाचन नवेद शिकोह का और संपादन डॉक्टर सुशील कुमार राय का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:30 पर और रात 10:30 पर आज सुनिएगा पखावज वादन। कलाकार होंगे राजकुमार झा। रात 8:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज सुनिएगा साबरी ब्रदर्स की गाई कुछ कव्वाली। और लोकगीत के कार्यक्रम लोक रंग में सुबह 9:50 पर और लोक माधुरी में दिन में 2:45 पर आज सुनिएगा प्रीति लाल के गाए कुछ अवधि लोकगीत। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। और अब से थोड़ी देर में श्रोताओं आप सुनेंगे आज की विविधा।

विविधा सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत है आज की विविधा।

आज की विविधा सकारात्मकता शक्ति है। दोस्तों, आज बात एक ऐसी शक्ति की जो ना दिखाई देती है ना छुई जा सकती है, लेकिन जब ये इंसान के भीतर जागती है तो उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है। वो शक्ति है सकारात्मकता। सकारात्मकता केवल अच्छा सोचने का नाम नहीं है, ये वो ताकत है जो अंधेरे में भी रोशनी जगा देती है, हार में भी सीख देख लेती है और टूटते हुए इंसान को फिर से खड़ा होने का साहस देती है। जीवन में हर व्यक्ति संघर्ष करता है, कोई आर्थिक परेशानियों से जूझ रहा है, कोई रिश्तों की उलझनों में फंसा है, कोई अपने सपनों को पूरा करने की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन आपने कभी गौर किया है कि समान परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग और मजबूत होकर उभरते हैं? फर्क केवल परिस्थितियों का नहीं होता, फर्क होता है सोच का। एक ही तूफान में कुछ पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं और कुछ मजबूती से खड़े रहते हैं, क्योंकि उनकी जड़ें गहरी होती हैं। उसी तरह सकारात्मक सोच हमारे मन की जड़ें मजबूत बनाती है।

हमेशा नहीं रहेगा। इतिहास गवाह है कि दुनिया के हर महान व्यक्ति ने कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन उन्हें महान उनकी परिस्थितियों ने नहीं बनाया, बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति उनका सकारात्मक दृष्टिकोण उन्हें महान बना गया। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसने कई बार असफलता देखी, लोगों की आलोचनाएं सुनी, रास्ते में हजारों बाधाएं आई, फिर भी उसने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उसके पास सकारात्मकता की शक्ति थी। सकारात्मकता कोई जादू नहीं करती, लेकिन ये हमें वो ऊर्जा देती है जिससे हम अपने जीवन का जादू स्वयं बना सके। कई बार जीवन हमें वहां ले जाता है जहां हम जाना नहीं चाहते, लेकिन बाद में समझ आता है कि वही रास्ता हमें वहां पहुंचाने के लिए जरूरी था जहां हमें पहुंचना चाहिए था। दोस्तों एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक किसान था, उसकी फसल लगातार 2 साल खराब हो गई। गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन किसान हर सुबह मुस्कुरा कर खेत में जाता और कहता, आज नहीं तो कल मेरी मेहनत रंग जरूर लाएगी। तीसरे साल उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे क्षेत्र में उसकी चर्चा होने लगी। जब लोगों ने उससे सफलता का रहस्य पूछा तो उसने कहा, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। यही सकारात्मकता की असली ताकत है।

जब जीवन हमारी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता, तब नकारात्मकता धीरे धीरे हमारे मन में घर करने लगती है। हमें लगने लगता है कि अब कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन यही पर सकारात्मकता हमारी सबसे बड़ी मित्र बनकर सामने आती है। सकारात्मकता कहती है, ये अंत नहीं है, ये केवल एक नया अध्याय है, ये हार नहीं है, ये एक सीख है, ये कठिन समय है, लेकिन

ये हमें परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनने देती, ये हमें याद दिलाती है कि हम अपनी परिस्थितियों से बड़े हैं। आज की दुनिया में नकारात्मक खबरें, आलोचनाएं, तुलनाएं और तनाव हर तरफ मौजूद है। ऐसे माहौल में सकारात्मक रहना कमजोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ी बहादुरी है। सकारात्मक व्यक्ति समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करता, वह उन्हें स्वीकार करता है लेकिन उनसे हार नहीं मानता। वो जानता है कि बारिश आएगी लेकिन ये भी जानता है कि बादलों के पीछे सूरज अभी भी मौजूद है। याद, यदि आपके जीवन में कभी कठिन समय चल रहा है, यदि आपको लग रहा है कि सब कुछ आपके खिलाफ है, तो बस एक बात याद रखिए, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है। आपके भीतर जितनी शक्ति है शायद आपको खुद भी उसका अंदाजा नहीं है। आपने आप पर विश्वास रखिए, अपने सपनों पर विश्वास रखिए और सबसे बढ़कर उस सकारात्मक ऊर्जा पर विश्वास रखिए जो आपको हर गिरावट के बाद फिर उठने की ताकत देती है। क्योंकि सकारात्मकता केवल एक विचार नहीं है, जीवन जीने का तरीका है। ये वो दीपक है जो अंधेरे को समाप्त नहीं करता लेकिन हमें अंधेरे में से बाहर आने का रास्ता दिखाता है। आज जब आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो अपने मन में एक वादा कीजिए, मैं परिस्थितियों से नहीं हारूंगा, मैं निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा, मैं हर दिन एक नई उम्मीद के साथ शुरुआत करूंगा क्योंकि मेरे भीतर सकारात्मकता की शक्ति है। और याद रखिए, जिस दिन इंसान अपनी उम्मीदों का दामन छोड़ देता है उसी दिन वो हार जाता है, लेकिन जो व्यक्ति सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ता रहता है उसे दुनिया की कोई ताकत लंबे समय तक नहीं रोक सकती। सकारात्मक शक्ति है, सकारात्मकता साहस है, सकारात्मकता सफलता का पहला कदम है।

0: दोस्तों, इसी के साथ आज की विविधा यहीं संपन्न हुई। अपनी दोस्त नंदिनी मिश्रा को दीजिए अनुमति किसी और दिन
1: सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया

0: मैं किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं। मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है।
1: सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 570 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कानपुर में प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला को संबोधित किया, कहा किसानों की आय बढ़ाना है सरकार की प्राथमिकता। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रदेश के 17 जिलों में भी आयोजित कार्यक्रमों को वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। UP ATS ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग्स के जुड़े दो संदिग्धों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी नेटवर्क के संपर्क में थे बुलंदशहर जिले के दोनों आरोपी। और आज आगरा में आयोजित हो रही है ब्रिक्स MSME फोरम और SME वर्किंग ग्रुप की बैठक, चीन, रूस और ब्राजील सहित 21 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल उन्नाव में 570 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 101 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ग्राम पंचायत डीह के हिंदूखेड़ा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार विरासत की रक्षा के साथ साथ विकास यात्रा को निरंतर गति प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री योगी ने कहा कि लखनऊ से उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल चलाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिससे आसपास के जिलों को बेहतर आवागमन सुलभ होगा।
3: अब लखनऊ में विकास जो भी होगा वो लखनऊ तक सीमित नहीं होगा, वह सीधे उन्नाव होते हुए कानपुर तक जाएगा। और इसके लिए जैसे दिल्ली के अंदर आप देखते होंगे, दिल्ली से देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली से मेरठ तक पहुंच गई है। एक प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं लखनऊ से हम उन्नाव होते हुए कानपुर तक रैपिड रेल के एक नए प्रस्ताव को लेकर के भी चल रहे हैं। एक रिंग रोड बनेगा पूरा चारों ओर, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, ये सब जिले आपस में जुड़ेंगे।
2: मुख्यमंत्री ने कल ही कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती पर आयोजित कार्यशाला में भी हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती कृषि को अधिक लाभकारी और पर्यावरण के अनुकूल बनाने का सशक्त माध्यम है। श्री योगी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें

0: सुविधाएं दे रही है।
1: प्रधानमंत्री कृषक बीमा योजना के माध्यम से उन अन्नदाता किसानों को फसल की गारंटी की सुरक्षा मिली, आपदा में गारंटी की सुरक्षा मिली। पहली बार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की गारंटी मिली, पहली बार अन्नदाता किसान के लिए प्रक्यूरमेंट के सेंटर स्थापित हुए और पहली बार अन्नदाता किसानों के लिए किसान सम्मान निधि की घोषणा। यानी एक एक कड़ी को जोड़ते गए, आपको जो फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिलती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उस बैग की कीमत होती है 4,000 रुपए, यहाँ पे यूरिया का दाम आपको मिलता है उसका 1/4 से भी कम में। ये सारी सब्सिडी भारत सरकार भरती।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जाएंगे। वो अयोध्या नगर निगम की कुल 291 करोड़ रुपए की लागत वाली 245 परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री देश भर के लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। योजना के तहत प्रदेश के लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी और मेरठ सहित 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी सेक्टरों में सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में बहुत मजबूती से समाया हुआ है और देश की सीमाओं को पार कर चुका है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव के एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कैसे प्राचीन ग्रंथों से लेकर वैश्विक मान्यता तक योग ने भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत में अपनी जड़ें जमाए रखते हुए सीमाओं को पार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
2: पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR News Gorakhpur और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड UPATS ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग से जुड़े बुलंदशहर जिले से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इन पर गैंग के आतंकी नेटवर्क से जुड़कर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि दोनों आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान स्थित नेटवर्क के संपर्क में थे। आगरा में आज भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पहले ब्रिक्स MSME फोरम और तीसरी SME वर्किंग ग्रुप की बैठक होगी। इस कार्यक्रम की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रखी गई है। ब्रिक्स फोरम की बैठक में ब्राजील, चीन, मिस्र, रूस, दक्षिण अफ्रीका और भारत सहित ब्रिक्स देशों और सहयोगी देशों के सहित नीति निर्माता, उद्योगपति और उद्यमी हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट।
3: बैठक में MSME के लिए वित्त और तकनीक तक पहुंच, सतत विकास तथा वैश्विक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्रिक्स SME फोरम से ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और MSME के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक

0: वातावरण विकसित करने की उम्मीद है। ये फोरम सहभागी देशों के ज्ञान का आदान प्रदान करने और उभरते अवसरों की पहचान करने और समावेशी और सतत आर्थिक विकास में योगदान देने वाली साझेदारियां बनाने का अवसर भी प्रदान करेगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए संभव अभियान के छठवें चरण की शुरुआत कल लखनऊ में प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास और पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। इसके लिए बच्चों का सुपोषित होना बहुत जरूरी है। मौसम विभाग ने आगामी 24 जून तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में कहीं कहीं लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस के क्रमिक बढ़ोतरी की भी संभावना जताई है। विभाग के मुताबिक प्रदेश के पश्चिमी जिलों में आज और कल, जबकि पूर्वी जिलों में आज कहीं कहीं बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्नाव में 570 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कानपुर में प्राकृतिक खेती पर कार्यशाला को संबोधित किया। कहा, किसानों की आय बढ़ाना है सरकार की प्राथमिकता। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रदेश के 17 जिलों में भी आयोजित कार्यक्रमों को वर्चुअल माध्यम से करेंगे संबोधित। यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग से जुड़े 2 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी नेटवर्क के संपर्क में थे बुलंदशहर जिले के दोनों आरोपी। और आज आगरा में आयोजित हो रही है ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और एसएमई वर्किंग ग्रुप की बैठक। चीन, रूस और ब्राजील सहित 21 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार आपसे थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: व्यक्त करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
2: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आज लीजिए सुनिए पखावज वादन। कलाकार है राजकुमार झा। आज आप प्रस्तुत कर रहे हैं पखावज पर राग चौताल।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में श्रोताओं आज आप सुन रहे थे पखावज वादन, कलाकार थे राजकुमार झा। आज आपने प्रस्तुत किया पखावज पर ताल चौताल। इसी के साथ अब हमारा आज का शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। और इसी के साथ नमस्कार लखनऊ भी यहीं संपन्न हुआ। सुबह के 8 बजने वाले हैं, समाचार प्रभात सुनवाने के लिए आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं।

0: प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान,
4: पीएम किसान।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और

0: हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP 2 गुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी 2 गुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
2: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैंने इसे दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
3: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा, बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत

0: देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलपूर्ति

0: द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुरी जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
2: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
3: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
2: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
4: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमरीकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्य के शब्द है, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल कम नहीं होंगे पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल

0: याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approves large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. Prime Minister Narendra Modi has said that India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today trust has become just as important alongside trade.
3: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके, और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
2: मिस्टर मोदी फर्दर सेड द कंट्री इज इन्वेस्टिंग अक्रॉस सेक्टर्स दैट विल ड्राइव ग्रोथ, इनोवेशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर जनरेशंस टू कम। Mr. Modi added that at the G7 meeting in Evian, he emphasized the importance of partnerships based on trust. He said India's message to the G7 summit was clear that global governance will only be effective when it is inclusive. Moreover, Mr. Modi said, he arrived in France when his government had completed 12 years and India has witnessed transformative growth across sectors in these years.
3: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
2: Earlier, the Indian community in France welcomed Prime Minister Modi with the message Bonjour Modi or Hello Modi and chants of Bharat Mata Ki Jai. Prime Minister Modi has left for New Delhi after concluding his successful and productive visit to Paris, marking the third leg of his two-nation visit to France and Slovakia. In a social media post,

0: Artificial intelligence means all-inclusive for us and dubbed India a tech hub, writes the Asian Age. And finally, the Indian Express reports that a massive 1,200-year-old oak tree in Sherwood Forest in Nottinghamshire, England, which is said to have once sheltered Robin Hood, has died. And with that, it's back to you, Sunil.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approve large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आलमी सतह पर गैर यकीनी और रुकावट की कैफियत के तनाजुर में दुनिया के लिए एक भरोसेमंद और मजबूत साझेदार के तौर पर उभर रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए कम से कम इमदादी कीमत पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद की मंजूरी दे दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में सिकल सेल के बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ समझौते के हिस्से के तौर पर ईरान की बंदरगाहों पर अमेरिकी बहरिया की नाकाबंदी हटा ली है। और हॉकी में न्यूजीलैंड में जारी खवातीन के एफआईएच नेशंस कप में भारत ने उरुग्वे को 2-3 से हराकर मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल की है और वो सेमीफाइनल में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार के तौर पर उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय बिरादरी के लोगों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि एक वक्त ऐसा भी था कि जब मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की नौइयत को सिर्फ तिजारत से ही परखा जाता था, लेकिन आज भरोसा भी उतना ही अहम बन गया है जितनी के तिजारत है।
3: हर देश रिलायबल सप्लाई चेन चाहता है, हर देश स्टेबल पार्टनरशिप चाहता है, हर देश ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके। और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
2: जनाब मोदी ने यह भी कहा कि मुल्क मुख्तलिफ शोबों में सरमाया लगा रहा है जिससे आने वाली नस्लों के लिए तरक्की, इख्तिरा और मौकों को तकवीत मिलेगी। जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने फ्रांस के शहर एवियों में G7 की मीटिंग के दौरान एतमाद और भरोसे पर मबनी साझेदारी की अहमियत पर जोर दिया। वजीर आजम ने कहा कि G7 सरबरा कॉन्फ्रेंस के लिए भारत का पैगाम बिल्कुल वाजे था कि आलमी हुक्मरानी तभी मुअस्सर साबित हो सकती है जब ये सबकी शमूलियत वाली हो। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि वो फ्रांस में एक ऐसे वक्त आए हैं जब उनकी सरकार ने 12 साल मुकम्मल कर लिए हैं और इन बरसों में मुख्तलिफ शोबों में भारत में बड़ी तब्दीलियां आई हैं।
3: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
2: इससे कबल फ्रांस में भारतीय बिरादरी ने बोंजोर मोदी या हेलो मोदी और भारत माता की जय के नारों के साथ वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खैर मकदम किया।

0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दो मुल्कों फ्रांस और स्लोवाकिया के अपने दौरे के तीसरे मरहले में पेरिस का कामयाब और मुफीद दौरा मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि आने वाले वक्त में भारत फ्रांस दोस्ती और ज्यादा मजबूत होगी। इधर फ्रांस के सदर इमैनुअल मैखों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के फ्रांस के दौरे के इख्तिताम पर जनाब मोदी के लिए हिंदी जबान में एक खसूसी अलविदाई वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराया है।
1: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैंने इसे साथ में दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती अमराए।
0: पेश है वज़ीर-ए-आज़म के पेरिस के दौरे की खबरें देने वाले हमारे नामा निकार की एक रिपोर्ट।
2: पेरिस में नीस में भारत इनोवेट्स और वीवा टेक 2026 का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया भारत की बढ़ती हुई इख्तराई कुव्वत का मुशाहिदा कर रही है। वीवा टेक सरबराह मीटिंग में जनाब मोदी ने आलमी इख्तराकारों पर जोर दिया कि वो भारत के साथ मिलकर सभी के फायदे के लिए काम करें। उन्होंने जोर देकर कहा कि टेक्नोलॉजी का फायदा सभी को मिलना चाहिए। इस दौरे में भारत और फ्रांस ने तिजारत, तकनीक और आलमी सिक्योरिटी के में इश्तराक को मुस्तहकम बनाने का इरादा किया। फ्रांस की सरगर्दा टेक कंपनियों ने भारत की तरक्की के सफर में एतमाद का इजहार किया और मैन्युफैक्चरिंग, मसनूई जहानत और ग्रीन बहरी बुनियादी ढांचे के शोबों में और ज्यादा शमूलियत के मंसूबों का ऐलान भी किया। पेरिस से महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम करेंगे। इस तरगीबात से मुल्क में रोजगार के 15 लाख मौके पैदा करने में मदद मिली है। लेबर और रोजगार महकमे के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत पिछले साल अगस्त से अब तक 63 लाख से ज्यादा मुलाजिमीन को बाजाबता अफरादी कुव्वत में शामिल किया गया है, जिनमें तकरीबन 30% खवातीन हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिकार से।
2: मस्कुर स्कीम कारकुनों और आजिरों की बाजाबता मईशत में शामिल होने के लिए हौसला अफजाई की खातिर तैयार की गई है। इसके तहत पहली बार के मुलाजमीन 15,000 रुपए तक की तरकीब हासिल करने के अहल होंगे। इस तरह उन्हें अफरादी कुव्वत में शामिल होने पर अहमियत की हामिल मदद मिलेगी, जबकि इजाफी रोजगार के मौके दस्तियाब कराने वाले आजिरों को हर इजाफी मुलाजिम रखने पर 3,000 रुपए माहाना तक की तरकीब मिल सकेगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पिछले साल यकुम अगस्त को नाफिज हुई थी। इसका मकसद रोजगार के मौके पैदा करने को फरोग देना और मईशत के सभी शोबों में सोशल सिक्योरिटी दायरे को वसत देना है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग पर खास जोर दिया गया है। इसका मकसद 2 साल के अरसे में मुल्क में मुलाजिमत के 3.5 करोड़ से ज्यादा मौके दस्तियाब कराना है। दिल्ली से प्रिया मॉन्डल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शमीम इरफान।
0: ज़िराअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने 4 रियासतों के लिए कम अज़ कम इमदादी कीमत पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर सरकारी खरीद की मंजूरी दे दी है। वजारत के मुताबिक तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कीमतों की इमदादी स्कीम के तहत ये सरकारी खरीद की जाएगी। साल 2026 के मौसम गर्मा के सीजन के लिए मंजूरी के तहत उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा सरकारी खरीद होगी। वहां 48,298 मैट्रिक टन मूंग, 97,970 मैट्रिक टन उड़द और 41,718 मैट्रिक टन मूंगफली की सरकारी खरीद की मंजूरी दी गई है। गुजरात में इस मौसम गर्मा के सीजन के लिए 18,250 मैट्रिक टन मूंग की सरकारी खरीद की मंजूरी दी गई है। मंजूरशुदा सरकारी खरीद की कम अज कम इमदादी कीमत की मालियत 160 करोड़ रुपए से ज्यादा रहने का तखमीना लगाया गया है। वजीर मौसूफ ने रबी मार्केटिंग सीजन के तहत तमिलनाडु के लिए मूंग की सरकारी खरीद की हद 885 मैट्रिक टन से बढ़ाकर 990 मैट्रिक टन करने की मंजूरी भी दी है। इस तरह फसल की 105 मैट्रिक टन इजाफी सरकारी खरीद हो सकेगी। जनाब शिवराज सिंह चौहान ने हरियाणा के लिए मौसम गर्मा के सीजन के दौरान 2115 मैट्रिक टन मूंग की सरकारी खरीद की मंजूरी दी है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर में सिकल सेल के बैनुल अक्वामी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम में शिरकत

मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नंदिनी मिश्रा का नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम में आप जल्दी से हमें अपनी पसंदीदा गीत की फरमाइश लिख भेजिए और हम आपको सुनवाएंगे आपके मनपसंद गाने। बस हमारा ईमेल आईडी जल्दी से नोट कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। तो हम प्रतीक्षा में हैं आपकी फरमाइश के और आपको सुनवाएंगे आपके मनपसंद फिल्मी डब्बे। तो लीजिए, पहली फरमाइश हमारे पास आई है राजा कटरा बाराबंकी से मोहम्मद तालिब अंसारी की। बस स्टैंड लखनऊ से अमरजीत सोनम कौर, परमजीत आसमा कौर और धर्मजीत फातिमा कौर की फरमाइश आई है। अगली फरमाइश आई है ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा की। और फरमाइश आई है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा जी की। ये अगला मेल आया है सौराष्ट्र राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी की फरमाइश आई है। ये फरमाइश है नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंसिल महसौल सीतामणि से अकरम हुसैन प्रिंस, डाक बाबू बेगम, इशरत अकरम, वसीम अकरम, रुबीना वसीम, आरज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से मोहम्मद आसिफ खान और निकत परवीन। आप सबने कार्यक्रम में अपनी फरमाइश भेजी है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है मास्टर अशोक कुमार वर्मा जी की। आपने फरमाइश भेजी है ज़िला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोर्डाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी रोहित ऋतु मुकेश जगताप। आप सब ने अपनी फरमाइश भेजी। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म ताल का ये गीत।

और श्रोताओं, लगातार आपकी मेल्स हमें प्राप्त हो रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों के मेल शामिल करें अपने कार्यक्रम में। अगली फरमाइश हमारे पास आई है नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से। बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी आराध्या साहू, आप सबने अपनी फरमाइश कार्यक्रम में भेजी है, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े और विजया तायड़े की फरमाइश आई है। हमारे साथ जब नए श्रोता जोड़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज की। और पुराने श्रोता तो हमारे जुड़े ही हैं, नए श्रोता जब जुड़ते हैं तो और भी अच्छा।

0: लगता है। ये अगली फरमाइश हमारे पास आई है पाकीज़ा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से, मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, जामा मस्जिद रोड गोंगावा से हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयूब शेरी की फरमाइश हमारे पास आई है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश, बहुत सारी श्रोताओं की फरमाइश आती है, बार बार आप अपनी फरमाइश भेजते हैं, आपसे बहुत अनुरोध है कृपया आप बार बार अपना मेल ना भेजें। इसके अलावा हमारे पास आई है ये जो फरमाइश आई है एडवोकेट वारिस अली ख़ान साहब की, इस्लामुन निशा शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश की फरमाइश आई है संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से, आप ने ये मेल भेजा है, हम बहुत आपके आभारी हैं। और इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है ग्राम पंचायत काई मऊ क्वारियापुर सैंडी हरदोई से, उत्तर प्रदेश से आपने फरमाइश भेजी है। भेजने वाले हैं मुदित राजपूत, विजेंद्र पाल राजपूत, अनवी राजपूत, सुनीता राजपूत, शोभा राजपूत, दीपा राजपूत, राम फेरे राजपूत, कपिल राजपूत, प्रांजल राजपूत, रमा राजपूत, अन्या राजपूत और कृष्णा राजपूत ने अपनी ये फरमाइश भेजी है कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, अंकिता सिंह, रितु सिंह और कृष्वी सिंह की फरमाइश हमारे पास आई है। और फरमाइश आई है ये हमें भेजा है, वही एक बार पुनः आपसे गुजारिश है कृपया बार बार मेल ना करें। और ये है नागचोन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डाबर, खुश नसीब अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक डाबर, मोहम्मद उमर डाबर और राजेंद्र कटारे की। आप सब ने सुनना चाहा है फिल्म हीरा पन्ना का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।
1: पहेली है तो
2: हाँ,
1: नार नवेली है तो
2: हाँ, कुछ कहा
1: हाँ, जितना मैं सुलझाऊं और उलझती जाए
2: सच

श्रोताओ, आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत अपनी दोस्त नंदिनी मिश्रा के साथ। और अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है वो आई है मालियान सरधना मेरठ से, अनिल जैन, जैन साहब, संजय, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवियम जैन की आप सबने अपनी फरमाइश कार्यक्रम में भेजी है। हम आपके बहुत हृदय से आभारी हैं। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना वंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा की। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्नो बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा की। आप सबने अपनी फरमाइश कार्यक्रम में भेजी है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है साहिब आलम वारिस भाई और समीर अहमद की। ये फरमाइश आई है एवरेडी तिराहा अम्बेडकर नगर ऐशबाग लखनऊ से आपने ये फरमाइश भेजी है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है ग्राम व पोस्ट हररपुर मटकली ज़िला बरेली से शाहरून नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीशी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान की फरमाइश कार्यक्रम में आई है। और फरमाइश आई है हमारे पास ज़िला रायबरेली गाँव पहाड़ी पुर से रामराज, राजू, भानु, रामशंकर, पत्रकार बहाई वाले, रक्षा मौर्या, राम सागर, शाहू, रसूलपुर वाले, आप सब ने अपनी फरमाइश कार्यक्रम में भेजी है। और हमारे पास फरमाइश आई है विजयलक्ष्मी कुशवाहा सांडी जनपद हरदोई से आपने फरमाइश भेजी है। और आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म वारिस का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

और श्रोताओं, धीरे धीरे हम कार्यक्रम के अंतिम पायदान पर आ गए हैं और जल्दी से दो चार मेल्स और पढ़ देते हैं। ये फरमाइश हमारे पास भेजी है ग्राम रजौनी, ज़िला महोबा, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश से फरमाइश आई है उदय भान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और परिवार की फरमाइश आई है। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है फुलेले नगर भीण महाराष्ट्र से बाला प्रसाद जी करवा, गीतांजलि करवा, आकाश करवा, आकांक्षा करवा की और हैप्पी, इन्होंने भी फरमाइश भेजी है कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे पास फरमाइश आई है रघुनाथपुरा ज़िला श्री गंगा नगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी की। और एक मेल जल्दी से और पढ़ लेते हैं। ये आई है जवाहर नगर दुर्ग से आर सी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े की। आप सब सुनना चाहते हैं फिल्म एक फूल दो माली का ये गीत, जिसको स्वर दिया है मोहम्मद रफ़ी साहब ने और साथ में आशा भोसले हैं।

0: माँ को भी समझा दो, बस इतना बता दो, हम प्यार करने वाले हैं।
1: और इस खूबसूरत से नगमे के साथ अब अपनी दोस्त नंदिनी मिश्रा को दीजिए अनुमति। आज का आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। स्वीकार करें नमस्कार नंदिनी का। मीडियम वेव 401.6 मीटर्स यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
2: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए संभल और बाराबंकी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं संभल जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अरुण गोस्वामी का।
3: प्रदेश भर में भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 20 मई से प्रारंभ हो गया है। इसके तहत प्रगणक एवं सुपरवाइजर घर घर जाकर मकानों का सूचीकरण एवं गणना कर रहे हैं। जनगणना के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 प्रगणकों को उपजिलाधिकारी चंदोसी नीतू रानी द्वारा कार्यालय पर एक पुष्प तथा पुस्तक तथा शॉल देकर सम्मानित किया। जनपद संभल में जनगणना 2027 के प्रथम चरण हेतु 4080 प्रगणक एवं 680 सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं। ये सभी कार्मिक 20 जून 2026 तक घर घर जाकर सूचना एकत्रित करेंगे। जनपद प्रशासन द्वारा आमजन से अपील की गई है कि जनगणना 2027 के प्रथम चरण में पूछे जाने वाले कुल 33 प्रश्नों के सही एवं सटीक उत्तर उपलब्ध कराएं, क्योंकि इन आंकड़ों के आधार पर भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं एवं नीतियों की रूपरेखा तैयार की जाती है। साथ ही नागरिकों से ये भी अपेक्षा की गई है कि वे प्रगणकों को आवश्यक सहयोग प्रदान करें, जिससे ये महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य सुचारू पारदर्शी एवं सफलतापूर्वक सम्पन्न हो सके। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में दिनांक 5 जून से 21 जून 2026 तक आयोजित समेकित जन कल्याण एवं जन जागरूकता अभियान चल रहा है। अभियान के अंतर्गत कुल 9 प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। प्रथम कार्यक्रम के रूप में विश्व पर्यावरण दिवस एवं एक पेड़ माँ के नाम थीम के तहत जनपद में वृहद स्तर पर पौधारोपण किया गया। जनपद स्तरीय मुख्य कार्यक्रम वन विभाग एवं जिला गंगा समिति के संयुक्त तत्वावधान में शांति वन बबराला में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल, पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई एवं मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत हरी संकरी वृक्षारोपण करते हुए पीपल, बरगद एवं पाखड़ के पौधे रोपित किए गए। भाजपा जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक गिन्नौर अजीत कुमार, राजू यादव तथा नगर पंचायत बबराला के अध्यक्ष हर्षवर्धन बासणे द्वारा त्रिवेणी वृक्षारोपण के अंतर्गत पीपल, बरगद एवं नीम के पौधे लगाए गए। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल ने विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भाजपा जिलाध्यक्ष हरेंद्र सिंह रिंकू ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान केवल वृक्षारोपण का कार्यक्रम नहीं बल्कि मात्र सम्मान एवं पर्यावरण संरक्षण का जन आंदोलन है। उन्होंने कहा कि जन सहभागिता से ही हरित एवं स्वच्छ पर्यावरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। जनपद संभल के लिए वन विभाग, ग्राम विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग, उद्यान विभाग तथा नगर विकास विभाग के सहयोग से 456,000 पौधों के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसे 100% पूर्ण कर लिया गया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र सैनी के नेतृत्व में जिला चिकित्सालय संभल परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत नीम, अर्जुन एवं गुलमोहर सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया। साथ ही सफाई अभियान चलाकर प्लास्टिक कचरा एकत्र किया गया तथा अस्पताल परिसर से श्री शंकर चौराहे संभल तक जन जागरूकता रैली निकालकर लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया गया। सड़कों पर होने वाले हादसों में लोगों की जान बचाने के लिए मदद करने वालों के लिए अब मददगार नहीं राहगीर नाम से पुकारा जाएगा। रास्तों या हाईवे पर होने वाले हादसों में मृत्यु दर कम करने एवं घायलों को तत्काल मदद पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश में राहगीर गुड सैमिट रिटर्न योजना लागू की गई है। इस योजना का मकसद लोगों को मदद के लिए प्रेरित करना और उन्हें सम्मानित करना है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने दुर्घटनाओं में गोल्डन आवर यानी कि हादसे के तुरंत बाद का सबसे महत्वपूर्ण समय के भीतर घायलों को अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाने वाले मददगारों गुड सैमिट रिटर्न के लिए ये अहम पहल की है। प्रदेश में अब ऐसे मददगारों को राहगीर के नाम से जाना जाएगा और उन्हें प्रोत्साहित करने

0: के लिए दी जाने वाली इनामी राशि को 5,000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 25,000 रुपए कर दिया गया है। राहबीर योजना के अंतर्गत 5 शर्तों के आधार पर 25,000 रुपए का इनाम राहबीर को दिया जाएगा। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय के निर्देशों के अनुपालन में यूपी में स्कीम फॉर ग्रांट ऑफ अवार्ड टू द गुड सेमे रिटर्न को राहबीर योजना के रूप में लागू किया गया है। जनवरी 2025 से लेकर अब तक के मददगारों का डेटा जुटाने की कवायद शुरू कर दी गई है। विकासखंड गिन्नौर के ग्राम बागाऊ में जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल एवं पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई द्वारा एक जनपद पांच नदियों थीम के अंतर्गत मंत्रोच्चारण एवं पूजा अर्चना के साथ जनपद में एक जनपद पांच नदियों के अंतर्गत जल संरक्षण, जल संवर्धन एवं पर्यावरण संरक्षण की दिशा में विलुप्त प्राय एवं अस्तित्वहीन होती जा रही नदियों के पुनर्जीवन का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में बर्दमार नदी के पुनरोद्धार का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। नदी की पुरानी पहचान को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य अतिक्रमण हटाने, खुदाई, पौधारोपण तथा अन्य संरक्षण संबंधी कार्य किए जाएंगे। साथ ही मनरेगा योजना के अंतर्गत भी कार्य कराए जाएंगे, जिससे स्थानीय लोगों के रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। संबल में जगह जगह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सप्ताह का शुभारंभ हवन एवं आहुतियों के साथ किया गया। योगाचार्य ने निरंतर योग करने से शरीर में पनप रही तरह तरह की बीमारियों से छुटकारा मिलने का विश्वास दिलाया। जनपद संबल में चंदोसी, भेजोई, संबल, बबराला, गिन्नौर, असमौली के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में योग दिवस सप्ताह का आयोजन किया गया। अलग अलग स्थान पर सरकार के निर्देशन अनुसार योगाचार्य ने योग के आसन कराए, जिसमें काफी संख्या में लोग पहुंचे।
1: संभल जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बाराबंकी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है परवेश अहमद का।
2: केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर जनपद भ्रमण पर आए प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा कई ऐसी योजनाएं लाई गई हैं जिनका लाभ आम जनता को पहले कभी नहीं मिल रहा था। डिप्टी सीएम ने कहा कि पहले कांग्रेस के कार्यकाल में मनमानी होती थी, आज भाजपा के कार्यकाल में हर क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा किसानों को मुख्य धारा में लाने का काम किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस पर जनपद में एक पेड़ माँ के नाम अभियान का उत्साह जन भागीदारी एवं पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ किया गया। जनपद के विभिन्न स्थलों पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों तथा आमजन ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत ने जिला पंचायत कार्यालय परिसर में पौधारोपण कर अभियान का शुभारम्भ किया। वही जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने कैंप कार्यालय परिसर में मौल श्री का पौधारोपित करते हुए कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण संरक्षण का माध्यम नहीं बल्कि जीवन संवेदना और आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी के प्रतीक हैं। उन्होंने जनपद वासियों से अधिक पौधे लगाने तथा उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विगत दिनों नगर स्थित राजकीय संप्रेक्षण गृह पहुंचकर स्थापित कंप्यूटर लैब का उद्घाटन तथा सर्वाइकल कैंसर जागरूकता एवं HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ व विभिन्न व्यवसायों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने संप्रेक्षण गृह में निवासरत किशोरियों से आत्मीय संवाद कर उनके जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भविष्य की योजनाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने बेटियों को शैक्षणिक किट प्रदान करते हुए कहा कि शिक्षा केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने का माध्यम नहीं बल्कि व्यक्ति निर्माण, आत्मविश्वास तथा आत्मनिर्भरता का आधार है। उन्होंने बेटियों से आह्वान किया कि वे नियमित अध्ययन के साथ साथ विभिन्न रोजगार परक एवं कौशल आधारित गतिविधियों में भी दक्षता प्राप्त करें, जिससे वे भविष्य में ससम्मानजनक एवं स्वावलंबी बन सकें। मानसून और संभावित बाढ़ संकट को देखते हुए रामसनीघाट तहसील प्रशासन ने कोयला और खेरी तटबंध पर व्यापक आपदा प्रबंधन मार्ग ड्रिल का आयोजन किया। अभ्यास के दौरान बाढ़ जैसी आपात परिस्थितियों में राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों को परखा गया। मार्ग ड्रिल में नदी में नाव पलटने, लोगों के डूबने, पशुओं के पानी में फंसने तथा बाढ़ से उत्पन्न अन्य आपात स्थितियों का वास्तविक प्रदर्शन किया गया। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लोगों और पशुओं को सुरक्षित निकालने का अभ्यास किया। इस दौरान विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और संसाधनों की उपलब्धता की भी जांच की गई। SDM अनुराग सिंह ने बताया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए सभी विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। जिलाधिकारी शान प्रताप सिंह ने विगत दिनों नागरिक सुरक्षा सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाला समय देश एवं विश्व के लिए अनेक चुनौतियों भरा हो सकता है। प्राकृतिक आपदाओं के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों से उत्पन्न होने वाली

0: परिस्थितियां भी मानवीय संकट का कारण बन सकती हैं। ऐसे समय में मानवता की सेवा एवं राहत कार्यों में सिविल डिफेंस स्वयं सेवकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। जिलाधिकारी ने नागरिक सुरक्षा संगठन में चयनित चीफ वार्डन, डिप्टी चीफ वार्डन, स्टाफ ऑफिसर, वार्डन सेवा तथा सेक्टर वार्डन पदों पर नियुक्त स्वयं सेवकों को बधाई देते हुए उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर शासन के निर्देशानुसार जनपद में 5 जून से 21 जून तक व्यापक स्तर पर समेकित जन कल्याण एवं जन जागरूकता अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के माध्यम से केंद्र एवं राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं, विकास कार्यों, सुशासन की उपलब्धियों तथा आम जन के जीवन में आए सकारात्मक परिवर्तनों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान के अंतर्गत आयोजित सभी कार्यक्रम सेवा, सुशासन एवं सम्मान के मूल भाव के अनुरूप जन केंद्रित, प्रभावी एवं सहभागिता पूर्ण हो। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के उपलक्ष्य में 15 से 21 जून 2026 तक आयोजित किए जा रहे योग सप्ताह का शुभारंभ रविवार को राजकीय इंटर कॉलेज जेआईसी ऑडिटोरियम बाराबंकी में भव्य रूप से सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि राज्यमंत्री खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति सतीश चंद शर्मा द्वारा दीप प्रज्वल कर एवं भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में योग प्रशिक्षकों, छात्र छात्राओं, अधिकारियों एवं आम जन ने सहभागिता की।
1: यह था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल समाप्त हुई। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे संवेद स्वरों में देश गान। मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम अब से थोड़ी देर में होगा। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश खिदमत है उर्दू कार्यक्रम।
1: आज की उर्दू बज़्म लेकर मैं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद उमैर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आदाब कबूल फरमाएं।

0: आबाद है जहाँ पे जमा नहीं करना पड़ता है, लोग खुद आके जमा होते हैं। और एक नारा होता है, एक परचम होता है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो इंसानियत के लिए कुर्बानी दी है, उस कुर्बानी की आज ये नतीजा निकल के सामने आ रहा है कि हर इंसान जमा है। इसके अलावा भी दीगर मकामात पे जो तारीख में मौलाए कायनात अली अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है कि उन्होंने न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि दूसरी कौम के लिए भी बहुत से काम किए। जैसे आपने बहुत सारे कुएं खोदे, कभी आपने ये नहीं देखा कि उसमें पानी पीने वाला कौन, नहीं, बस एक इंसान होना चाहिए। बहुत सारे दरख्त लगाए गए। और इसी तरह से खुद हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने किसी को ये नहीं बताया था शुरू में कि मैं रसूल हूँ, बल्कि लोगों ने उनकी इंसानियत का कलमा पढ़ा।
1: बहुत ही उम्दा बात आपने कही है कि अहले बैत की तालीमात मोहब्बत, रवादारी, अदल और एहतराम इंसानियत पर मबनी है। एक सवाल महफूज साहब से करेंगे। महफूज साहब, अहले बैत की कुर्बानियों से हमें इज्तिमाई और इनफरादी जिंदगी में क्या अमली दुरुस्त हासिल होते हैं, इस पर आप क्या कहते हैं?
2: अहल बैत अतहार अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से हमें अगर इनफरादी ज़िंदगी में देखा जाए तो ख़ुद इंसान मुसीबतों पर सब्र करे, उसके अलावा जब भी बात अपनी हो और अपनी कुर्बानियों की बात हो और किसी को सुकून पहुंचाने का सबब बने हमारा सब्र, हमारी कुर्बानी, तो उसमें दरेग नहीं करना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। अच्छा इंसान वही है कि जो बग़ैर कैद मजहब व मिल्लत के किसी भी इंसान को मजबूर परेशान हाल देखे तो अपनी तकलीफ भूल कर अपने आराम की कुर्बानी देकर उसकी मदद करे। और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। खुद इमाम हसन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बाबा को दफन करके आ रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई रो रहा है, तो आप अपने बाप का गम भूल कर उसकी अहवाल पुरसी के लिए हाजिर हो गए और उसकी मदद की। और उसके बाद जो तफसीलात है वो सबको पता है, मुझे अर्ज नहीं करना। और इज्तमाही ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम ने, खुद रसूल खुदा ने अनसार और महाजरीन के दरमियान अक़्द व ख़ुव्वत का क़याम फरमाया और अक़्द व ख़ुव्वत कायम किया, सबको एक दूसरे का भाई बनाया। उसके अलावा खुद इमाम हसन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में देखें कि आने वाला शख्स है और इमाम से बदसलूकी कर रहा है, गालियाँ बकरा है
1: जी,
2: दुश्नाम दे रहा है, लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कोई भी रद्द अमल निगेटिव तरीके से जाहिर नहीं किया, बल्कि इमाम मुस्कुरा रहे थे और वह शख्स गालियाँ दे रहा था। जब वह गाली देकर थक गया तो इमाम ने मुस्कुरा कर उससे कहा कि भाई तुम मुसाफिर लगते हो, अगर थके हुए हो तो आराम का इंतज़ाम कर दूँ, प्यासे हो तो पानी पिला दूँ, भूखे हो तो खाना खिला दूँ, और अगर तुम्हें रहने की जगह की ज़रूरत है तो मकान दे दूँ, सवारी की ज़रूरत है सवारी दे दूँ, राह सफ़र चाहिए वो दे दूँ। जो एक जहन में उसके एक तसव्वुर था कि रिएक्शन निगेटिव होगा, उसके बरक्स जब उसने देखा कि ये तो बिल्कुल ही अलग अंदाज में हमें रद्द अमल मिल रहा है, तो वो फ़ौरन कदमों में गिर गया और कहने लगा कि मौला मुझसे गलती हो गई है, मुझे बहका कर भेजा गया था और जितना बुरा आपको बताया गया था मैंने उसके बिल्कुल ही बरक्स आपका किरदार पाया, आप मुझे कलमा पढ़ाइए, मैं एक मुसलमान बनना चाहता हूँ।
1: बहुत उम्दा बात आपने कही कि अहले बैत की कुर्बानियों से हमें हक पर कायम रहने, सब्र इख्तियार करने, जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने और दूसरों की भलाई के लिए काम करने का दर्स मिलता है। एक सवाल कमर साहब से करेंगे। कमर साहब, अहले बैत की जिंदगी में सब्र और इस्तेकामत के कौन से पहलू सबसे ज्यादा नुमाया नजर आते हैं?
0: अहले बैत अलैहिस्सलाम का सबसे नुमाया किरदार अगर आप देखा जाए तो करबला है, और अगर उसके पहले आप देखें तो खुद मौलाए कायनात की जिंदगी, और उनसे पहले अगर आप देखें तो खुद रसूल सलाम की जिंदगी। खुद रसूल सलाम की जिंदगी ये है कि आप रास्ते से गुजर रहे हैं और एक औरत है जो ऊपर से आप पे कूड़ा डाल रही है, लेकिन आप खामोश हैं, सब्र कर रहे हैं, और सब्र की इंतहा यह है कि जब वो मरीज हो जाती है तो उसकी आयादत के लिए भी आप जा रहे हैं। खुद मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी में इस हद तक जमाने ने जुल्म किया कि आपको लोग सलाम करना छोड़ दिया लोगों ने, तो ये बाकायदा तारीख में है कि आपकी शरीक हयात शहजादी या फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने सवाल किया कि आली, मैंने सुना है कि आपको लोग सलाम नहीं कर रहे हैं, तो आपने ये भी जवाब दिया कि सिर्फ यानी कि सलाम नहीं कर रहे हैं, मैं सलाम करता हूँ तो जवाब नहीं दे रहे हैं। यानी इस हद तक दुनिया ने जुल्म किया, लेकिन उसके बाद भी खामोशी से सिर्फ सब्र करके, और इसलिए ताकि इस्लाम को ज़िंदा रखना है, इस्लाम को बाकी रखना है, और यही जुल्म जो आगे बढ़ा तो बढ़ते बढ़ते इस हद तक इमाम हसन सलाम की ज़िंदगी में आया कि आपके जनाजे पे भी तीर चले, और ये जुल्म जब आगे बढ़ा तो करबला में उसने वो नुमाया शक्ल ली और वो वहशियाना चेहरा दुनिया के सामने आया कि आज के ज़माने में यजीद एक गाली बन गया, कि उसने इस तरह से शशमाहे तक को नहीं छोड़ा और इमाम हुसैन सलाम के पूरे खानवादे को उसने कत्ल व गारत किया

0: को दरकिनार करके असल मरहले में इंसानियत को अहमियत देने की ज़रूरत है। और उसके अलावा मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब फरमाते हैं कि तुम जो है हमेशा इत्तेहाद में ज़िंदगी बसर करो। कुछ लोग यहाँ पे मज़हब को बीच में ले आते हैं और कहते हैं कि हम मुसलमान हैं तो हम सिर्फ मुसलमान से मोहब्बत करें, जबकि ऐसा नहीं है। मौला ने कहा कि मुसलमान से इसलिए मोहब्बत करो कि वो तुम्हारा हम मज़हब है, लेकिन दूसरे जो मुसलमान नहीं हैं उनसे इसलिए मोहब्बत करो कि वो इंसान है, वो तुम्हारे ही वजूद का हिस्सा है, क्योंकि हम सब आदम के औलाद हैं।
1: बहुत ही उम्दा पैगाम आपने दिया कि अहले बैत की कुर्बानियाँ हमें इत्तेहाद, उखुव्वत, सब्र और हक पसंदी का दर्स देती हैं। अल्लाह ताला हमें अहले बैत अतहार की मोहब्बत नसीब फरमाए और उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए, आमीन। और अब हम अपने दोनों खुसूसी मेहमान जनाब प्रोफेसर कमरुल हसन साहब और जनाब प्रोफेसर सैयद महफूज अली साहब के बे इंतहा ममनून और मशकूर हैं कि आप हजरात ने हमारे सामीन के लिए बहुत ही उम्दा और अच्छी मालूमात फराहम की। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। अपने मेज़बान दोस्त सैयद मोहम्मद उमेर को दीजिए इजाज़त।

मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम में आज लीजिए सुनिए प्रीति लाल के गाए कुछ अवधी लोकगीत। सबसे पहले प्रस्तुत है आपके आवाज में ये देवी गीत।

लोकगीत के कार्यक्रम लोकरंग में श्रोताओं, आज आप सुन रहे हैं प्रीति लाल के गाए कुछ अवधि लोकगीत। अभी आप सुन रहे थे आपके स्वर में ये देवी गीत, और आइए अब आप सुनवाते हैं इनकी आवाज में ही ये दादरा।

लोकगीत के कार्यक्रम लोकरंग में श्रोताओं आज आप सुन रहे थे प्रीति लाल के गाए अवधि लोकगीत। आपके साथ जो संगत कलाकार थे वो थे ढोलक पर दिलीप त्रिवेदी, हारमोनियम पर संतोष तिवारी, बांसुरी पर दिगंत सैकिया और साइड रिदम पर साथ दे रहे थे शोभनाथ चौरसिया। इसी के साथ आज का लोकगीत का कार्यक्रम लोकरंग यहीं समाप्त होता है। हम आपको याद दिला दें कि दिन में 2:45 पर लोकमाधुरी कार्यक्रम में एक बार पुनः आप प्रीति लाल के गाय अवधि लोकगीत सुन सकेंगे। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

0: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बस यही कहता है कार्यक्रम नई उड़ान। सुनिए हर रोज शाम 5:45 से 747 किलोहर्ट्ज़ आकाशवाणी लखनऊ पर।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले श्रोताओं, आइए आपको सुनवाते हैं बहुत ही प्यारा सा एक सदाबहार नगमा, जिसको स्वर दिया है मोहम्मद रफ़ी साहब ने, और फिल्म का नाम है द ट्रेन। इस गीत का संगीत दिया है आर डी बर्मन ने और बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में फ़िल्म द ट्रेन का ये गीत। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक और बहुत ही बेहतरीन गीत, फिल्म चुपके चुपके से। गीत को स्वर दिया है लता मंगेशकर ने।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म चुपके चुपके का ये गीत। संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने और शब्द रचना थी आनंद बख्शी की। इसी के साथ अब फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम लेते हैं एक छोटा सा विराम और आपको न्यूज़ बुलेटिन विश्व दर्पण सुनवाने के लिए अब दिल्ली ले चलते हैं और वहाँ से लौटने के बाद एक बार पुनः आपको फिल्म संगीत के नए तराने चित्रपट से कार्यक्रम के अंतर्गत सुनवाएंगे। फिलहाल विश्व दर्पण सुनवाने के लिए आइए, अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज़।

0: कार्यक्रम के अंतर्गत सुनवाएंगे। फिलहाल विश्व दर्पण सुनवाने के लिए आइए अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को अप्रासंगिक बताया और आतंकवाद प्रायोजित करने के लिए उसकी कड़ी निंदा की। अमरीका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से और कनाडा ने कतर को 6-0 से मात दी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वह समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वह फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP 2 गुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या 2 गुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी 2 गुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश भी रिकॉर्ड किया है।
3: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैंने 7वें दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
4: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
1: भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को अप्रासंगिक और मौजूदा समय के प्रतिकूल बताया। भारत ने कहा कि जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देता है वह सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग से होने वाले लाभ नहीं उठा सकता। परिषद के 62वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की सचिव अनुपमा सिंह ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान के आरोपों को खारिज करते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर द्विपक्षीय मुद्दों को बार बार उठाने के पाकिस्तान के प्रयास की आलोचना की। सुश्री अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत के पक्ष से दुनिया भली भांति परिचित है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत पर दावे करने के बजाय अपनी आंतरिक चुनौतियों के समाधान पर ध्यान देना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत ने पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन द्वारा संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर आरोपों और संदर्भों को खारिज करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था और वो हमेशा रहेगा। सुश्री अनुपमा सिंह ने कहा कि एकमात्र अनसुलझा मुद्दा भारतीय क्षेत्रों पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा और उनकी वापसी है। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान उसके कब्जे वाले कश्मीर में हो रही घटनाओं से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रहा है, जहां हाल के हफ्तों में विरोध प्रदर्शन और अशांति तेज हो गई है। पाकिस्तान ने पिछले बुधवार को उत्तर पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के एक गुरुद्वारे में एक सेवादार दंपत्ति की गोली मारकर

0: हत्या कर दी गई। ये घटना पेशावर से लगभग 60 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में मर्दान के में हुई। पुलिस के अनुसार अज्ञात हमलावरों ने गुरुद्वारों के अंदर गोलीबारी की, जिसमें जगन्नाथ और उनकी पत्नी अस्मा वंती की मौत हो गई। इस हमले से पता चलता है कि पाकिस्तान में कट्टरपंथ कितना सक्रिय है। कट्टरपंथी हिंदुओं, सिखों तथा ईसाइयों पर हमला करते रहते हैं और जबरन धर्मांतरण कराते हैं, जिससे धार्मिक अल्पसंख्यकों को अत्यधिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलपूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशानुसार ईरान के खिलाफ चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ लगभग 4 महीने तक चले संघर्ष के बाद हुए शांति समझौते के एक दिन बाद घोषणा की। इस कदम से ईरान के समुद्री और उसके आसपास के क्षेत्रों में जहाजों की आवाजाही सुगम होने की उम्मीद है। यूक्रेन ने रूस से एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। ये एक सप्ताह में ऐसा दूसरा हमला है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने हमले की पुष्टि करते हुए कहा है कि शहर के दक्षिण पूर्वी बाहरी इलाके में स्थित मॉस्को तेल शोधन संयंत्र पर कई ड्रोन ने हमला किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि रूस ने 555 यूक्रेनी ड्रोन को रोककर नष्ट कर दिया। रूस के परिवहन मंत्रालय ने कहा कि हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक गई। संयुक्त अरब अमीरात ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल की न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित करने वाले नए नियम को मंजूरी दे दी है। डिजिटल क्षेत्र में बाल संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया ये व्यापक कदम है। इसके अंतर्गत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने या संचालित करने की अनुमति नहीं होगी, न ही उन्हें पोस्ट करने, टिप्पणी करने, सामग्री साझा करने या सार्वजनिक समूह में शामिल होने जैसी सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति होगी। 15 से 16 वर्ष की आयु के उपयोगकर्ताओं को केवल सख्त सुरक्षा उपायों के तहत सीमित उपयोग की अनुमति होगी। फीफा विश्व कप में कल ग्रुप ए में मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया ने 1-0 से पराजित कर दिया। ग्रुप बी में कनाडा ने कतर को एक तरफा मैच में 6-0 से हरा दिया। कनाडा के जोनाथन डेविड ने 3 गोल किए। इससे पहले कल अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप ए में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। दोनों टीमों के लिए नॉकआउट चरण में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। हॉकी में भारत ने आज FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया है। भारत की ओर से दीपिका ने 2 गोल और दीपिका सोरेंग ने 1 गोल दागा। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली से होगा। भारत ने चीन में विश्व टीम स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने मौजूदा चैंपियन हांगकांग चीन को 3-1 से हराया। भारतीय टीम कल फाइनल में मेजबान चीन ए और कोरिया के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता के साथ खेलेगी। इससे पहले भारत ने चीन की दूसरी रिजर्व टीम बी को क्वार्टर फाइनल में 3-2 से हराया। सोशल मीडिया पोस्ट में हम लोग को रूस द्वारा ये और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को अप्रासंगिक बताया और आतंकवाद प्रायोजित करने के लिए उसकी कड़ी निंदा की। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर्स यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
3: तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया।
2: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
0: चित्रपट से कार्यक्रम में श्रोताओ, आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं श्रेया घोषाल और सोना महापात्रा की आवाजों में कुमार के बोलों को। संगीत दिया है विशाल शेखर ने और फिल्म का नाम है आई हेट लव स्टोरीज।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
0: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
2: श्रोताओं आप सुन रहे हैं चित्रपट से, कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ नए फिल्मी तराने। आइए अब आपको सुनवाते हैं उदित नारायण की आवाज में नदीम श्रवण की धुन पर समीर के बोलों को। फिल्म का नाम है बेवफा।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए RBI कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प
3: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग
4: आकाशवाणी के विभिन्न

0: चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग हेतु संपर्क करें 8700014242 पर
0: 8700014242।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म सिंघम का ये गीत, श्रेया घोषाल की आवाज में। संगीत दिया है अजय अतुल ने और गीत के बोल लिखे हैं स्वानंद किरकिरे ने।

0: उत्तर प्रदेश के प्रथम नैक ए प्लस प्लस मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, बीसीए, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाते हैं गुलजार के बोलों को राहत फतेह अली खां और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में। संगीत दिया है शंकर एहसान लॉय ने और फिल्म का नाम है झूम बराबर झूम।

0: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
5: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
6: श्रोताओ, आप सुन रहे हैं चित्रपट से कार्यक्रम के अंतर्गत नए फिल्मी तराने। आइए अब आपको सुनवाते हैं प्रीतम की धुन पर इरशाद कामिल की रचना को संगीत दिया है, गीत को अपना स्वर दिया है राहत फतेह अली खां और प्रीतम ने, और फिल्म का नाम है लव आजकल।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: एक किस्सा सुनो,
1: सुनिए कहानी, कविताएं, नाटक, मिलिए बाल प्रतिभाओं से और रूबरू होइए बाल दोस्तों की कला से। साथ ही खुलेगा मनोरंजन जानकारियों का पिटारा, होगा बाल दोस्तों की बातों का चटखारा। सुनिए हर रविवार दोपहर 12 बजे आकाशवाणी लखनऊ के मीडियम वेव 747 किलोहर्ट्ज़ न्यूज ऑन AIR और DTH के द्वारा। तो सुनना ना भूलिएगा अपना ये कार्यक्रम प्यारा बाल मंच।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्रोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी

0: से रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर सॉटो यूपी के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: और श्रोताओं, अब कार्यक्रम के अंत में आइए आपको सुनवाते हैं नीलेश मिश्रा और स्वानंद किरकिरे के बोलों को। संगीतकार हैं प्रीतम, गीत को स्वर दिया है अरिजीत सिंह और पलक मुच्छल ने, और फिल्म का नाम है आर राजकुमार।

अभी आप सुन रहे थे चित्रपट से। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में होगा आपका पसंदीदा कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए और अपनी पसंद का कोई भी गीत सुनने के लिए आप

0: हमारा नंबर नोट कर लीजिए, हमारा नंबर है 0522-2238825। तो इस नंबर पर आप हमें फ़ोन मिलाएं और अपनी पसंद का गीत सुनें।
1: सुनो ना,
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700-001-4242।
1: ओ 8700-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700-001-4242 पर।
3: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल, आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: श्रोताओं, कुछ अनकहे एहसासों को शब्द देने, दिल की बातों को सुरों में पिरोने और आपसे एक आत्मीय संवाद करने के लिए हाजिर हूँ मैं, आपकी अपनी दोस्त रेखा मिश्रा, लेकर आपका पसंदीदा कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। यहाँ होंगी बातों की मिठास, गीतों की सौगात और भावनाओं की वो दुनिया जहाँ आपके दिल की बातें और हमारे गीत एक साथ मिलकर गुनगुनाएंगे। तो देर ना करते हुए आइए जान लेते हैं कौन से श्रोता हैं लाइन पर और क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। हेलो,
4: जय माता दी।
0: जय माता दी, आप अपना नाम बताएं।
4: मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान, गांव का नाम अंशमल बुगला से बात कर रहा हूं मैडम।
0: जी पूरन वर्मा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे आज के पहले कॉलर हैं।
4: थैंक यू मैडम, आप कैसे हो मैडम?
0: बढ़िया हैं, आप बताइए आप कैसे हैं?
4: जी मैडम हम भी बढ़िया हैं, और हमारे यहाँ कल बारिश हुई थी तो मौसम ठंडा हो गया आपके उधर?
0: हमारे यहाँ तो फिलहाल अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हो सकता है आपके यहाँ से मौसम बदलते बदलते यहाँ पहुँचे धीमे धीमे।
4: जी मैडम,
0: और क्या सुनवाएं आपको आज के कार्यक्रम में?
4: जी मैडम, फिल्म का नाम रहेगा दिल और गाने जो बोला है हमने घर छोड़ा है।
0: तो चलिए सुनवा देते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत। जी
4: हेलो,
0: जी जी,
4: कुछ मित्रों को याद कर लो आप, दे दे दे, दो तीन को, ज्यादा नहीं है, दो तीन ही है।
0: कर लीजिए कर लीजिए।
4: जी मैडम, सबसे पहले आप है।
0: जी धन्यवाद।
4: और मेरा दोस्त है रमेश प्रजापति जी है, अब्दुलनाथ जी है, गोल्डी भाई है और राहुल है और दिनेश है, वो तमाम श्रोता जो लाइव आपका कार्यक्रम लखनऊ सुनने वाले।
0: जी आपके सभी दोस्तों के लिए और हमारे कार्यक्रम को सुनने वाले सभी श्रोताओं के लिए हम सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। कार्यक्रम में आपने फोन किया, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। इस कार्यक्रम में आज मैं आपके साथ हूं रेखा मिश्रा। जो श्रोता इस कार्यक्रम के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं वो हमारा नंबर फिर से सुन लें। नंबर है 0522-2238-825। और अब बात कर लेते हैं अगले कॉलर से। हेलो
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्कार, अपना नाम बताएं हमें।
1: जी, मैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रहा था।
0: जी मनोहर लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप क्या करते हैं?
1: आकाशवाणी में कॉल लगी बड़ी मुश्किल से, हम तो धन्य हो गए।
0: अरे अच्छा लग रहा। धन्य तो हम हो जाते हैं जब हमारे श्रोताओं के फोन आते हैं, हमसे बातें होती हैं और हम उनकी पसंद का गीत सुनवा पाते हैं।
1: जी आपका तो खैर जितनी तारीफ की जाए कम है, बहुत ही अच्छे प्रोग्राम करके लाते हैं आप और हम भी खूब एंजॉय करते हैं।
0: जी धन्यवाद। क्या करते हैं मनोहर लाल जी आप?
1: जी मेरी कपड़े की शॉप है यहाँ पे।
0: तो कपड़े की शॉप में मतलब किस तरह के कपड़े आप बनाते हैं, बेचते हैं, क्या करते हैं?
1: जी खुले कपड़े होते हैं ना थान में, ये
0: जी
1: बेचते
0: जी
1: हम।
0: जी हाँ,
1: जैसे पैंट शर्ट के कपड़े हो गए, बेड शीट चादर हो गई, और सरकारी स्कूलों के जो कपड़े होते हैं स्कूल ड्रेस के,
0: जी
1: वो बेचते हैं।
0: तो आज के कार्यक्रम में क्या सुनना चाहेंगे?
1: जी आप सुना दीजिए, कर्ज फिल्म का गीत है
0: जी।
1: मेरी उम्र के नौजवानों दिल न लगाना ओ दीवानों।
0: तो मनोहर लाल जी हम आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत। कार्यक्रम में आपने फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। इस कार्यक्रम में फ़ोन के ज़रिए आपसे होती है ढेर सारी बातें। अपनी फरमाइश आप हम तक पहुंचाते हैं और हमारा भी पूरा प्रयास होता है कि आपको निराश ना होना पड़े, आपकी फरमाइश आप तक ज़रूर पहुंचे। तो आइए जान लेते हैं कौन से श्रोता हैं लाइन पर और क्या सुनना चाह रहे हैं आज के कार्यक्रम में। हेलो
1: रेखा जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, किससे बात हो रही हमारी
1: जी? मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: जी प्रेम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप क्या करते हैं?
1: जी रेखा जी, मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और एक भजन गायक भी हूँ।
0: तो भजन गायक हैं तो मतलब किसी सीजन के हिसाब से आपका काम चलता है या हमेशा काम मिलता रहता है आपको?
1: जी जैसे तो 8 दिन में हमारा प्रोग्राम होता रहता है, बट जैसे आपको बताऊँ नवरात्र हुए या सावन महीना शुरू हुआ या ऐसे कोई त्यौहार हुए या किसी के यहाँ कोई फंक्शन होता है ना, जैसे कि किसी के यहाँ बर्थडे हुआ या मकान का उद्घाटन हुआ या कोई पुण्यतिथि हुई, ऐसे कार्यक्रम में हमें बुलाया जाता है।
0: जी बहुत बढ़िया, सबका काम अच्छे से चलता रहे हमारी यही कामना है। आप क्या सुनना चाहेंगे?
1: हमारे 8 लोगों का ग्रुप बना हुआ है।
0: जी हाँ, ऐसे भजन मंडली टाइप की होगी आपकी, सब लोग साथ में जाते होंगे?
1: हाँ जी, उसमें 4 लोग हम गाने वाले हैं, 2 हारमोनियम बजाते हैं।
0: जी जी,
1: 2 लोग पर एक तबला बजाते हैं।
0: जी बहुत बढ़िया, जानकर अच्छा लगा कि आप भजन गाते हैं माता रानी के, भगवान भोलेनाथ के त्योहारों में, तो ये जानकर अच्छा लगा। क्या सुनना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में आप?
1: जी फिल्म का नाम है स्वर्ग और गाने के बोले ए मेरे दोस्त लौट के आजा।
0: क्या बात है, दोस्तों को याद कर रहे हैं आप?
1: हाँ जी, हमारे दोस्त हैं आकाशवाणी लखनऊ के दीप्ति जोशी और फिलहाल अभी हमारी बात हो रही है रेखा मिश्रा जी से, वो भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनवा देते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत। कार्यक्रम के लिए आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। थैंक यू सो मच।

0: श्रोताओं, जिंदगी में किसी का जाना जिंदगी में सूनापन ले आता है, इसलिए जितनी कोशिश हो सके किसी को छोड़कर कभी ना जाएं। कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। आज मैं आपके साथ हूं, आपकी अपनी दोस्त रेखा मिश्रा। तो बात कर लेते हैं अगले कॉलर से और जान लेते हैं क्या पसंद है आज के कार्यक्रम में। हेलो,
1: हवाओं का साथ है, हवाओं का साथ है, खुशियों की बहार है, तारों की टिमटिमाहट, जुगनुओं की उड़ान है, लग गई है मेरी कॉल कुछ तुमको कुछ हम कैसो में, मैम आपके साथ मेरी भी आ रही रेडियो की आवाज़ है। गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड मॉर्निंग। इतना बढ़िया सा परिचय देने वाले का नाम जान सकते हैं?
1: अनु पांडे गोंडा जी।
0: बहुत बहुत स्वागत है अनु जी आपका, आपसे हमारी दोबारा बात हो रही है ना?
1: हाँ।
0: तो क्या करती हैं आप?
1: मैम मैं तो पढ़ाई करती हूँ और उसके साथ साथ रेडियो सुनती हूँ और आप लोगों का शो सुनती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके बात करने का अंदाज, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज दूसरी बात बात हो रही है तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। आज जैसे ही मैंने आपकी आवाज़ सुनी रेडियो पे तो हमने कहा कैसे भी करके भगवान जी मेरी कॉल लग जाए, तो मेरी कॉल भी लग गई।
0: थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार है जो हम लोग

0: ऐसे कार्यक्रम ला पाते हैं। वैसे कौन सी
1: जी
0: पढ़ाई कर रही हैं आप, अपने बारे में कुछ बताएं।
1: मैं एनएससी कर रही हूँ।
0: तो इस समय आपकी छुट्टियां चल रही हैं।
1: हाँ
0: ओके, यानी जब गर्मी की छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तब आप हमारे कार्यक्रम में फोन कर पाएंगी कि नहीं?
1: मैं मतलब कोशिश करूंगी, जब भी मुझको टाइम मिलेगा ना मैं जरूर कॉल ट्राई करूंगी।
0: बिल्कुल, हम अपने श्रोताओं से यही कहना चाहते हैं कि वो अपने किसी भी काम का नुकसान करके हमें कॉल ना करें, लेकिन हाँ हमसे जुड़े ज़रूर रहें।
1: मैम पता है जब हम लोग किचन में काम करते हैं, मान लो भैया कुछ काम करते रहते हैं, तो एक हाथ से कोशिश करते हैं काम करें, दूसरे हाथ से कॉल लगाएं, या तो ऐसे कर लेते हैं जो दो सिस्टर है तीन सिस्टर है तो एक को बैठा देंगे कॉल लगाने के लिए, बाकी काम में जुट
0: वाह,
1: जाएंगे।
0: आप लोगों का ये प्यार देखकर हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और आप लोगों की वजह से ही हमारा कोई भी कार्यक्रम सफल हो पाता है। क्या सुनना चाहेंगी अनु जी आज के कार्यक्रम में?
1: मुझे मैम घर मूवी से गाना सुनना है, आपसे भी खूबसूरत आपकी अंदाज है।
0: वाह वाह, किसके लिए भाई ये गीत सुनवाया जा रहा है?
1: मैम स्पेशली आपके लिए है, और थोड़े से नाम लेना चाहूंगी।
0: जी बिल्कुल
1: रिंकी टिंकी है रायबरेली से,
0: जी।
1: और पूनम भी है कानपुर से।
0: ओके, कार्यक्रम में आपने फोन किया अनु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप तक पहुंचा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: ओके मैम बाय।
0: बाय।

0: जी हाँ श्रोताओं, ये गीत अभी आप सुन रहे थे जिसे पसंद किया था अनु पांडे ने और आपने हमें फ़ोन किया था गोंडा से। और अब आइए जान लेते हैं कौन से श्रोता हैं लाइन पर और कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आज के कार्यक्रम में। हेलो,
1: तारीफ कैसे करें आपकी हर लज़्ज़त खुशबू आ रही गुलाब की।
0: वाह वाह, क्या बात है भाई, आज तो हमारे श्रोताओं ने तारीफ के मामले में बिल्कुल पुल बांध दिया है। क्या नाम है आपका, हमारे कार्यक्रम में फोन किया है आपने?
1: मैं हसीना भी मंसूरी बोल रही हूँ मैडम, पालदाना का इंदौर से।
0: जी हसीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। कैसा मौसम है इंदौर का इस समय?
1: मैडम इंदौर का मौसम थोड़ा सुहाना हो गया, थोड़ी गर्मी से राहत मिली क्योंकि बादल हो रहे हैं ना, कभी धूप निकल रही कभी छांव हो रही, कभी
0: आप
1: एकदम
0: लोगों को,
1: कड़क धूप नहीं है, मतलब
0: आप लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है फिलहाल अभी लखनऊ
1: पर
0: में।
1: इस साल बहुत सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, बहुत ज्यादा गर्मी है।
0: जी हाँ, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ गई इस साल।
1: इसके
0: और अभी हमारे
1: इसका कारण भी यही मैडम कि इमारतें खड़ी हो रही बहुत और रोड गली गली में रोड पक्के हो रहे हैं, मतलब मिट्टी कच्ची है ही नहीं जो जमीन में पानी जा पाए,
0: बिल्कुल
1: और पेड़
0: हसीना
1: पौधे ही
0: जी,
1: नहीं जो हवा दे पानी खींचे ही है।
0: आपकी बात एकदम सही है। ये सब बातें हम सब लोग समझते हैं लेकिन
1: जी
0: पहल
1: जी
0: कोई नहीं कर पा रहा
1: अभी
0: है।
1: बारिश का मौसम में मैडम तो उसमें क्या है कि एक जने को एक 10 पेड़ जरूर लगाना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: पर हम
0: हाँ
1: लोग तो
0: लगा,
1: करते हैं सर, जैसे अभी रोड के पास आसपास तो पर्यावरण रहते ही मैडम, रोड के किनारे तो आपने देखा है बहुत पेड़ पौधे रहते हैं, तो वहां पर जैसे अपन कुछ भी खाते तो वहां पटक दे तो वो उगाता है,
0: हाँ हाँ
1: तो उसको
0: बिल्कुल सही
1: छोटा
0: कहा,
1: छोटा पौधा होता है ना उसको ले जाके अच्छी जगह मतलब लगा दे,
0: बिल्कुल सही
1: तो वो
0: बात
1: खुद
0: है
1: ही अपने आप ही बारिश में बड़ा हो जाता है।
0: जी हाँ। अब आ रही है बरसात तो हमारे श्रोताओं को ये कोशिश करनी होगी कि फिर से अपने पर्यावरण को हरा भरा
1: जी
0: करें।
1: जी
0: क्या सुनना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में हसीना जी?
1: फिल्म का नाम है गौतम गोविंदा और गाने के बोल हैं

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। इस कार्यक्रम को आप मीडियम वेव के मीटर 747 किलोहर्ट्ज के साथ ही न्यूज़ोन या रैप और डीटीएच के माध्यम से भी सुन सकते हैं। जिन श्रोताओं ने अभी अभी अपना रेडियो सेट ऑन किया है उनके लिए हम अपना नंबर एक बार फिर से बता दें। नंबर है 0522-2238825। और अब बात कर लेते हैं अगले कॉलर से। हेलो।
1: हेलो दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताएं।
1: ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी भगवान सिंह परमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद दीदी।
0: आप क्या करते हैं?
1: खेती किसानी करते हैं दीदी, और अभी किसान हैं तो अभी हमारे इधर बरसात का इंतजार है दीदी। जैसे ही बरसात चालू होगी तो हम सोयाबीन, मक्का, धान इनकी बुआई करेंगे दीदी।
0: जी, तो धान की तैयारी चल रही है कि नहीं?
1: दीदी धान की तैयारी चल रही है ना, कुछ लोग तो क्या है रोटा बेटा फिरवा के और उसको जमीन को बारीक करके और उसमें वो पाल उठा चुके हैं, उसमें पानी भर के फिर धान लगाएंगे दीदी, या बरसात ज्यादा हो जाएगी तो उससे पानी भरा जाएगा उसमें।
0: अच्छा, ये बताइए कि आपके यहाँ भी थोड़ा बहुत मौसम में बदलाव हुआ है कि नहीं?
1: जी दीदी, मेरे यहाँ 4 दिन लगातार बरसात हुई थी 4 दिन पहले, अब 4 दिनों से पानी नहीं गिरा है, लेकिन अभी 8 दिन पानी नहीं आएगा, हमारे इधर मानसून अभी नहीं आए हैं।
0: जी मानसून तो अभी कहीं नहीं आया है, हम लोग को भी इंतजार है मानसून का। तो क्या सुनवाएं आज के कार्यक्रम में आपको?
1: कहीं कहीं की जगह पे दीदी।
0: भगवान सिंह जी, क्या सुनवाएं आपको आज के कार्यक्रम में?
1: दीदी फिल्म का नाम है बेखुदी और गाने के बोले मम्मी डैडी मेरी शादी करवा रहे हैं।
0: वाह क्या बात है, तो सुनवा देते हैं आपको आपकी पसंद का ये गीत।
1: सुनवा दीजिए, सभी दोस्तों को डेलिकेट रहेगा जो लाइव सुन रहे हैं।
0: जी आपके सभी दोस्तों के लिए और सभी श्रोताओं के लिए हम सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। आपने कार्यक्रम में फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाश वाणी का लखनऊ केंद्र. कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें. अब जान लेते हैं अपने अगले श्रोता के बारे में. हेलो.
1: हेलो मैम, नमस्कार.
0: नमस्कार, किससे बात हो रही हमारी?
1: मैं रमेश प्रजापति, ग्राम बाया, तहसील रहती, जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ मैम.
0: जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में. और क्या हाल है आपके?
1: आ रही है आपकी थोड़ी सी.
0: जी
1: जी,
0: आवाज आ रही है अब?
1: जी हाँ भाई.
0: क्या हाल है सीहोर के?
1: मैं सीहोर के बढ़िया है, धूप निकल रही है, गर्मी पड़ रही है, अभी पानी आया नहीं है.
0: जी हाँ, वैसे क्या करते हैं आप?
1: मैं सिलाई का काम करता हूँ मैम, कपड़े सिलता हूँ. दुकान पे काम कर रहा था, काम करते करते लगा रहा था, लग गया.
0: जी, रेडियो तो ऐसा है कि आप उसे काम करते करते भी सुन सकते हैं. हाँ, फोन मिलाने के लिए आपको थोड़ी कोशिश जरूर करनी पड़ती है.
1: जी,
0: तो क्या
1: मैं, हमारे मित्र ने, भगवान सिंह परवान ने लगाया ना, तो उनका लग गया, तो मैंने कहा वो शादी करवा रहा है, तो मैंने कहा मैं हाथ ही दिखा दूं पंडित जी को.
0: क्या बात है, मतलब दोस्तों की देखा देखी अब इस समय आज चल रही है. हाँ
1: जी.
0: ये अच्छी बात है कि आपके,
1: इसलिए मैंने कहा चलो हाथ ही दिखा देते हैं, आप कुछ तो करें.
0: चलिए, बढ़िया है कि आपके दोस्त ने फोन मिलाया और आपने भी कोशिश की और आपकी कोशिश भी कामयाब हो गई. ये बहुत बड़ी बात है.
1: जी जी जी, बहुत बढ़िया हुआ जी, साथ फोन लग गया, नहीं तो लगता नहीं है हमारा फोन.
0: तो क्या सुनना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में आप?
1: आज का है, फिल्म का नाम है लोफर. पंडित जी ने हाथ मेरा देखा था नैनीताल में.
0: क्या बात,
1: मित्रों को याद कर लो.
0: जी हाँ जी हाँ,
1: तो आप है और पूरन वर्मा जी है और आशुतोष जी है, रमेश पात्रे है, राकेश है शिमला से और विदिशा से शिवलुवार है.
0: तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत. कार्यक्रम में आपने फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
1: जी जी जी जी, धन्यवाद मैम.

0: कुछ तुम कहो कुछ हम कहे। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फरमाइशी फिल्म संगीत का ये फोन इन प्रोग्राम। इस कार्यक्रम में आज मैं आपके साथ हूँ रेखा मिश्रा, और समय है अपने अगले कॉलर से बात करने का। हेलो
1: जी मैम, जय श्री महाकाल।
0: जय महाकाल। आपने भी उज्जैन से फोन मिलाया है?
1: मैं विदिशा एमपी मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ।
0: जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप अपना नाम बताएं हमें।
1: मैम शिवा लोहट।
0: विदिशा से फोन किया है शिवा जी ने।
1: जी मैम।
0: जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। क्या करते हैं आप शिवा
1: जी? जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं एक्चुअली मैम ब्लाइंड हूँ।

0: और समाज सेवा के कार्यों में लगा रहता हूँ, जैसे कि रक्तदान करना हो गया, समय समय पे पक्षियों को दाना डालना, पानी रखना, गाय को चारा देना, पानी रखना, और समय समय पे गरीब लोगों को भोजन कराना मैम।
1: चलिए, बहुत बढ़िया बात है शिवा जी। आज के समय में ये सब भी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई हैं कि हम ये सब भी करें, समाज सेवा में थोड़ा बहुत लगे रहें और जितना हो सके एक दूसरे का सहयोग करें। क्या सुनवाएं आज के कार्यक्रम में आपको?
0: मैम, एक मूवी है दिल कितना नादान, उसमें कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में गाना रहेगा, आएगी बरसात कहाँ जाओगे, गिरने दे पानी भीग जाएंगे।
1: तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। कार्यक्रम में आपने फोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: आयशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, आइए बात कर लेते हैं अगले श्रोता से। हेलो
1: हेलो,
0: जी नमस्कार, आपका नाम जान सकते हैं?
1: नमस्कार।
0: आप अपना नाम बताएं हमें।
1: हम ग्राम कानाखेड़ा, तहसील कालपी, जिला जालौन से राजेश विश्वकर्मा बोल रहे हैं।
0: जी राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप क्या करते हैं राजेश जी?
1: जी हम ब्लाइंड है तो दुकान चलाते हैं, किराने की दुकान रखे हैं
0: जी
1: और दुकान चलाते हैं और नाल बजाते हैं और हारमोनियम बजाते हैं, गायकी करते हैं। जब भागवत भागवत का प्रोग्राम होता है, कीर्तन वगैरह का, तो
0: जी जी जी
1: चले जाते हैं। घर में फ्री टाइम में दुकान चलाते हैं।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप किसी ना किसी तरीके से अपने आप को व्यस्त रखते हैं। तो दुकान में
1: जी।
0: आपने किसी को अपनी मदद के लिए रखा है या आप अपना काम संभाल लेते हैं?
1: नहीं, हम अपना संभाल लेते हैं, अपना हमें इतना अनुभव है कि अपना सब संभाल लेते हैं काम।
0: जी बहुत बहुत बढ़िया
1: कोई
0: बात है।
1: चीज तौल के देनी है तो तौल के भी दे लेते हैं, रुपया भी पहचान लेते हैं, सब ऊपर वाले की कृपा, सब हमें आइडिया है।
0: बिल्कुल, बहुत सब ऊपर वाले की ही कृपा होती है, उन्हीं का दिया हुआ हमें मिलता है। तो क्या सुनना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में?
1: एक गाना है जो मुझे बहुत पसंद है, साजन फिल्म का गीत है और गाने के बोले जिए तो जिए कैसे बिना आपके।
0: वाह क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गीत सुना आपने। वैसे साजन फिल्म के सभी गाने बहुत ही अच्छे
1: हाँ,
0: थे,
1: सभी गाने अच्छे हैं
0: तो हम सुनवा
1: और
0: देते हैं।
1: हमारे एक बहुत अच्छे परम मित्र हैं,
0: जी
1: जिला हमीरपुर, ग्राम ममना के रामशरण विश्वकर्मा।
0: जी हाँ, उनके मेल हमें बहुत मिलते हैं।
1: और जितने श्रोता सुन रहे हैं सभी दोस्तों के लिए,
0: तो आपके
1: और
0: परम मित्र और आपके सभी दोस्तों के लिए हम सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत। कार्यक्रम के लिए आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: श्रोताओं, हम आप पहुंचे हैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर, तो चलते चलते बात कर लेते हैं आज के आखिरी कॉलर से। हेलो।
1: हेलो
0: जी नमस्कार, किससे

0: बात हो रही हमारी।
1: नमस्ते दीदी, गांधी पार्क मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ दीदी, मनोज नामदेव
0: जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं,
1: जी। दीदी बिल्कुल
0: तो अपने बारे में कुछ बताएं हमें।
1: जी दीदी, बताना चाहता हूँ दीदी, छोटी शॉप है मेरी
0: जी,
1: शॉप मेरी सिलाई वाली मशीन टेलर है दीदी, वो चलाते हैं
0: जी। तो किस तरीके से कपड़े सिलते हैं आप, यानी पैंट शर्ट या फिर सलवार सूट या दुकानों के लिए सिलते हैं?
1: जी बिल्कुल, बताना चाहते हैं दीदी, पैंट शर्ट सफारी और सलवार सूट सभी कपड़े सिलते हैं दीदी हम।
0: तो मतलब कस्टमर जो आपको कपड़े दे जाते हैं, आप उसकी सिलाई करके कस्टमर को देते हैं?
1: जी बिल्कुल।
0: तो क्या सुनवा दें आज के कार्यक्रम में आपको?
1: जी दीदी सुनवा दो, फिल्म का नाम रहेगा हाँ मैंने प्यार किया, इस मूवी सुनवा दो आप।
0: हाँ मैंने भी प्यार किया, फिल्म का कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: इसमें दीदी सारे गीत बढ़िया है, जौन सा भी आपको अच्छा लग रहा है आप सुनवा दो।
0: नहीं आप अगर आपकी कोई पसंद हो तो आप हमें बताएं, तो हम आपको आपकी पसंद का गीत सुनाएं।
1: कोई भी गीत चलेगा दीदी, इसके सारे गीत बढ़िया, एक से बढ़कर एक गीत है इसके।
0: अच्छा क्या बात है, लगता है ये फिल्म आपने कई बार देखी है।
1: बिल्कुल ये फिल्म तो कहें कि हमारे दिल के करीब है, और सारे गीत मैंने बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुने हैं, इतने दिल को छूने वाले हैं क्या कहें। और आपका प्रोग्राम सुनते रहते हैं तो इतना अच्छा आपका प्रोग्राम लगते हैं दीदी, इतना अच्छा प्रोग्राम लगते हैं कि क्या कहें मैं, अगर धन्यवाद दूं आपके टीम के लिए।
0: चलिए मनोज जी, हमारे पास समय की थोड़ा कमी है तो हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। कार्यक्रम के लिए आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद दीदी आपको।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें अब समाप्त होता है। दें इजाजत अपनी दोस्त रेखा मिश्रा को और आप जुड़े रहें हमारे अन्य कार्यक्रमों के साथ।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्म संगीत का फोन इन कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। मीडियम वेव 401.6 मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। 12 बजे हैं, लीजिए सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: संग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे आपके सबके चहेते कार्यक्रम उमंग में। मैं हूँ विमलेश, नमस्कार।
3: अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है राधे नगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: अगर आप एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हो तो अपने आप को अपने उद्देश्य से बांधो, ना कि लोगों से। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। भीड़ में एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हो जाते।
3: आपके सुंदर विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कारिया जी। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का। लिखा है, नमस्कार, ये भी जानिए श्रृंखला के अंतर्गत समयानुकूल विषय गर्मी के मौसम में अपनी देखभाल कैसे करें पर लगातार 3 दिनों तक जीवन उपयोगी मालूमात प्रदान की गई। 12 मई को भीषण गर्मी के मौसम में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, 12 बजे से 4 बजे तक धूप में निकलने से बचना चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना आवश्यक है। आगे लिखते हैं,
2: 13 मई को गर्मी में हमारा खान पान कैसे होना चाहिए और 14 मई को लू लगने पर क्या प्राथमिक उपचार करने चाहिए, इस बात की जानकारी बहुत ही सरल और सहज ढंग से समझाई गई। हमने व्यक्तिगत रूप से इन बातों को अमल करना शुरू कर दिया है। उमंग की पूरी टीम को हम हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने हमें जागरूक कर दिया।
3: आगे आपने लिखा है, कारगिल के वीर योद्धाओं के अदम्य साहस की शौर्य गाथा को बयान करने वाले ऑपरेशन विजय पर 13 मई को विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई। इस प्रस्तुति के लिए उमंग की संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है। धन्यवाद।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद उमंग टीम की ओर से इस विस्तृत विश्लेषण व प्रोत्साहन के लिए।
3: ग्राम राजापुर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ से मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति।
2: ग्राम कालापारा से रामचंद्र गुप्ता, पांडे राम राजवाड़े लिखते हैं,
3: आज के जमाने में यदि हम सब मिलजुल कर रहें और भाईचारा बनाए रखें तो यही जिंदगी जीने का असली मजा है।
2: जी,
3: आपका कार्यक्रम हम हर रोज सुनते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है।
2: जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
3: ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आगे लिखते हैं,
2: हमें आपका उमंग कार्यक्रम बेहद पसंद है। हमें दिनांक 21 मई 2026 दिन गुरुवार का उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम में कहानी पेड़ हमारे दोस्त बहुत ही प्रेरणादायक लगी। धन्यवाद।
3: स्वागत है आप सबका श्रोताओं एक बार फिर से ये भी जानिए श्रृंखला की अगली कड़ी में।
2: पिछले दिनों हमने चर्चा की लोकटक, मानसरोवर और चिल्का झीलों की, उनके बारे में जाना। तो अजीत जी, आज हम किस झील की चर्चा करने जा रहे हैं?
3: विमलेश जी, देखिए, यदि सारी झीलों की चर्चा हो जाए और कश्मीर की डल झील की चर्चा न हो तो चर्चा अधूरी सी लगेगी।
2: बिल्कुल।
3: तो आइए बढ़ाते हैं आज की चर्चा को। जी, तो आपको बता दें कि डल झील भारत की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। ये श्रीनगर में स्थित है। आपको पता है इसे कश्मीर का गहना या ज्वेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। जहां तक इसके पानी की बात है, यहाँ पानी झेलम नदी और आसपास के पहाड़ी झरनों से आता है। तो श्रोताओ, अब बात करते हैं इसके नाम पर। नाम है डल झील। इसके बारे में मान्यता है कि डल शब्द कश्मीरी भाषा के दल शब्द से संभवतः आया है, जिसका अर्थ झील ही होता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल में जल से भरे विस्तृत क्षेत्र को दल कहा जाता था। बाद में यही नाम इस झील के लिए भी प्रयुक्त होने लगा। श्रोताओ, डल का मतलब ही झील होता है, इसलिए कश्मीर में इसको सिर्फ डल कहते हैं, डल झील नहीं। ये झील दुनिया भर के पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के हाउस बोट बहुत ही लोकप्रिय हैं, जिन्हें शिकारा भी कहते हैं। शिकारा एक स्थानीय शब्द है जिसका अर्थ होता है नाव। शाम को धीरे धीरे जब सूरज ढलता है तो प्रकृति का नजारा देखने लायक होता है। शिकारों पर गीत, संगीत और चाय कहवे का मजा बेजोड़ है। शिकारे पर बजाए जाने वाले पारंपरिक मुख्य कश्मीरी वाद्य यंत्र हैं संतूर, रबाब, सारंगी, सहतार और साज ए कश्मीर। ये वाद्य यंत्र और पर्वतीय गायन शिकारे पर

0: समा बांध देता है। श्रोताओं, एक और खास बात आपको बता दें कि डल झील में भी तैरते हुए छोटे छोटे बगीचे नुमा द्वीप हैं। इन्हें फ्लोटिंग गार्डन या स्थानीय भाषा में राद कहते हैं। ये ज्यादा भारी नहीं होते, इसलिए नावों द्वारा यहाँ से वहां ले जाए जा सकते हैं। डल झील में जो तैरते हुए बगीचे नुमा द्वीप हैं, वे मानव निर्मित हैं, जो झील की खरपतवार और मिट्टी से बनाए जाते हैं। इन नावों पर सब्जियां, फूल और खासकर कमल के फूल उगाए जाते हैं। एक बात और श्रोताओं, इस झील में फ्लोटिंग मार्केट यानी तैरते हुए बाजार भी हैं। यहाँ अभी भी कहीं कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली देखने को मिलती है, यानी ये सब्जी लीजिए और बदले में वो सब्जी या फल दे दीजिए। श्रोताओं, ये जानना भी बड़ा मजेदार है कि आखिर ये झील बनी कैसे। तो इसका मुख्य कारण है हिमालयी भूगर्भीय परिवर्तन। बहुत पहले हिमालय क्षेत्र में धरती की परतों के उठाव और धंसाव की प्रक्रिया से वहां कहीं पर्वत बने तो कहीं गहरे गड्ढे, ग्लेशियरों की बर्फ पिघली और उनका पानी नदी के रूप में घाटों और गड्ढों में जमा हुआ। डल झील इसी का परिणाम है। श्रोताओं, डल झील का पानी मीठा है, यहाँ भी प्रवासी पक्षी बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, लेकिन अब ये झील प्रदूषण और सिल्टेशन यानी मिट्टी भराव की समस्या से जूझ रही है। इसके समाधान के लिए कई कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। श्रोताओं, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। झील के किनारे शानदार शालीमार और निषाद गार्डन्स की सुंदरता देखते ही बनती है। सचमुच डल झील न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य से समृद्ध है, बल्कि ये झील कश्मीरी जीवन शैली, संस्कृति और पर्यटन का भी प्रतीक है।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की हमारी जानकारी सुंदर प्यारी डल झील के बारे में।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से आज का प्रश्न है, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है?
0: आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। और हाँ,
1: हमारे IVRS का नंबर भी नोट कर लीजिए, 8800-440-559। आप हमें यानी CIT NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों और कार्यक्रमों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी।
0: और अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है गुलीवर की विचित्र यात्राएं।
1: इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है। स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण जोनाथन स्विफ्ट द्वारा रचित कथा का रेडियो रूपांतरण किया गया है, जो रहस्यों और रोमांच से भरपूर है।
2: मैंने कई लंबी लंबी यात्राएं की। एक बार
1: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
2: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे, बाद में पता चला कि ये लिलिपुट द्वीप है। आज का हमारा, जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने
1: आप को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: मैं आश्चर्य में पड़ा सोच ही रहा था,
1: थोड़ा सा फंबल था,
2: कि कोई चीज
1: तो अब आज का उमंग कार्यक्रम
2: मेरे पैरों पर रेंगती रेंगती मेरी छाती पर आकर
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: कुछ देर बाद उसी प्रकार के कई प्राणी मेरे शरीर पर चढ़ाए। मैं जोर से चिल्ला उठा, कौन हो तुम? मेरा चिल्लाना था कि वो लोग लुढ़कते पुढ़कते और चीखते चिल्लाते भागे। इसके बाद मैंने उठने का प्रयत्न किया तो कुछ धागे टूट गए। ये देख उन लोगों ने सुई जैसे पतले पतले तीरों की वर्षा शुरू कर दी। एक तीर मेरी बाईं आंख पर लगा। ये देख सिपाहियों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुझे सौंप दिया। 5 को तो मैंने अपने कोट की जेब में रख लिया और 1 को उंगलियों में पकड़कर मुंह की ओर ले जाने लगा। वो मारे भय के बुरी तरह चीखने लगा। मैंने उन सबको जमीन पर छोड़ दिया। छुटकारा पाते ही वो गिरते पड़ते वहां से भागे।

इस बात का और लोगों पर अच्छा असर पड़ा। बादशाह ने जब ये सुना तो उसने भी मेरी प्रशंसा की। राज दरबार के कुछ व्यक्ति मेरे भोजन पानी के खर्च को देखकर सोचने लगे कि इससे देश में अकाल पड़ जाएगा। वे विषैले तीरों से मेरी हत्या कर देना चाहते थे, परंतु सौभाग्य से बादशाह उनकी बातों में नहीं आया। उसने मेरे भोजन पानी का सारा उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया और 6 विद्वानों को मुझे उस देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर

देश की भाषा सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। कुछ दिनों में मैंने उन लोगों की भाषा सीख ली। मेरे स्वभाव और व्यवहार से वे लोग बहुत खुश थे। अब वे निडर होकर मेरे पास आते, कभी वे मेरे सिर पर उछलते कूदते और कभी नाचने लगते। बच्चे तो मेरे बालों में आंख में चौनी खेलते। इस तरह मैं सबका खिलौना बना हुआ था। एक दिन मैंने बादशाह से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना की। उसने मुझे इन शर्तों पर मुक्त करना स्वीकार किया कि मैं बादशाह की आज्ञा के बिना कहीं न जाऊं और किसी देश से युद्ध छिड़ जाने पर मैं लिलिपुट वासियों की सहायता करूं। कुछ दिन बाद मुझे ज्ञात हुआ कि पड़ोसी देश ब्लेफुस्कू के बादशाह ने एक शक्तिशाली जहाजी बेड़ा तैयार कर लिया है। वो लिलिपुट पर चढ़ाई करने का अवसर देख रहा है। शर्त के अनुसार मैंने उन लोगों की सहायता करने की एक योजना बनाई। कुछ रस्सियां और कांटे लेकर मैं ब्लेफुस्कू की खाड़ी की ओर चल दिया। ये खाड़ी मेरे लिए विशेष गहरी न थी, पर उन लोगों के लिए तो ये महासागर से कम न थी। मैंने खाड़ी में घुसकर वहां खड़े सब जहाजों को कांटों में फंसा लिया और उन्हें खींचता खींचता लिलिपुट की ओर चल दिया। ब्लेफुस्कू के सैनिक मेरे ऊपर तीर बरसाने लगे, पर चश्मे और चमड़े के कोट के कारण उनके तीर मेरा कुछ भी ना बिगाड़ सके। ब्लेफुस्कू के जहाजों को खींचकर जब मैं लिलिपुट की खाड़ी में ले गया तो वहां के बादशाह और लोगों ने प्रसन्नता से उछल उछल कर मेरा स्वागत किया। बादशाह ने मुझे अपने देश की सबसे बड़ी उपाधि से सम्मानित किया। एक दिन मैं लिलिपुट खाड़ी के किनारे घूमता घूमता दूर जा निकला। वहां मुझे पानी में एक बड़ा तख्ता तैरता दिखाई दिया। ध्यान से देखने पर ज्ञात हुआ कि वो एक उल्टी हुई नाव थी। उसे देखकर मैं खुशी से नाच उठा। ये नाव नहीं, मेरी आशाओं का दीपक थी। कुछ दिन बाद मैंने बादशाह से अपने देश जाने की आज्ञा मांगी। उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से विदा किया और बहुत सी भोजन सामग्री मेरी नाव पर लदवा दी। सौभाग्य से रास्ते में मुझे एक जहाज दिखाई दिया। नाविकों ने मुझे जहाज पर चढ़ा लिया। ये देख मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा कि जहाज मेरे ही देश का था। लिलिपुट से लौटकर 2 महीने तक मैं घर पर ही रहा। उसके बाद मुझे फिर जहाज पर काम मिल गया। कुछ दिन बाद हमारा जहाज हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर चलते चलते हमारा जहाज तूफान में फंसकर रास्ता भूल गया। और भटकते भटकते एक टापू के पास पहुंचा। नाविक तो जहाज की देखभाल में लग गए और मैं अपने कुछ साथियों के साथ नाव लेकर पानी की तलाश में टापू की ओर चल दिया। मुझे पानी कहीं न मिला। पेड़ की ठंडी छाया देख

मैं वहीं लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं नाव की ओर लौटा तो क्या देखता हूं कि मेरे साथी नाव को तेजी से जहाज की ओर लिए जा रहे हैं। मैं उन्हें आवाज देने ही वाला था कि मेरी नजर एक विशालकाय आदमी पर पड़ी। आदमी क्या, वो तो पूरा राक्षस था। समुद्र का पानी उसके घुटनों तक ही आ रहा था। उसे देख अपनी जान बचाने के लिए मैं एक खेत में जा छिपा। कहने को तो ये जौ का खेत था, पर जौ के पौधे हमारे देश के पेड़ों से कम ऊंचे न थे। पेड़ तो पहाड़ की चोटी की समता करते थे। जौ के पौधों की आड़ में छिपे छिपे मैंने देखा कि कुछ आदमी उसी खेत की ओर आ रहे हैं। उन्होंने जौ काटने शुरू किए तो एक की नजर मुझ पर पड़ी। उसने खिलौने की तरह मुझे उठाकर हथेली पर रख लिया। मुझे लगा कि मैं एक ऊंचे पेड़ की टहनी पर चिड़िया की तरह बैठा हूं, पर क्या मैं चिड़िया की तरह आजाद था? उस लंबे चौड़े किसान ने मुझे उलट पलट कर देखना शुरू किया तो मैं डर के मारे चीखने लगा। ये देख उसने मुझे धीरे से जमीन पर रख दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने चिल्ला चिल्ला कर उसे अपने बारे में बताना चाहा, पर वो समझे तब ना। उसने मुझे बड़ी सावधानी से उठाकर अपनी चौड़ी हथेली पर रख लिया और अपने घर ले आया। घर लाकर जैसे ही किसान ने अपनी पत्नी को दिखाने के लिए हथेली उसकी ओर बढ़ाई तो मुझे देखकर वो स्त्री इस तरह डर गई जैसे कोई सांप बिच्छू को देखकर डर जाए। ये देख किसान को बड़ा मजा आया और वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे लगा कि आंधी चल रही है और बादल गरज रहे हैं। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर चारों ओर देखने लगा। वहां सभी प्राणी और सभी चीजें बड़े बड़े आकार की थीं। नांद जैसे प्याले, बड़े बड़े थालों जैसी रोटियां, शेर शेरनी जैसे कुत्ते बिल्लियां, छोटे से छोटा बच्चा भी मुझसे चौगुना लंबा चौड़ा। इन सब के बीच में मैं अपने आप को मक्खी मच्छर जैसा अनुभव कर रहा था। लिलिपुट के लोग मुझे देखकर जितना हैरान हुए होंगे, उससे कहीं अधिक हैरानी मुझे इन लोगों को देखकर हुई। इन लोगों में रहते रहते मेरा भय मिट गया। इनका आकार ही डरावना था, वैसे आदमी भले थे। मैंने इस देश की भाषा भी सीख ली। इससे मुझे बहुत सुविधा हो गई। कभी कभी मैं मेज पर खड़े होकर किसान और उसके परिवार वालों को तरह तरह के खेल दिखाता। मेरा नाच और तलवार चलाना उन्हें बहुत पसंद आता। इससे उनका अच्छा खासा मनोरंजन हो जाता। ये देखकर किसान के मित्र ने उसे सलाह दी कि वो राजधानी में लगने वाले मेले में टिकट लगाकर लोगों को मेरा खेल दिखाए। अब किसान ने मुझे एक लकड़ी के डिब्बे में बंद किया और उसे हाथ में लटकाकर मेले में ले आया। राजधानी के लोग
मेरा खेल देखने के लिए टूट पड़े। मेरे खेल से अधिक वे मुझे देखना चाहते थे। उनके लिए तो मैं जीता जागता खिलौना था। यहां मुझे दिन में 10-10 बार खेल दिखाने पड़ते थे। इस तरह काफी पैसा कमाने के बाद उस किसान ने 1000 सोने के सिक्कों के बदले मुझे उस देश की महारानी को बेच दिया। महारानी ने मेरे लिए एक पिंजरा बनवाया। पिंजरा क्या, ये तो एक कमरा था। खाना खाते समय महारानी पिंजरे को अपनी मेज पर रखकर मुझे भी खाना खिलाती। उसने मेरे लिए विशेष रूप से छोटे छोटे बर्तन भी तैयार करवाए। एक बार राजा और रानी अपने नौकर चाकरों के साथ अपने राज्य का दौरा करने निकले। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। चलते चलते हम ऐसे नगर में पहुंचे जो समुद्र के समीप ही था। समुद्र को देखकर मुझे अपने देश की याद आ गई और मैं उदास हो गया।

0: ये देखकर नौकर पिंजरा उठाकर समुद्र के किनारे ले गया। पिंजरे को एक चट्टान पर रखकर वो समुद्र की रेत पर लेट गया। समुद्र की ओर ललचाई नजरों से देखते देखते पता नहीं मुझे कब नींद आ गई। खड़खड़ की आवाज सुनकर जब मेरी आंख खुली तो भय और आश्चर्य से मेरा दिल धड़कने लगा। मेरा पिंजरा हवा में उड़ रहा था। मैं अभी सोच में पड़ा ही हुआ था कि अचानक पिंजरा इतनी तेजी से नीचे गिरा कि मेरी आंखें भय से बंद हो गईं। छपाक! पिंजरा एक बार तो पानी में काफी नीचे तक चला गया, पर फिर केवल थोड़ा सा ही डूबकर नाव की तरह तैरने लगा। खुला समुद्र, लहरों के थपेड़े, तीर की तरह चुभती हुई ठंडी हवा, खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। मेरे दुर्भाग्य का कहां अंत होगा? इससे तो मैं महारानी की कैद में ही ठीक था, मैं सोचने लगा। मैंने अपने आप को भाग्य के सहारे छोड़ दिया। उस असहाय स्थिति में पड़े पड़े मुझे काफी देर हो गई थी कि मुझे लगा जैसे कोई पिंजरे को तेजी से एक ओर खींच रहा हो। पिंजरे की खिड़की से हाथ निकालकर मैं जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा। जब जवाब में मैंने अपने देश की भाषा सुनी तो मेरा रोम रोम खिल उठा।
1: और अब सुनते हैं आज का आखिरी कार्यक्रम, शीर्षक है बिन्नी का सपना।
2: इस कार्यक्रम में बिन्नी नाम की एक बच्ची के सपने और महत्वाकांक्षा के बारे में बताया गया है कि वो बड़ी होकर क्या करना चाहती है। इस कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को प्रोत्साहित किया गया है कि वे भी अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करें।
1: बिन्नी का सपना।
3: अरे तुम्हें क्या हुआ?
4: बिन्नी, मुझे बुखार हुआ है। मेरा तापमान 2 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है।
3: ओह, किसने की तुम्हारी ये हालत?
4: इन गैसों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है।

तापमान हम बढ़ाते हैं, मौसम में गड़बड़ी फैलाते हैं, पर्वतों की बर्फ को पिघलाकर तटीय क्षेत्रों को डुबोते हैं।

0: नाम है हमारा CO2 और CH4, ग्रीन हाउस गैस हम कहलाते हैं।
1: SO2 है मेरा नाम, तेजाब की बारिश करना है मेरा काम, सांस लेना मुश्किल कर देता हूँ, जीवन में उलझन भर देता हूँ।
2: NO2 है मेरा नाम, सेहत बिगाड़ना मेरा काम, सर दर्द खांसी बढ़ाता हूँ, बहुत खतरनाक माना जाता हूँ।
0: CFC है मेरा नाम, ओजोन परत को हानि पहुंचाना मेरा काम, जिससे यूवी किरणें आ जाती हैं, त्वचा कैंसर का खतरा बढ़ाती है।
3: तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं अभी इन्हें मजा चखाती हूँ।

0: ये सपना था, पर हमें सचमुच अपनी पृथ्वी को बचाना है।
1: तो श्रोता, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बिन्नी का सपना, और अब इसी कार्यक्रम के साथ आज का हमारा उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार। उमंग उमंग उमंग
3: उमंग। अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: श्रोताओं, हम आपको बता दें, एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। पेश है सदाबहार नगमे। लता मंगेशकर की आवाज में पहला गीत हमने लिया है फिल्म लोफर से। गीतकार हैं आनंद बख्शी और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

राजेंद्र कृष्ण का गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है इंतकाम।

मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे।

0: धन्यवाद।
1: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
2: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे,

0: लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे चोर मचाए शोर फिल्म का गीत।
1: आयोजन किया गया अलग अलग स्थान पर सरकार के निर्देशन अनुसार।
0: कार्यक्रम का अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है आन मिलो सजना फिल्म से। गायिका हैं लता मंगेशकर, गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

अनजान का गीत, बप्पी लाहिड़ी का संगीत, आइए सुनते हैं फिल्म गुरु में। गाने में लता मंगेशकर का साथ दिया है शैलेंद्र सिंह ने।

0: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: राहुल देव बर्मन के संगीत संयोजन में हम आपको सुनवा रहे हैं आनंद बख्शी की गीत रचना, युगल स्वर किशोर कुमार और लता मंगेशकर के। फिल्म का नाम है अपना देश।

0: सदाबहार नगमों के सफर में आज बस इतना ही। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। एक बजने वाले हैं, समाचार कुछ ही पलों में हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय।

0: करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
2: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
1: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। अपने दौरे के अगले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर जाएंगी, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेकाडातु परियोजना मौजूदा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करती है और कावेरी जल पर तमिलनाडु के अधिकारों का हनन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802827 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की पहली सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान पर घरेलू चुनौतियों और आतंकवाद को निरंतर समर्थन देने से ध्यान भटकाने के लिए दुष्प्रचार का आरोप लगाया। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि यात्रा के दौरान राष्ट्रीय पठन दिवस और पठन माह से जुड़े कार्यक्रमों का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में कुछ सूचनाएं।

ग्राम फुलवरिया जिला खीरी से चंद्रभाल पुत्र अशरफीलाल ने सूचित किया है कि शिव शंकर 10 अप्रैल 2026 से कहीं लापता हैं। इनकी उम्र 30 वर्ष, कद लगभग 5 फीट 6 इंच, रंग सांवला और चेहरा लंबा है। शिव शंकर के बारे में कोई भी जानकारी होने पर क्षेत्र अधिकारी थाना पलिया जिला खीरी को सूचित कर सकते हैं। कोई भी सूचना इस मोबाइल नंबर पर भी दी जा सकती है। नंबर है 9628 91

7505. ग्राम भटेहिया लखीमपुर खीरी से मालती देवी पत्नी तुलसीराम ने सूचित किया है कि जूली देवी पुत्री तुलसीराम 12 मार्च 2026 से कहीं लापता हैं। इनकी उम्र 21 वर्ष, कद 5 फीट, रंग गोरा और चेहरा लंबा है। गुमशुदगी के वक्त इन्होंने हरे रंग का सलवार सूट पहना था। जूली के बारे में कोई भी जानकारी होने पर थाना अध्यक्ष उतरौला जिला खीरी लखीमपुर को सूचित कर सकते हैं। कोई भी सूचना इस मोबाइल नंबर पर भी दी जा सकती है। नंबर है 7800158862। ग्राम निपनिया थाना गोला जिला खीरी से भारत पुत्र चंद्रिका प्रसाद ने सूचित किया है कि मीना देवी 28 फरवरी 2026 से कहीं लापता हैं। इनकी उम्र 29 वर्ष, कद लगभग 4 फीट और 11 इंच, इकहरा बदन और रंग गेहुआ है। मीना के बारे में कोई भी जानकारी होने पर थाना अध्यक्ष हैदराबाद जिला खीरी को सूचित कर सकते हैं। कोई भी सूचना क्षेत्र अधिकारी थाना गोला जिला खीरी को भी दी जा सकती है। इसके अलावा कोई भी जानकारी हो तो आप इस मोबाइल नंबर पर भी सूचित कर सकते हैं। नंबर है 9555110823। बहद ग्राम गुरु नानक का पुरवा कोतवाली सदर जिला खीरी से सूचना प्राप्त हुई है कि लौजीत कौर 27 फरवरी 2026 से कहीं लापता हैं। इनकी उम्र लगभग 15 वर्ष, कद 4 फीट 6 इंच और रंग सांवला है। गुमशुदगी के वक्त इन्होंने पीले और गुलाबी रंग का सलवार सूट पहना था। लौजीत कौर के बारे में कोई भी जानकारी होने पर चौकी प्रभारी महेवागंज कोतवाली सदर जिला खीरी को सूचित कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सूचना इन मोबाइल नंबरों पर भी दी जा सकती है। नंबर है 8081596366। एक नंबर और नोट कर लें, 9984263252। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई।

0: ज्ञान विकास और अवसरों का मधुर संगम है कार्यक्रम नई उड़ान, जहां समय की अर्थपूर्ण चर्चाएं, देश के विकास से जुड़ी ताजा झलकियां, युवाओं के लिए मार्गदर्शक करियर सूत्र और धरातल से लाई गई सच्ची आवाजें हर रोज शाम 5:45 पर आकाशवाणी प्राइमरी चैनल 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव पर सुनना ना भूलिए कार्यक्रम नई उड़ान।
1: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। 1:10 होने वाले हैं। अब इलाकाई खबरें नष्ट की जाएंगी।
2: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2,400 करोड़ रुपए की मराद तकसीम करेंगे। वामली तौर पर मुल्क भर से मुस्तफीद होने वालों से खिताब करेंगे। मेहनत और रोजगार के वजीर डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 में शुरू होने वाली इस स्कीम के तहत 63 लाख से ज्यादा कारकुनान, जिनमें से तकरीबन 30% खवातीन हैं, उनको बाजाफ्ता अफरादी कुवत में जिम किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इस स्कीम से मुल्क भर में 15 लाख रोजगार के मौके पैदा होंगे। इस स्कीम के तहत लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी और मेरठ समेत सत के 17 जिला में प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। इस स्कीम का मकसद रोजगार की तख्लीक में तेजी लाना, रोजगार की अहलियत में इजाफा और तमाम शोबों में समाजी तहफ्फुज़ की कवरेज को बढ़ाना है।

वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योगा की जड़ें हिंदुस्तान के रूहानी और सकाफती विरसे में गहरी हैं और इसने मुल्क की सरहदों को अबूर किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मरकजी वज़ीर-ए-मुमलिकत प्रताप राव के एक मजमून का इश्तराक करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस बारे में बात की कि किस तरह कदीम नसूस से लेकर आलमी पहचान तक योगा ने सरहदों को अबूर किया है, जबकि हिंदुस्तान के रूहानी और सकाफती विरसे में गहरी जड़ें हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपने अयोध्या दौरे के दौरान अयोध्या धाम और रुदौली असेंबली हलके को करोड़ों के तरक्याती प्रोजेक्टों की सौगात दी। वज़ीर आला ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करने के बाद रुदौली असेंबली हलके में मां कामाख्या धाम नगर पंचायत को 25 करोड़ रूपये से ज्यादा के प्रोजेक्टों की सौगात दी। साथ ही वीरांगना झलकारी बाई के आलिशान मुजस्मे की नकाबकुशाई के साथ 126 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इस दौरान वज़ीर आला ने अपने खिताब में अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे के मामले को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। वज़ीर आला ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट की गुजारिश पर हुकूमत ने एसआईटी तश्कील की है और यह जांच पूरी शफाफियत से होगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास कोई दस्तावेजी सबूत है तो उसे एसआईटी

0: जड़े हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज अपने अयोध्या दौरे के दौरान अयोध्या धाम और रुदौली असेंबली हलके को करोड़ों के तरक्याती प्रोजेक्टों की सौगात दी। वजीर आला ने हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करने के बाद रुदौली असेंबली हलके में मां कामाख्या धाम नगर पंचायत को 25 करोड़ रूपये से ज्यादा के प्रोजेक्टों की सौगात दी। साथ ही वीरांगना झलकारी बाई के आलिशान मुजस्मे की नकाब कुशाई के साथ 126 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। इस दौरान वजीर आला ने अपने खिताब में अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावे के मामले को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। वजीर आला ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट की गुजारिश पर हुकूमत ने SIT तश्कील की है और यह जांच पूरी शफाफियत से होगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास कोई दस्तावेजी सबूत है तो उसे SIT को सौंपे और जांच पूरी होने तक गैर जरूरी बयानबाजी न करें। वजीर आला ने कहा,
1: राम भक्तों से मेरी विनम्र अपील होगी, प्रभु राम ने हमें मर्यादा का पाठ पढ़ाया है, मर्यादित रहने का आचरण दिया है, हम उस मर्यादा का पालन करते हुए हमने 500 वर्षों तक, हम लोगों के पूर्वजों ने 500 वर्षों तक प्रभु राम के स्थान को लेने के लिए संघर्ष किया है, 500 वर्षों तक मर्यादित रहते हुए हमने संघर्ष किया है, 15 दिन और देख लें, इंतजार कर लो, चिंता मत करो।
0: ज़रात और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने 4 रियासतों तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए कम से कम इमदादी कीमत MSP पर दालों और तेल के बीजों के बड़े पैमाने पर खरीदारी को मंजूरी दे दी है। ये खरीदारी इन रियासतों में प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीदारी को मंजूरी दी गई है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इतवार को होने वाले NEET UG के दोबारा इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत की। उन्होंने इम्तिहानी अमल में दयानतदारी, शफाफियत और कारकर्दगी के आला मेयार को बरकरार रखने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो तमाम जरूरी इंतजाम को यकीनी बनाएं और आजादाना और मुनसिफाना तरीके से दोबारा इम्तिहान के इनेकाद के लिए चौकसी इख्तियार करें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क़यादत में हिंदुस्तान ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर मबनी गुज़िश्ता 12 सालों में काबिल-ए-ज़िक्र तरक्की की है। इस मौके की मुनासिबत से ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ एक ख़ुसूसी सीरीज़ पेश कर रहा है, अवाम की फलाह बहबूद के लिए तरक्की के 12 साल। आज के शुमारे में हम शुमाल मशरक़ की तब्दीली के लिए हुकूमत के अहम इक़दाम पर रोशनी डाल रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए PM डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उत्तर प्रदेश के इंसदादे दहशतगर्दी स्क्वाड UP ATS ने बुलंदशहर जिले से 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग से है। इन पर गैंग के दहशतगर्द नेटवर्क में शामिल होकर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम है। और महकमा मौसमियात ने रियासत के मशरकी और मगरबी अजला के अलग अलग इलाकों में 24 जून तक गर्मी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे ने अगले 2-3 दिनों के दौरान रियासत के ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बतदरीज इजाफे की भी पेशगोई की है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
3: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ। शहरी महिलाओं के लिए पेश है कार्यक्रम अपराजिता।

0: कर बैठना आसान है, संघर्ष से लड़कर जीतना जीवन की असली पहचान है। मुश्किलों में भी जो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, वो जीवन जीने की असली पहचान बनाते हैं। कुछ इन्हीं पंक्तियों के साथ कार्यक्रम अपराजिता में हाजिर है आपकी दो रेडियो सखी। मैं हूँ सीमा।
1: मैं अमरलता। सखियों
0: नमस्कार। जी अमरलता, और देखो भाई, मुश्किलों से लड़कर हम लोगों तक अपनी पहचान बनाने के लिए खुद की काबिलियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्यों, क्या कहती हो?
1: जी सीमा, कभी कभी हमें ऊंचे मुकाम तक पहुंचने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
0: बिल्कुल, और हम महिलाओं का यही अरमान होता है कि जब वो मंजिल के पड़ाव पर हो तो उसे भौतिक सुख सुविधा के साथ साथ समाज में हम लोगों को सुरक्षा और सम्मान भी मिले, क्यों?
1: आज हम एक ऐसे दौर में हैं जहां स्त्री ने सारी बेड़ियों को तोड़ा है। वह पढ़ रही है, बढ़ रही है और आसमान छू रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में एक असुरक्षा का भाव है और सम्मान की कमी देखी गई है। जब तक एक स्त्री रात के अंधेरे में खुद को उतनी ही सुरक्षित महसूस नहीं करेगी जितनी वह दिन के उजाले में करती है, तब तक हमारी तरक्की और आज़ादी अधूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा अमरलता, और ये आज़ादी हम सबको मिलनी भी चाहिए। और ये देखो, हमारे मन में भी ऐसा आता है कि हम सब हमेशा सुरक्षित रहें और जैसे पुरुष चल रहे हैं वैसे नारियां भी चलें निर्भय होकर के। और वैसे देखा जाए तो सुरक्षा की दृष्टि से महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 भी है, जिससे मुसीबत पड़ने पर हम महिलाओं को सहायता भी मिलती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि किसी देश में युद्ध या संघर्ष जहाँ हो रहे होते हैं ना, तो वहाँ कमज़ोर, असहाय, ज़रूरतमंद जैसी महिला वर्ग के साथ बलात्कार, यौन दासता, जबरन वैश्यावृत्ति जैसी आग में उन्हें जलने पर मजबूर कर दिया जाता है, जो कि हम सबको बड़ा बुरा लगता है ना। फिर भी उनके चरित्र पर कलंक और दाग लगाकर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। क्या आपको लगता है ये सही है अमरलता?
1: सीमा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आज महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं।
0: बिल्कुल, और देखो आज 19 जून है, तो 19 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा ऐसी जो पीड़ित महिलाएं हैं जो सर्वाइवर से, उन्हें सम्मान देने की बात कही गई है और लोगों में ऐसी महिला वर्ग के बारे में जागरूकता फैलाने की बात कही गई है, जिससे ऐसी जो महिलाएं हैं समाज में सम्मान के साथ जी सकें, खुलकर वो अपनी दास्ता दूसरों को बता सकें और जो दोषी है उसे सही सजा दिला सके और अपने गुणों से समाज में निखरे, संवरे और आगे बढ़े।
1: जी बिल्कुल सीमा, आपने ठीक कहा। सखियों देखो, कॉरपोरेट हो, राजनीति हो, खेल हो, सेना हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां महिलाओं ने अपनी कामयाबी के झंडे न गाड़े हों। सुरक्षा और सम्मान केवल कानून बनाने से नहीं मिलेगा, इसके लिए समाज की मानसिकता में जड़ से बदलाव लाना होगा।
0: बिल्कुल, और देखो आज की जो नारी है ना, मेहंदी की जगह कामयाबी सजाती है, सवरने की जगह सफलता को अपनाती है, चार दीवारों में कैद होने की जगह आर्किटेक्ट बनकर दूसरों के घर को बनाती है, खिड़की से चांद देखने की जगह आज चांद तक पहुंचने का हुनर रखती है, किसी के नाम के द्वारा जाने जाने की चाहत छोड़कर अपना नाम वो खुद बनाती है। और समाज परिवार में ज़रूरत है ऐसी महिला वर्ग को सम्मान, प्यार और सुदृष्टि से देखने की, वो चाहे माँ हो, हमारी बहन हो, अफसर हो, छात्रा हो या हो सहयोगी, भाभी हो चाहे ननद, ऑफिस हो चाहे दफ्तर, हंसता खिलता स्टाफ और परिवार सफलता के शिखर पर पहुंचता है। और घर पर हंसती हुई भाभी, खिलखिलाती हुई ननद, सच्चे दिल से हंसता हुआ भाई, इससे प्यारा कोई रिश्ता नहीं होता।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
6: अमलता, पता है कि महिला को ना प्यार और सम्मान के साथ साथ उसे अपनी शक्ति का

0: अभी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो महिला उत्थान के लिए कौन कौन सी योजना है, इसके लिए मिशन शक्ति योजना संबल और सामर्थ्य श्री आशुतोष कुमार सिंह उपनिदेशक महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश से हैं। आइए सुनते हैं एक जानकारी।
1: मेरा नाम आशुतोष कुमार सिंह है, मैं उपनिदेशक हूं निदेशालय महिला कल्याण उत्तर प्रदेश में। महिलाओं के संरक्षण, विकास और सशक्तिकरण के लिए विभाग द्वारा बहुत सारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जिनमें एक प्रमुख है मिशन शक्ति योजना। मिशन शक्ति योजना एक अम्ब्रेला योजना है जिसके दो प्रमुख अंग हैं, एक का नाम है संबल और दूसरे का सामर्थ्य। संबल में ऐसी योजनाओं को सम्मिलित किया गया है जो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित हैं, जैसे 181 विमेन हेल्पलाइन, वन स्टॉप सेंटर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नारी अदालत। वहीं जो सामर्थ्य कंपोनेंट है उसमें ऐसी योजनाएं सम्मिलित की गई हैं जो महिला के सशक्तिकरण से संबंधित हैं, जैसे कि हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन योजना, शक्ति सदन, सखी निवास, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इत्यादि। इसमें जितने भी महिला श्रोतागण हैं वो चाहे उनकी कोई सुरक्षा संबंधी आवश्यकता हो या कोई सशक्तिकरण संबंधी आवश्यकता हो तो वो लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
0: सखियों, संगीत हमारी भावनाओं को छूकर हमारी चेतना को बढ़ाता है, जबकि योग व्यक्तिगत चेतना को ब्रह्मांड की ऊर्जा से हमें जोड़ता है। और जब दोनों का मेल हो, योग और संगीत का, तो योग की साधना तन मन की सुर की आराधना बन जाती है। आप सोच रही होंगी कैसे, तो इसके लिए चलिए सुनते हैं ये परिचर्चा जिसमें जिक्र की गई है कुछ ऐसी बातों का। तो बातचीत का विषय है योग और संगीत तन मन के मित। प्रतिभागी हैं श्रीमती अर्चना वर्मा, डॉक्टर उषा बनर्जी, ज्योति त्रिवेदी शुक्ला, और आप लोगों से बातचीत की है हमारी सखी अमरलता ने।
2: योग जहां शरीर और सांस को साधता है, वहीं सुर आत्मा को साधते हैं। जब ये दोनों मिल जाएं तो साधना पूरी होती है। योग जहां कठिन शारीरिक और मानसिक अनुशासन की मांग करता है, वहीं संगीत को सहज और रसमय माना जाता है। योग और संगीत में क्या समानताएं हैं और कैसे ये महिलाओं के जीवन में शांति और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती हैं, इस विषय पर परिचर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर उषा बनर्जी, जिन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए म्यूजिक एवं पीएचडी की है और भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय से रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपको सरस्वती सम्मान मिला हुआ है, साथ ही लोक नाट्य सम्मान भी आपको नवाजा गया है। आप अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनकारी त्रैमासिक पत्रिका कला वसुधा की 25 वर्षों से संपादन कर रही हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योति शुक्ला, जो मास्टर्स हैं म्यूजिक में और आपने संगीत में पीएचडी की है और आप योगा और संगीत दोनों क्षेत्र में अपना योगदान दे रही हैं। आपका शोध कार्य का विषय रहा संगीत साधना में यौगिक प्रक्रिया का योगदान। हमारे साथ हैं योगाचार्य अर्चना वर्मा जी, जो एक प्राणिक हीलर और काउंसलर हैं। आप 27 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं। आपने मानव चेतना और योग विज्ञान में लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है। सबसे पहले तो मैं अमरलता आप सभी का आज के इस परिचर्चा में स्वागत करती हूँ।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद।
2: देखा गया है कि एक सच्चा योगी अपनी उपस्थिति से पर्यावरण को शांत कर देता है और एक सच्चा संगीतकार अपने पहले ही सुर से महफिल में शांति बिखेर देता है। क्या ये दोनों ऊर्जाएं एक ही स्रोत से आती हैं?
3: धन्यवाद अमरलता जी, और बिल्कुल सही बात है कि ये दोनों ऊर्जाएं जो है एक ही स्रोत से आती हैं, जो हमारी अंतरात्मा है। योग अभ्यासी अभ्यास के माध्यम से अपनी चेतना को परिष्कृत कर लेता है और परिष्कृत चेतना से आभा मंडल जितना है उसका, वो शुद्ध और पवित्र हो जाता है। तो इसी तरह से वो पूरे एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाता है।
2: उषा जी, आपका इस विषय पर क्या कहना है?
5: योग साधना शरीर को नियंत्रित करती है, आत्मा को नियंत्रित करती है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करती है, और संगीत साधना आत्मा को परमात्मा से समाधि तक पहुँचाने के एक बहुत बड़ा साधन है।
2: जी ज्योति मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि संगीत और योग में क्या समानताएं हैं और ये क्या आपस में जुड़ी हुई हैं?
4: जी हाँ, देखिए योग और संगीत दोनों ही भारतीय कलाएं और पद्धतियां हैं और संगीत योग का ही प्रतिफल है, क्योंकि ये शरीर योग से ही बना है और इसी के माध्यम से संगीत रूपी वृक्ष आकार लेता है और इन्हें सही और संतुलित रूप से जगाना साधना का कार्य है। जो

0: साधक को तनाव से मुक्त करके ईश्वर से जोड़ती है। अतः योग और संगीत दोनों का ही उद्देश्य आंतरिक शांति, एकाग्रता और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है।
1: जी उषा जी, आपका इसके बारे में क्या कहना है?
2: मुझे लगता है कि संगीत नाद योग कहा गया है। संगीत ने आप में ईश्वर का स्वरूप है, इसीलिए वेदों में जो साम है उसे ईश्वर ने स्वयं कहा है, वेदा नाम साम वेदोस्मि, मैं वेदों में साम हूँ। स्वर जो है वो ईश्वर है। मुझे ऐसा लगता है कि योगिक क्रिया एक साधन है उस परमात्मा को साधने का, और संगीत रंजकता के साथ में और सरसता के साथ में परमात्मा की भक्ति योग और जो प्रेम योग है वहाँ तक पहुँचने के लिए संगीत की सहायता लेना अपने आप में बहुत अधिक आवश्यक है। उसके माध्यम से सहज हो जाता है।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने। आगे बढ़ते हुए अर्चना वर्मा जी, आप चूंकि एक प्राणिक हीलर हैं, काउंसलर हैं, योगाचार्य हैं, तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि नारी के जीवन के प्रत्येक काल में योग कैसे लाभ पहुंचाता है?
3: नारी के जीवन के प्रत्येक काल में योग उनके लिए पूर्ण रूप से सहायक रहता है। अगर हम उनके प्रथम काल को, किशोरावस्था को देखें, तो प्रारंभिक काल में बहुत तरह के बदलाव उनके अंदर आते हैं जीवन में, शारीरिक और मानसिक। उन सब को साधने के लिए या उस समय आने वाली समस्याओं से निजात दिलाने के लिए योग का बहुत अच्छा रोल है। योग अभ्यास में हम इन बच्चियों को सूर्य नमस्कार सिखाते हैं, प्राणायाम सिखाते हैं, ध्यान की छोटी छोटी विधियां सिखाते हैं, जिनसे उस समय आने वाले मन के अंदर चंचलता और जो शारीरिक परिवर्तन है उसको साधने का क्रम उनके अंदर आता है और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होती हैं। शरीर की जो ग्रोथ बढ़वार है वो अच्छे से होती है और सभी प्रकार की जो ग्रंथियों में बाधा आ रही हैं या जो कुसंस्कार हो सकते हैं वो योग के माध्यम से शुभ संस्कारित होते हुए जीवन के बेस को, एक नींव को अच्छे से मजबूत कर लेती हैं और उसी के माध्यम से उनका पूरा जीवन यापन होता है। इसी प्रकार से जब वो बड़ी हो जाती हैं, विवाह के उपरांत जो जीवन में समस्याएं आती हैं उनको भी योग से बहुत अच्छे से निवारण किया जा सकता है। उस समय जब उनको दूसरे परिवार में एडजस्ट करना होता है या अपने पति के साथ नया जीवन होता है, तो वो उस समय जो भी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक समस्याएं आती हैं उनको योग अभ्यास में बहुत अच्छे से धीरे धीरे उनका निवारण किया जा सकता है। और जब शिशु को जन्म देने की प्रक्रिया आती है उस समय योग अभ्यास के माध्यम से वो बहुत अच्छे से गर्भ में ही अपने शिशु को शुभ संस्कारित बना सकती हैं और बहुत अच्छे से सम्मान प्रसव कर सकती हैं। तो ये योग उनके जीवन के प्रत्येक काल में एक सहायक, एक मित्र की तरह उनका काम करता है और सारी समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान करता है।
1: बहुत ही अच्छा जवाब दिया आपने अर्चना जी, और सारी समस्याओं के बारे में जिक्र किया। इसी प्रश्न को मैं उषा जी के पास ले जाती हूँ कि वो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें।
2: मैं इसे संगीत में नाद योग के रूप में उसके संदर्भ में इसको बताना चाहूंगी कि संगीत विद्या उत्पन्न ही हुई है सरस्वती माँ के वीणा से, यानी कि स्त्री का स्वरूप करुणा, दया, ममता, अनुशासन और धैर्य, समर्पण, ये सभी से बनता है। स्त्री सकारात्मकता और विकासोन्मुखी विचार को आगे बढ़ाने में सहायक हो, उसके जीवन में ये सारी चीजें आएं, इसके लिए नाद योग और योग दोनों ही साधना अपने आप में सहायक होती है।
1: कितने अच्छे तरीके से आपने हमें समझाया इसके बारे में। अभी हम पूछते हैं अर्चना वर्मा मैम जी से कि मेडिटेशन का, यानी कि ध्यान का योग में क्या महत्व है?
3: ध्यान जो है एक मुख्य धारा है योग की, और ध्यान के ही माध्यम से मानव को पूर्णता प्राप्त होती है। तो प्रथम अगर हम लोग सरल बिल्कुल भाषा में ध्यान को सिखाते हैं तो सबसे पहले श्वास पे ध्यान लगाना सिखाते हैं। तो व्यक्ति आराम से श्वास लेता है और धीरे धीरे छोड़ता है, धीरे धीरे मन और ध्यान को बिल्कुल एकाग्र कर लेता है अपने श्वास पर, और धीरे धीरे चेतना उसकी परिष्कृत होते हुए उसकी जो अंतस आत्मीय चेतना है वो जागृत होने लगती है। और आत्मीय चेतना जब जागृत हो जाती है तो प्रति क्षण उसी की आवाज में, उसी की गाइडेंस में व्यक्ति अपने जीवन का यापन करता है। और यही ध्यान का मुख्य लक्ष्य होता है कि व्यक्ति की आत्मा परमात्मा के साथ पूर्णता जुड़ी रहे और उसका संपूर्ण जीवन उन्हीं के निर्देशों के साथ चलता रहे। तो ध्यान

0: वास्तव में हर कार्य को ध्यान से करने की विधि सिखाता है।
1: बहुत अच्छी बात बताई आपने। आगे बढ़ते हुए उषा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सुरों की साधना में भी ध्यान का योगदान है।
2: बिल्कुल है। जो मनोयोग है, यानी कि चित्त को एकाग्र करना, एक बिंदु पर केंद्रित करना, यही अपने आप में ध्यान है। हम संगीत में नाद योग के लिए, यानी कि स्वर साधना के लिए, अपने कलेवर यानी कंठ को, या वादन शैली को, या नृत्य में अपने अंगों की मुद्राओं को, या ताल के माध्यम से अभिव्यक्ति को हम साधते हैं, वो बिना ध्यान के नहीं होता है। ऐसे ही संगीत में, गायन में खास तौर से राग ध्यानों की परंपरा है। ये 7वीं-8वीं शताब्दी में मतंग ने बृहदेशी में तंत्र को केंद्र में रखते हुए उन्होंने ध्यान कहे हैं, जिसमें स्वरों के और रागों के कुल देवता, वर्ण आदि बताए हैं। तो उन पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए रागों के स्वरूप को अभिव्यक्त करना, उन पर अपने को ध्यान को केंद्रित करना ही राग ध्यान प्रक्रिया है, जिसमें मानसिक है पहले, फिर है उपांशु। उपांशु में हम क्या करते हैं कि अपने मन में रागों के स्वरूप का चिंतन करते हैं, और उसके बाद में जब हम नाद रूप में, यानी कि उसे नाद के माध्यम से जब हम उसे गाते हैं, स्वरों के माध्यम से जब उसे गाते हैं, तो वो राग ध्यान जो है हमारा अभिव्यक्त होता है, वो सामने आता है। ये राग ध्यान प्रक्रिया बहुत प्राचीन है, इसी पर राग रागनी जो वर्गीकरण है वो आधारित है।
1: बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमारी बहनों को इसके बारे में बताया। आगे बढ़ते हुए मैं ज्योति मैम से ये पूछना चाहूंगी कि एक संगीतकार के लिए ब्रेथ कंट्रोल कितना जरूरी है।
3: जी हाँ, एक संगीतकार के लिए ब्रेथ कंट्रोल बहुत जरूरी है, क्योंकि संगीत और योग दोनों कलाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। जुड़ी क्या है, ये योग और संगीत दोनों हमारे शरीर से उपजे हुए हैं, और जब एक संगीत साधक साधना करता है, अपने रियाज करता है, तो वो एक तरह से प्राणायाम और योग का ही अनुसरण कर रहा होता है। जैसे कि हम संगीत में सा

0: सा, तो ये जो हमारे आरोह अवरोह हैं, ये एक तरह से प्राणायाम का ही इसमें प्रक्रिया चल रही है, और इन्हीं स्वरों को साध के संगीत अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है।
1: बिल्कुल ठीक कहा आपने। उषा जी, आप भी कुछ इस पर बोलना
2: हाँ,
1: चाहेंगे?
2: मैं ज्योति जी की बात को मैं और आगे बढ़ाना चाहती हूँ। स्वरों को गाना प्राणायाम है, परंतु प्रत्येक स्वर पे अपनी सांस को कंट्रोल करना, कितनी देर तक हम एक एक स्वर का अनुरणन हम कितने सेकंड तक करते हैं, उसको विस्तार देना अपने आप में ही एक प्राणायाम है। इसी प्राणायाम की साधना को संगीत में खरज साधना कहते हैं, और ख्याल गायकी के घरानों में भी ये खरज साधना की जाती है। और खासतौर से 3:30 से 4 बजे तक हमारी जो कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, उस समय ये खरज साधना की जाती है। और उसमें क्या होता है कि हम मंद्र सप्तक का रियाज करते हैं और मध्य सप्तक के सिर्फ गंधार तक जाते हैं, क्योंकि गंधार जो है वो अनुरणन करता है हमारे शरीर के संपूर्ण स्वर के अनुनाद को। गाम धारयति इति गंधार, यानी कि पूरे शरीर की सुगंध को धारण करता है, इसलिए वो गंधार है। और कहते हैं कि अति मंद्र तक भी जाते हैं और मध्य सप्तक में सिर्फ गंधार तक जाते हैं, तो हमारी तार सप्तक तक आवाज स्वतः अपने आप चली जाती है। एक कहावत है, जे तो नीचो जाए चल ते तो ऊंचो जाए। ये साधना मंद्र साधना है, ये साधना है हमारा प्राणायाम पर आधारित है।
1: अर्चना वर्मा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब महिलाओं में मेनोपॉज यानी रजो निवृत्ति का काल आता है, तो वो बहुत सारी समस्याएं उनके सामने आती हैं, और आम महिलाएं इस चीज़ को नहीं समझ पाती। जितना आजकल इसके बारे में चर्चा होती है, उतनी शायद पहले कभी नहीं हुई। तो इस पर आप ये बताएं कि महिलाएं योग के द्वारा कैसे इस फेस को थोड़ा सा सरल बना सकती हैं।
3: बहुत अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सभी महिलाओं के जीवन के लिए। ये जो समय चलता है वो लगभग 10 वर्षों का या उससे भी अधिक हो जाता है कभी कभी। 40+ के बाद इस तरह की समस्याएं आने लगती हैं, और धीरे धीरे ये 50+ तक, जब मेनोपॉज पूरी तरह से होता है, तब तक ये समस्याएं घटित होती रहती हैं। तो इन समस्याओं के अंदर हम देखें तो एक मुख्य रूप से जो आता है, महिलाओं को अवसाद आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, उनके अंदर मेमोरी लॉस होने लगता है, शरीर उनका

0: ठीक होने लगता है, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, इसलिए अंदर की जितनी भी शारीरिक क्रियाएं हैं वो धीमी गति करने लगती हैं। तो कभी कभी ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है, पैरों में कमजोरी, दृष्टि मतलब नेत्र की दृष्टि कमजोर हो जाती है और मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर पाता। इस समय महिलाओं को बहुत चिड़चिड़ाहट होने लगती है, गुस्सा आने लगती है, वो समझ ही नहीं पाती हैं। एक तरह से अचानक गर्मी लगने लगी, अगर हॉट फ्लैशेस जिसे कहते हैं, इस तरह की समस्या आने लगती हैं, शरीर भी ढल रहा होता है, आत्मविश्वास भी कम होने लगता है। इसमें योग बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। योग अभ्यास के माध्यम से हम लोग महिलाओं को सरल संधि संचालन कराते हैं, जिससे ज्वाइंट्स की जो समस्याएं हैं वो ठीक हो जाती हैं, और बिल्कुल सिंपल ध्यान की पद्धति जैसे सो हमें वो कराते हैं, उससे धीरे धीरे विश्वास की जागृति होती है। प्राणायाम कराते हैं हम लोग, शीतली शीतकारी, जिससे हॉट फ्लैशेस और ये गर्मी की समस्याएं उनकी ठीक होने लगती हैं। उसके अलावा हम उनको योग निद्रा कराते हैं, जो उनके अवचेतन में आने वाली इस तरह की समस्याओं को ठीक करती हैं। योग निद्रा जो 40-45 मिनट की होती है, वो पूरे 8 घंटे की नींद को पूरी करती है। तो जब नींद की पूर्ति होने लगती है और ध्यान प्राणायाम से मस्तिष्क में पूरी ऊर्जा उन्हें प्राप्त होने लगती है, तो जैसे ओवरीज का फंक्शन धीरे धीरे कम हो रहा होता है, तो हमारे पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड एक जो है आयाम को ले लेते हैं, यानी कि चेतना जो एक नए आयाम पे आ जाती है, और ये विस्टम वाली स्थिति होती है, आत्मज्ञान की स्थिति होती है। तो महिलाओं के अंदर आत्मज्ञान अच्छे से जागृत होने लगता है योग के अभ्यास से, और वो एक तरह से समझिए दूसरे बसंत के रूप में अपने इस जीवन का यापन करते हुए आत्मज्ञान के साथ इस अवस्था को अच्छे से व्यतीत करती हैं योग के माध्यम से।
1: उषा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अक्सर कलाकार कहते हैं कि जब वे सबसे बेहतरीन गा रहे होते हैं तो उन्हें समय का बिल्कुल होश ही नहीं रहता, ना स्थान का होश रहता है, इसको आप कैसे विस्तृत करेंगे?
2: उस समय गायक समाधि की स्थिति में होता है, अपने सार्वभौम भाषा जो गायन है या वादन है उसके माध्यम से उस परमानंद ईश्वर का साक्षात्कार करता है, तो देश और काल सब कुछ भूल जाता है। जब वो भूल जाता है तो उसकी अभिव्यक्ति सीधा श्रोता या दर्शकों पर पड़ती है, साधारणीकरण होता है इन मनोभावों का, इन सार्वभौम मनोभावों का, और उससे क्या होता है, रसानुभूति होती है, रसास्वादन होता है, और रसास्वादन से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, और उस स्थिति में श्रोता और गायक दोनों एकाकार हो जाते हैं, यानी आत्मा और परमात्मा दोनों एकाकार हो जाते हैं।
1: अर्चना जी, अक्सर ये देखा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त या अर्ली मॉर्निंग योग साधना के लिए चुना जाता है, तो इसकी कोई खास वजह है?
0: बिल्कुल सही बात है, सुबह प्रातःकालीन जो संधि काल का समय होता है, जब सूर्य उदय हो रहे होते हैं, वो विशेष समय होता है योग साधना का। उस समय जो प्राण ऊर्जा वातावरण पे होती है, उसको व्यक्ति सांसों के माध्यम से अपने अंदर धारण करता है, और वो जो प्राण होते हैं सर्वोत्तम, मतलब सूर्य उदय के एक घंटा पहले का जो समय होता है, वो एक विशेष परिवर्तन ले आता है हमारे सूक्ष्म शरीर में, हमारे स्थूल शरीर में, हमारे कारण शरीर में। तो हमारे जो सूक्ष्म शरीर के जो हमारे चक्र हैं, हमारी नाड़ियां हैं, वो इस विशेष प्राण के माध्यम से शुद्ध और परिष्कृत हो जाती हैं, और धीरे धीरे जो चेतना है मूलाधार से ऊपर की ओर बढ़ते हुए सहसार चक्र में आ जाती है, और योग जो है वो सिद्ध होने लगता है। तो इसीलिए प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो सर्वोत्तम माना जाता है योग साधना के लिए।
1: उषा जी, रियाज के लिए भी लोग ब्रह्म मुहूर्त को चुनते हैं, तो इसके पीछे कोई खास वजह?
2: वजह ये है, हम खर साधना तो करते ही हैं, और उसके साथ में हम चिल्ला भी करते हैं संगीत में सुबह प्रातः काल, वही समय होना चाहिए और उतनी देर का होना चाहिए। 40 दिन का चिल्ला होता है, जब वो करते हैं तो हमारी आवाज और अधिक मजबूत होती है, और अधिक उसमें नवनमोन्मेष होता है।
1: बहनों, जैसा कि आपने सुना कि हमारे जो भी स्पेशलिस्ट आए हुए हैं यहाँ पर, उन्होंने योग और संगीत के मिलन को बहुत अच्छी तरीके से हमारे सामने रखा। अभी चलते चलते हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के माध्यम से हमारी बहनों को क्या संदेश देना चाहेंगे। सबसे पहले अर्चना वर्मा जी, आपसे, जो योगाचार्य हैं,
0: आप सभी के लिए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि इस बार के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योग फॉर हेल्दी एजिंग, यानी कि योग को हम हर एज में साध सकते हैं।

0: हैं उसका अभ्यास कर सकते हैं और सभी एज में पूर्णता से जीवन को जी सकते हैं। तो हम सबको ये ज़रूर देखना है कि सिर्फ हम एक ही दिन योग दिवस के दिन योग अभ्यास नहीं करें, बल्कि 365 दिन जो हमारे साल के हैं उनको योगमय बनाएं। जीवन में हम लोग 20 मिनट का या 25 मिनट का एक प्रोटोकॉल बना लें और जिस पे हम रोज़ योग अभ्यास करें और अपने शरीर को, मन को और भावनाओं को बिल्कुल स्वस्थ बना लें। जैसा कि हमारा WHO भी कहता है कि जो पूर्ण स्वास्थ्य है वो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य है। इसी तरह से अगर हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य में भी आगे बढ़ें तो योग हमारे अंदर पूर्णता को प्रदान करता है और पूर्ण रूप से हमें स्वस्थ बनाता है।
1: डॉक्टर ज्योति शुक्ला जी, चूंकि आप योग और संगीत दोनों से जुड़ी हुई हैं, तो कोई संदेश हमारी बहनों के लिए देना चाहेंगी?
2: जी हाँ, सभी लोगों को योग और संगीत कला के माध्यम से अपने जीवन को सुखी बनाना चाहिए। योग करने से उनका उत्तरोत्तर विकास होगा और पूरा दिन संवर जाएगा, जिसको कहते हैं। प्रतिदिन योग करें और संगीत सुनना और योग करना शरीर को स्वस्थ रखने की सीढ़ी का कार्य करता है।
1: डॉक्टर उषा बैनर्जी जी, आप कोई संदेश हमारी महिलाओं को चलते चलते देना चाहेंगी?
3: हाँ, मैं नाद साधना के द्वारा या नाद योग के द्वारा महिलाओं को अपने मन और तन दोनों को किस तरह से साधा जाए उस पर मैं बात करना चाहूंगी। नाद योग, इसमें योग जुड़ा हुआ है। नाद तो संगीत है और योग शरीर और मन की साधना है, जिसके माध्यम से शरीर तो मजबूत होता ही है। और आप बचपन से बच्चों को लोरी सुनाने से लेकर के हर संस्कार में गायन करने के माध्यम से आप संगीत साधना एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप में कर ही रही हैं। परंतु संगीत को विशेष रूप से अपने जीवन में स्थान दें, उसके स्वर साधना की ओंकार जैसे है उसको स्वरों में किस तरह से गाएं, उसको अगर साधें और उसके माध्यम से अगर आप योग करेंगे, नहीं तो आप सुन तो सकते हैं कम से कम, तो सुनने के माध्यम से आप अपने मनोवृत्तियों को, चित्तवृत्तियों को, अपने मन के अवसाद को, खास तौर से अगर किसी भी क्षेत्र में आपको किसी भी तरह का अवसाद है तो उसको भी आप दूर कर सकती हैं।
1: बहनों, हमारे साथ आज की परिचर्चा में जुड़ी थी डॉक्टर उषा बैनर्जी, डॉक्टर ज्योति शुक्ला और योगाचार्य अर्चना वर्मा जी। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में आकर हमारी बहनों को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
4: जी हाँ सखियों, योग हम रोज करें सभी आयु के वर्ग के लिए फायदेमंद है, ये बताया हमारी भाई जो हमारी आई थी उषा जी, इन लोगों ने बताया। और सखियों, योग संगीत की मधुरता धीमी धीमी तान के बीच जब हो तो मन शीतल हो ही जाता है और तन स्वस्थ होता है। लेकिन यही योग सुबह पेड़ पौधों के बीच किया जाए तो और अच्छा होता है। अक्सर हमारे मन में होता है कौन कौन सा पौधा घर में हो जिससे तापमान नियंत्रित हो और हमारे लिए फायदेमंद भी हो। तो सखियों, स्पाइडर प्लांट को आप अपने बेडरूम या फिर लिविंग रूम में रख सकती हैं। इसकी देखभाल भी काफ़ी आसान है। ये हवा को शुद्ध करने में और विषाक्त पदार्थों को हटाने के लिए जाना जाता है।
5: और सीमा, गर्मी के दिनों में तो पुदीना का पौधा भी लगाया जा सकता है, क्योंकि इसमें मेंथॉल की खुशबू आती है और ये आपके पूरे घर को फ्रेश रखता है।
4: हाँ भाई, अब देखो भाई अमलता, समय पे समय की बात होनी चाहिए। तो अगले किसी कार्यक्रम में हमारी सखियों से फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति लेते हैं अपनी सखियों से, दीजिए इजाजत। सीमा,
5: मैं अमलता, नमस्कार।
4: नमस्कार।

अभी कार्यक्रम अपराजिता का प्रसारण हो रहा था। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है पत्र और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम जवानों के लिए।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी फौजी भाइयों को जय हिंद। कार्यक्रम में हमें जो पहला गीत सुनवाने के लिए मेल आया है वो है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से। श्रोता हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप। तो हम आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाएंगे क्योंकि आपने सुनना चाहा है फकीरा फिल्म का गीत। बोल है तोता मैना की कहानी तो पुरानी, आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की हैं। इसी गीत के लिए फरमाइश आई है विनेश कुमार, रागिनी श्रीवास्तव और मुस्कान का, बरेली कैंट चनहटी बरेली से। इसी गीत को सुनना चाहते हैं पटेल नगर मालोट से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप आरजू और गुड्डू। और एक मेल हमारे पास है जिसमें उन्होंने लिखा है कि आप हमारा नाम इस कार्यक्रम में शामिल करें, गीत चाहे जो भी सुनवाएं। तो ये मेल है कलानौर से और श्रोता हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। तो आइए सुन लेते हैं वो गीत जिसे पसंद किया है मास्टर अशोक वर्मा ने। जिला खरगोन से आपका मेल आया है, आपने सुनना चाहा है फकीरा फिल्म का गीत। तो आइए सुन लेते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से कार्यक्रम चल रहा है जवानों के लिए। हमारे ढेर सारे श्रोताओं के मेल हम तक पहुंच रहे हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने सभी श्रोताओं के नाम इस कार्यक्रम में शामिल करने का प्रयास करें। अगला जो मेल है वो है ग्राम नागर कोहरा, ज़िला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। भेजा है बबलू साहू, जमुना देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू ने। और एक मेल हमारे पास आया है सिमरी पुरुषोत्तमपुर सुल्तानपुर से। भेजने वाले श्रोता हैं राजेश कुमार मिश्र, राकेश कुमार, अनुराग, अंशुल और आस्था मिश्र। साथ में है अंजलि और केशरी मिश्र। तो आप सभी ने हमें मेल किया और ये लिखा है कि आप हमारा नाम इस कार्यक्रम में शामिल करें। और अब हमारे पास जो मेल है उनकी पसंद का गीत हम आप तक पहुंचाएंगे और वो मेल हमें भेजा है संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे ने, शाहजी नगर, देंगलूर, ज़िला नांदेड़, महाराष्ट्र से। आपने सुनना चाहा है हम पांच फिल्म का गीत। बोल है काजानू मैं सजनिया, आवाज़ें हैं अमित कुमार और लता मंगेशकर की। तो आइए सुन लेते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: का जानू मैं सजनिया, का जानू, का जानू मैं सजनिया, चमकेगी कब चंदनिया,

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जवानों के लिए। आपके ढेर सारे मेल हमारे पास तक पहुंच रहे हैं, लेकिन हम आप सभी की पसंद के गीत आप तक नहीं पहुंचा सकते क्योंकि समय का अभाव रहता है। लेकिन हमारा पूरा प्रयास होगा कि जितना हो सके हम अपने श्रोताओं के मेल इस कार्यक्रम में शामिल करें। तो एक मेल आया है कार्यक्रम जवानों के लिए, इन्होंने भेजा है रायबरेली पहाड़ीपुर से, और श्रोता हैं रामराज, राजू, भानु, रामशंकर, पत्रकार भाई वाले, रक्षा मौर्य, राम सागर शाहू, रसीउलपुर वाले। आप सभी ने सुनना चाहा है एक गीत जो हम सुनवाएंगे। उससे पहले एक मेल हम और शामिल करते हैं। खुर्जा उत्तर प्रदेश से मेल भेजा है तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। एक मेल हमारे पास और आया है पीलीभीत से विमल वर्मा, नीतू वर्मा और प्राची वर्मा का। तो आप सब ने हमें इस कार्यक्रम में मेल किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक मेल और है जसवाड़ी जिला खंडवा से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे का। आप सभी ने सुनना चाहा है प्रेम रोग फिल्म का गीत, बोल है मोहब्बत है क्या चीज़ हमको बताओ। तो आइए सुन लेते हैं आप सभी की पसंद का ये गीत।

अगला मेल हमारे पास है ग्राम ममना जिला हमीरपुर से। भेजने वाले श्रोता हैं रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। आप लिखते हैं कि आप हमें कोई भी गीत सुनवा दें। और मेल आया है नेहा वर्मा का, साथ में है अर्पिता, हर्षिता, अंजलि, सुधाकर, कोमल, सियाराम का। और आपने मेल किया है गौरपुर बमुना खेड़ा ज़िला हरदोई से। तो भाई आपका नाम भी हमने अपने कार्यक्रम में शामिल कर लिया। और मेल है विजय लक्ष्मी कुशवाहा का सांडी ज़िला हरदोई से। ये लिखती हैं कि नमस्कार मैडम जी, आप हमारा नाम इस कार्यक्रम में शामिल करें। तो देखिए हमारा पूरा प्रयास कि हम आप सभी के नाम इस कार्यक्रम में शामिल करें। और एक मेल है विजय पाल यादव जी का, साथ में हैं शुभम यादव, शिखा यादव, रिचा यादव, गुड़िया सुरभि, राजेश कुमार और विजय पांडे जी। आपने मेल किया है ग्राम पोस्ट ललहुआ ज़िला खीरी से। ये लिखते हैं किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं।

इसलिए सपनों को सच करना है तो खुद पर भरोसा करना सीखिए। बिल्कुल सही बात कही आपने विजयपाल जी। और अब एक मेल हम शामिल कर रहे हैं, दिग्दर्शन और कविता गौड़ का आपने मेल किया है मेरठ से। आप सुनना चाहते हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म का गीत, तो जल्दी से हम आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: जवानों के लिए। अभी आप सुन रहे थे पत्र और ईमेल पर आधारित ये कार्यक्रम। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की सफल यात्रा संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की। और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2000

0: 400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गांव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 40,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस

0: समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
1: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। STPI पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने STPI को Tier 2, Tier 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहां पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी STPI जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, AI के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली NEET UG की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक NEET UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा

0: प्रस्तावित मेगाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
1: Our position on Indus Water Treaty is well known.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है, वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती, जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता, जिस पर कोई जवाबदेही न हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूता
0: रहा। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। आज दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप पर फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित कार्यक्रम। 2:30 हुए हैं। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं डॉक्टर केशव कुमार से डॉक्टर सुशील कुमार राय की बातचीत। विषय है पशुओं में चारा विषाक्तता, कारण और निवारण। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
4: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेती के साथ साथ जहाँ पशुपालन आप कर रहे हैं वहाँ पशुओं में कुछ समस्याएं आती हैं, जैसे इस मौसम में चारा विषाक्तता की समस्या आती है। इसके कारण क्या हैं और इसका निवारण कैसे हो, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं पशुपालन निदेशालय उत्तर प्रदेश से संयुक्त निदेशक डॉक्टर केशव कुमार साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये पशुओं में चारा विषाक्तता है क्या?
5: सभी किसान भाइयों बहनों को मेरा सादर नमस्कार। अमूमन हमारी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से पशुओं में जब चारा विषाक्तता का प्रभाव दिखने लगता है तब हम उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। तो चारा विषाक्तता विष शब्द से बना हुआ है। जब किसी चीज़ को खा के जहर खाने जैसा असर दिख जाए तो वो चारा विषाक्तता के अंतर्गत आता है।
4: जैसे जहरीले पौधे हैं?
5: जी हाँ, जैसे जहरीले पौधे हैं तो अभी जो अपने मैदानी क्षेत्र में देखा जाए तो लैंटाना एक प्लांट होता है। लैंटाना का मतलब उसमें कटीली झाड़ी होती है और उसमें छोटे छोटे फल होते हैं। अमूमन जब गर्मी ज़्यादा होती है, हरे चारे का अभाव होता है, तो पशु उसको जाके खा लेते हैं और ज़्यादा खा लेते हैं तो एक तरह से उसकी पॉइजनिंग शुरू हो जाती है।
4: और कई बार ज्वार जो गर्मी की है उसमें भी?
5: जी हाँ, जब चारे का ठीक से पानी नहीं मिलता है चारे को और चारा पीला पड़ने लगता है तो उस अवस्था में उसमें कुछ ऐसे रासायनिक तत्व हो जाते हैं जो खाने पर अपने जहर का प्रभाव दिखाते हैं और पशुओं में अनेक तरह की समस्याएं दिखने लगती हैं।
4: तो वो कौन कौन सी समस्याएं दिखेंगी डॉक्टर साहब चारा विषाक्तता के चलते?
5: जी, चारा विषाक्तता होने में उनको कभी कभी उल्टी की समस्या दिखती है, बहुत दस्त आने लगते हैं और

0: जानवर को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत मुश्किल से सांस ले पाता है। इस तरह से तंत्रिका संबंधी रोग, तंत्रिका का मतलब हो गया हाथ पैर चलाना, हाथ पैर पटकना, सर पटकना और उठ बैठ करना, ये कई सारी समस्याएं, पेट दर्द होगा तो जानवर कभी कभी गिर भी जाते हैं, ये जो लक्षण हैं वो उनमें दिखने लगते हैं।
1: तो डॉक्टर साहब, ये जो चारा विषाक्तता है,
0: जी,
1: इसके मुख्य कारण क्या हैं?
0: चारा विषाक्तता के जो मुख्य कारण है वो उसको हम तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है कि चारा जिसमें विष है, ऐसा चारा जो जिसके बारे में अगर हमारे किसान भाई बहन जागरूक रहेंगे, जैसे लेंटाना की बात हुई थी, तो उस चारे को पशुओं को किसी भी तरह से ना खाने दिया जाए। दूसरा है जब इसमें हरे चारे में बहुत सारा खाद डाल दिया जाता है, खाद
1: या
0: डाल,
1: कृषि रक्षा रसायन भी?
0: हाँ, कृषि रक्षा रसायन, ये दोनों जो हैं बहुत ही नुकसानदायक होते हैं, डालने के बाद पौधे से चिपके रहते हैं और तुरंत अगर उसको काट के खिलाया जाए तो इसका प्रभाव जो है पशुओं में विष के रूप में दिखने लगता है।
1: डॉक्टर साहब, क्या खराब गुणवत्ता का अगर चारा भी खिलाया जाए तो इसके चलते भी
0: हाँ
1: विषाक्तता हो सकती है?
0: जी हाँ, इसके चलते विषाक्तता होती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। मुख्य रूप से जब हम लोग देखे हैं फफूंद, फफूंद जब पौधे में हो जाता है तो दिखता तो नहीं है, खासकर जो पराली लोग अपने समय में जब धान की कटाई हो जाती है
1: जी
0: तो उसके जो अवशेष हैं वो कुछ उसमें नमी रह जाती है, और उस नमी वाले पौधे को चूंकि सस्ता मिल जाता है किसान भाइयों बहनों को, तो वो लेके उसको स्टोर कर लेते हैं, बांध के रख देते हैं। बांध के रखने पर उनका जो अंदर का हिस्सा है उसमें कुछ नमी, कुछ गर्मी की वजह से फफूंद उत्पन्न होने लगते हैं, और वो जो फफूंद है वो उनको तुरंत तो नहीं पता चलता है, लेकिन जब खिलाया जाता है लंबे समय तक, महीने 2 महीने, तो उनका जो लीवर है वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है, और उसके बाद फिर वो उपचार की करने योग्य नहीं रह जाता है पशु, और बहुत ही समस्या आने लगती है। तो फफूंद युक्त चारा जो हमारे थोड़ी सी लापरवाही की वजह से हो सकता है, जिसको हम चारा को संरक्षित करने का विधि अगर ठीक से रखेंगे तब इसमें दिक्कत नहीं आती है।
1: डॉक्टर साहब, कभी कभी साइनाइड विषाक्तता भी हो जाती
0: जी
1: है?
0: हाँ, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हरे चारे में पानी की कमी हो जाती है किसी कारण से और उसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और कुछ मुड़े भी होते हैं, अब चारा के, हरे चारे के अभाव में या तो पशुओं को चारागाह में छोड़ दिया जाता है या फिर वो काट के खिलाया जाता है, तो ये साइनाइड पॉइजनिंग तो बहुत ही खतरनाक होती है, और इसमें जब एक बार असर दिखने लगता है उसका तो लगता है कि पशु तो खत्म हो गया, बचा नहीं है, और एक साथ एक नहीं जो पूरे झुंड के झुंड पशु वो बीमार पड़ते हैं और कई सारे लक्षण दिखने लगते हैं उनमें। मुख्य रूप से उसमें वो जैसे बताया गया था तंत्रिका तंत्र के लक्षण हैं, और तेज बुखार होना शुरू हो जाता है, और इसमें किसान भाई बहन समझ नहीं पाते हैं कि इसमें हुआ क्या आखिर, कोई किसी जीव ने काटा होगा, किसी सरीसृप वर्ग के जीव ने काटा होगा, तो एक साथ सबको तो नहीं काटा होगा, तो लास्ट में बात आती है कि चारा में कुछ कमी रह गई है और वो उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं इसके इलाज के लिए।
1: तो डॉक्टर साहब, इसका उपचार है क्या?
0: जी, साइनाइड पॉइजनिंग में जो निकट के पशु चिकित्सक होते हैं वो आके कुछ दवाएं उसके शरीर में इंजेक्शन के द्वारा लगाते हैं, कुछ दवाएं पिलाई जाती हैं, अगर पिलाने की अवस्था में पशु है तो उसको खासकर सोडियम थायोसल्फेट का 15% का एक उसको घोल वो पिला दिया जाता है, तो इससे उसका जो प्रभाव है विष का वो
1: यानी
0: घटने लगता
1: पंद्रह
0: है।
1: ग्राम
0: 15 ग्राम, जी हाँ, 15 ग्राम उसको पानी में घोल के पिला दिया जाता है, और इसी दवा को डिस्टिल वाटर में घोल के उसको उसके नस में चढ़ाया जाता है, थोड़ा ड्रिप लगा के धीरे धीरे, तो पशु के अंदर जो उसके विष के लक्षण हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, और ये एंटीडोट का काम करता है, उस विष को मार देता है, विष मारक के रूप में काम करता है, और थोड़ी देर में ही पशु को उपचार करते ही वो ठीक होने लगता है।
1: डॉक्टर साहब, कभी कभी नाइट्रेट विषाक्तता भी हो जाती है, या कभी यूरिया खा लिया जानवर?
0: कभी कभी क्या होता है जब पशु बंधे रहते हैं घर पे और उनको कहा जाता है कि उसको छोड़ा जाए, तो वो या तो भूख की वजह से या फिर कुछ नया चारा खाने की वजह से कभी कभी यूरिया के बोरे से वो यूरिया ही खा लेते हैं, और यूरिया अपने आप में बहुत ही विषाक्त हो जाता है, हालांकि यूरिया का प्रयोग उसके प्रोटीन और नाइट्रोजन परसेंट बढ़ाने के लिए हम लोग करते हैं चारे में,
1: जी
0: लेकिन वो 2% का घोल ही इस्तेमाल करते हैं और बड़े वॉल्यूम में, बड़े उसके वजन में चारे में उसको मिला कर रखा जाता है तब किया जाता है, लेकिन जब कभी किसान भाई बहन इसको अपने फसल पे छिड़काव करते हैं तो उसमें, और कभी कभी सीधे सीधे यूरिया खा लेने से वो अचानक में उसके पेट में बहुत ज़्यादा अफारा हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाता है।

कोई भी जानकारी अगर हो तो इस मोबाइल नंबर पर भी दी जा सकती है। नंबर है 7800707954। ग्राम नगरा थाना मोहम्मदी जिला खीरी से रामवीर ने सूचित किया है कि कुमारी पारुल 27 अप्रैल 2026 से कहीं लापता हैं। इनकी उम्र लगभग 19 वर्ष, कद 4 फीट 8 इंच, रंग गेहुआ और चेहरा गोल है। इनकी नाक के ऊपर कटे का निशान बना है। गुमशुदगी के वक्त इन्होंने नीले रंग की जीन्स और पीले रंग की कुर्ती पहना था। पारुल के बारे में कोई भी जानकारी होने पर प्रभारी निरीक्षक थाना मोहम्मदी जिला खीरी को सूचित कर सकते हैं। कोई भी जानकारी अगर हो तो इस मोबाइल नंबर पर भी दे सकते हैं। नंबर है 9454366561। कोतवाली सदर लखीमपुर खीरी से सूचना प्राप्त हुई है कि अतुल कुमार 17 नवंबर 2025 से कहीं लापता हैं। इनकी उम्र 48 वर्ष, कद 5 फीट 6 इंच और रंग गेहुआ है। ये मानसिक रूप से कमज़ोर हैं। अतुल के बारे में कोई भी जानकारी होने पर कोतवाली सदर लखीमपुर खीरी को सूचित कर सकते हैं। कोई भी सूचना इस मोबाइल नंबर पर भी दे सकते हैं। नंबर है 9839925074। एक नंबर और नोट कर लें, 6394291172। इन सभी खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में कोई भी सूचना आप प्रभारी पुलिस अधीक्षक राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो महानगर लखनऊ को भी दे सकते हैं। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुई।

घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाश फांगल के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम लोक माधुरी में हमारी आज की कलाकार हैं प्रीति लाल। आइए सुनते हैं इन्हीं के गाए कुछ औधी लोकगीत। आरंभ करते हैं सोहर से।

लोक माधुरी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे प्रीति लाल के गाए अवधि लोकगीत। संगत कलाकार थे ढोलक पर दिलीप त्रिवेदी, हारमोनियम पर संतोष तिवारी, बांसुरी बजाई दिगंत सैकिया ने और साइड रिदम पर शोभनाथ चौरसिया। इसके साथ ही कार्यक्रम लोक माधुरी अब समाप्त हुआ।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब समाप्त होती है। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजने को है, आरंभ हो रही है हमारी आज की सायंकालीन सभा। सभा के आरंभ में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है। फ्रांस यात्रा के दौरान उन्होंने एविया में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान

0: सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया यात्रा के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि युवाओं को असंख्य अवसर प्रदान करना विकसित भारत की मूल परिकल्पना है। युवा कार्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा लिखित एक लेख को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवंशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में ना लें, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना है। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। उन्होंने कहा कि ये प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में देश का रक्षा उत्पादन 46,000 करोड़ रुपए का था। पिछले वित्त वर्ष में ये बढ़कर 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। श्री सिंह आज नागपुर के अंबाझरी स्थित यंत्र इंडिया लिमिटेड के आयुध निर्माणी परिसर में 10,000 टन क्षमता वाले आधुनिक एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखने के बाद एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज विधानसभा में राज्य का संशोधित बजट 2026-27 पेश किया। अपने बजट भाषण में उन्होंने समावेशी विकास तथा सतत अवसंरचना के नए केरल का संकल्प लिया। श्री सतीशन ने संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा सरकार के पहले बजट में स्वास्थ्य सेवा और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पर बल दिया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। अस्मिता चालिहा मकाओ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने आज क्वार्टर फाइनल में कोरिया की किम मिन सिन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। पहले सुनिए आज की सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर बाद शाम 5:10 से सुनिएगा रोजगार मेला 2026 का सजीव प्रसारण। रात्रि 11:10 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला, विषय होगा पर्यावरण। कार्यक्रम में उपस्थित

रहेंगे भूपेंद्र यादव, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। शाम 6:30 पर कार्यक्रम लोकायतन में आप सुनेंगे डॉक्टर सौरभ राय की वार्ता, परंपरा और प्रौद्योगिकी से बदलते गांव। कृषि समाचार पर आधारित किसान डायरी आप सुनेंगे नवित शिको से। कार्यक्रम खेती किसानी में आज शाम 6:50 पर। संपादन होगा डॉक्टर सुशील कुमार राय का। अंग्रेजी कार्यक्रम के अंतर्गत शाम 7:31 पर सुनिएगा एन इंटरव्यू विद कम्युनिकेशन एक्सपर्ट एंड मीडिया कंसल्टेंट। इस कार्यक्रम में प्रियंका दीक्षित से बातचीत करेंगी डॉक्टर शिबा राकेश। रात्रि 8:00 हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसारित होगी ललित पोखरिया से सुरेंद्र राजेश्वरी की भेंटवार्ता, कला संस्कृति और चेतना का संगम रंगमंच। शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत रात्रि 10:30 पर सुनिएगा राजकुमार झा का पखावज वादन। साबरी ब्रदर्स की गाई कव्वाली आप सुनेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज रात्रि 8:10 पर। पत्र व ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद श्रोता सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। ये थी जानकारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की, और अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। कल सुबह 10:10 पर आप सुनेंगे न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण। दिन में 3:55 पर सुनिएगा हुगली में तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त का सजीव प्रसारण समाप्ति तक। शाम 5:10 पर सुनिएगा प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। राष्ट्रीय पत्रिका कार्यक्रम चित्र भारती आप सुनेंगे रात्रि 9:30 पर। रात्रि 10:00 सुनिएगा संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। रात्रि 11:10 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला, विषय होगा संस्कृति। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। कल सुबह 6:40 पर सुनिएगा माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग डॉक्टर दया शंकर मिश्र दयालु का योग दिवस पर विशेष संदेश। और रात्रि 8:00 राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु से डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी की बातचीत। जिले की हलचल आप सुनते हैं सुबह 9:15 पर। सुबह 9:30 पर उर्दू प्रोग्राम के तहत समात फरमाइएगा सेहतनामा। मेहमान होंगे डॉक्टर जुबैर खान। ये प्रोग्राम आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश होगी। कल प्रातः 6:05 पर कृषि चर्चा में जानिएगा सब्जियों का नर्सरी प्रबंधन के बारे में। विश्व योग दिवस शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग की शक्ति, इस विषय पर नीना सोनकर की वार्ता आप सुनेंगे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। समय रहेगा प्रातः 7:00। प्रातः 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम विविधा, विषय होगा विश्व शरणार्थी दिवस। आज सुबह ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कल सुबह 7:31 पर। दिन में 1:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन, सफलता की कहानी केला अमरूद और तरबूज उत्पादन। हरीश कुमार वर्मा से की गई डॉक्टर सुशील कुमार राय की ये भेंटवार्ता प्रसारित होगी कार्यक्रम विज्ञान और किसान में कल दिन में 2:30 से। शाम 5:25 पर कार्यक्रम युवा तरंग में युवा श्रोता सुनेंगे सुशील कुमार का कविता पाठ नई उड़ान। ये कार्यक्रम सुनिएगा कल शाम 5:45 पर। इस कार्यक्रम में अभिषेक से सुनिएगा पारंपरिक क्षेत्रों से उठती उम्मीदें। शाम 6:30 पर कार्यक्रम लोकायतन में आप सुनेंगे यशोवर्धन तिवारी की वार्ता, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान, खरीफ में भूमि शोधन, बीज शोधन और पौध जड़ उपचार। इस विषय पर डॉक्टर चंद्र प्रकाश नारायण गौतम से की गई डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती किसानी में शाम 6:50 पर। अभी आप सुन रहे थे हमारी आज की सभा के शेष और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारा अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: और आकाशवाणी की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज विज्ञान भवन में भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन देश के युवाओं को सशक्त बनाने, उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने तथा विकसित भारत के निर्माण में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। यहां हम अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहेंगे कि विज्ञान भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और वो लाभार्थियों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
1: Yeah, the Prime Minister has arrived already, is in Vigyan Bhavan and is in a separate hall where he's having a talk, a discussion with the beneficiaries who are going to be benefited today from this this Yojana, that is the Vikshit Bharat Rozgar Yojana by the Prime Minister. And then after that, he'll be coming over here in a short while. He'll be entering the plenary hall wherein the program will begin. And to say, tell you something about the atmosphere over here, it's really brightly lit atmosphere, and a lot of flowers are there in front of the dais, and you're having yellow, white and pink roses, and of course they're flanked by yellow and pink lilies and the anthurium. So you can see that all the people, the beneficiaries, they're numbering about about 600 people who are all seated over here, and they'll be getting the appointment letter for the jobs, and it's going to be a wonderful atmosphere over here, and it'll be a lifetime experience for them because they're getting these letters from the hand of the Prime Minister.
0: बिल्कुल एंड्रयू, और आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे डिजिटली, रिमोट का बटन प्रेस करके, और सबके खातों में चली जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना।
1: And we got appointment letters, Preeti, when we got a job. And now you see, everything is digital. So India's also gone ahead with the world because everything is digitized now. And today, in fact, around 15 lakh beneficiaries will be getting their job, their letters today, employment letters. And that is going to cost about 2,400 crores only for today. And then, of course, and the final aim, the final total, that is going to be about 3.5 plus crore jobs. And the total budget is for this is about 99,446 crores.
0: बिल्कुल, और मंच की बात करें तो मंच पर भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ होंगे श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, और साथ में होंगे श्रम एवं रोजगार तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदलाजे, और साथ उनको जो स्कॉट करके लाएंगे श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुरनानी, और साथ में दो युवा लाभार्थी भी साथ में होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जब वो मंच पर आएंगे।
1: Yeah, these two beneficiaries are going to bring the Prime Minister to the dais. What a privilege for them. I think it's going to be a lifetime experience for them. And I just want to tell you, the motto for this is Rozgar ya Karobar, Saath hai Bharat Sarkar. What an encouragement to the people who are going to start the business. And then the transformation journey is from auto settlement of advance claims up to rupees

0: Tell you the motto for this is Rozgar ya Karobar, Saath hai Bharat Sarkar. What an encouragement to the people who are going to start the business. And then the transformation journey is from auto settlement of advance claims up to rupees 5 lakhs. So people who have got debts and all that will be waived off. Then centralized pension payment scheme, which is CPPS. And then digital life certificate through Umang app. And face authentication technology, FAT, through for getting the number. And 99.68% of UANs have been generated, which is the universal account number.
1: आज के कार्यक्रम पर अगर एक नजर डाले तो फिलहाल युवा लाभार्थियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी की बातचीत हो रही है और उसके बाद डायस पर आने के बाद हम ये जो विधिवत एक स्वागत होता है वो श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा किया जाएगा. तत्पश्चात एक लघु फिल्म प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर दिखाई जाएगी और उसके बाद जो आज का बिल्कुल महत्वपूर्ण कार्यक्रम है रिमोट का बटन प्रेस करके राशि हस्तांतरित की जाएगी लाभार्थियों के खाते में. और हाँ बोलो. इस योजना के अगर प्रमुख आंकड़ों की बात करें उस पर एक नजर डालें तो योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2025 से हुई और अब तक देश भर में 15 लाख नए रोजगार अवसर सृजित हो चुके हैं, पहले ही हो चुके. और योजना का कुल बजट 99,446 करोड़ रुपए है और आगामी दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों का लक्ष्य है. तो देखिए कितने लोगों को नौकरियां मिलेंगी, कितने युवा उससे लाभान्वित हों. और शुरुआत से अब तक का सफर देखें तो करीब 15 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है और योजना का मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करना. और आज के विशेष दिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योजना के लाभार्थियों को संबोधित भी करेंगे. ये एक एनकरेजमेंट होता है और कुछ बेहतर करने की एक जो ललक होती है वो उसमें आती है.
0: People will feel secure, okay, the government is there to help us out. So we should not feel that, okay, I'm not going to achieve anything. But let our Prime Minister is given them an assurance that the government is there with you. That is what he says in this motto, no? रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार
1: जी. और चंद मुख्य बातों पर नजर डालें तो यहाँ जरूर बताना चाहेंगे भारत के माननीय प्रधानमंत्री आज विकसित भारत योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे और पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा. और सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए नियोक्ता प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए तक के प्रोत्साहन के पात्र होंगे. और इसके अलावा ये भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सृजन रोजगार के औपचारीकरण और सामाजिक सुरक्षा कवरेज के विस्तार को सुगम बनाने के लिए बनाई गई है, आसानी से सब पहुंच सके. और इस प्रोत्साहन ने देश भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार सुलभ करवा दिया है जी.
0: Yeah, and you know, this program operates under a dual incentive structure split into two distinctive parts. The first part is support for the first-time employees. Jinko pehli bar naukri mili
1: hai.
0: This component focuses directly on the young individuals entering the formal workforce for the first time. And the eligibility is new employees joining an EPFO, that is the Employees Provident Fund Organization registered establishment, with a monthly gross salary of up to rupees 1 lakh. And the worker must not have any prior EPFO history before August 1st, 2025. So these are the conditions. And then the financial benefit is a direct incentive equivalent to 1 month of EPF wage, capped to a maximum of rupees 15,000. Right? And then the disbursement will be in two stages. That is through the direct benefit transfer, DBT, through the Aadhaar verification in two equal installments using Aadhaar verification. First installment after 6 months of continuous duty of 7,500 rupees, and the second one after another 6 months. So after the completion of 12 months, they'll be getting a total of 15,000 rupees. And the employer also, of course, he also gains something. Every time he brings in a new worker, he also gets a benefit of 3,000 rupees per worker that he brings in. So obviously, when these benefits are there, even the employers, they'll try to bring in as many people as possible, and even so that more and more people get employment.

0: And they also, the employer also earns, the employees also earn.
1: बिल्कुल, सभी को फायदा है. Yes. बिल्कुल फायदा है. और आर्थिक विकास में विनिर्माण क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस क्षेत्र में नियोक्ताओं को 4 वर्ष तक प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा. और वहीं सभी क्षेत्रों के नियोक्ता 2 वर्षों तक इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं.
0: yeah.
1: और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगी और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी. और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.
0: Yes. है ना? See, and then one more thing. See, the Ministry of Employment and Labour organizes and promotes Rozgar Melas, that is job fairs, which is being held today across India through the National Career Service portal. That is a National Career Service India to bridge the gap between the job seekers and the employers. And the National Career Service, NCS, is the official platform where you can search for local job fairs.
1: Hmm.
0: It is, you go to the portal and you'll get, and then register as a job seeker and connect with the employers. So if they find that you're reasonable, you're well qualified for their jobs, you'll be picked up.
1: और जैसे कि एंड्रयू ने जिक्र ही किया था, आज का कैप्शन है रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, और कुछ एक पलों में लाभार्थियों के खातों में पैसा पहुंच जाएगा. बिल्कुल डिजिटली पहुंच जाएगा. कहते हैं ना कि अच्छा आएगा देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. बस रिमोट का बटन प्रेस करेंगे और सभी के खातों में मैसेज आ जाता है मोबाइल पर कि हाँ आपके पास पहुंच गए हैं. तो ये बहुत भावुक क्षण भी होते हैं. नहीं, आपको टच भी करते हैं दिल में कहीं. और प्लेटफॉर्म तो मिलता ही है कुछ करने का, कुछ बेहतर करने का. इसके अलावा नारी शक्ति पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगी. 4 श्रम संहिताएं लागू, महिला कर्मचारियों के लिए लाभ, नारी शक्ति, समान कार्य के लिए समान वेतन, सहमति के साथ नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति, वर्क फ्रॉम होम का प्रावधान और भूमिगत खनन एवं भारी मशीनरी सहित सभी प्रकार के कार्यों में रोजगार की अनुमति. विकसित भारत का संकल्प साकार हो रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना?
0: Yeah, that's true. And that's what we say, you know, dreams are being fulfilled under the Prime Ministership of Mr. Narendra Modi. And in fact, this applicable period for this one, the one which is taking place right now, is from the 1st of August 2025, it started last year, till the 31st of July 2027. So this is for a period of 2 years.
1: Hmm.
0: But in manufacturing sectors, the heavy industries, where it is, means it is extendable up to a period of 4 years.
1: Hmm.
0: Its benefits are applicable up to a period of 4 years.
1: 4 saal.
0: Yeah. And then we have this growing with India's workforce, the EPFO, that is the Employers Provident Fund Organization, which is a strength of 7.99 crore members. And then 84 lakh pensioners who are being benefited by this EPFO.
1: बहुत ही ध्यान से मैं देख पा रही हूँ कि विज्ञान भवन में सभी युवा और अतिथिगण जितने भी हैं अपना स्थान ग्रहण करके और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं. और मंच बहुत खूबसूरत फूलों से सुसज्जित है, बहुत खूबसूरत लग रहा है. रंग बिरंगे पुष्प खुशबू भी बिखेर रहे हैं और साथ में इस खुशबू के साथ एक अलग सी हवा है ये.
0: एटमॉस्फेयर इज रियली फैंटास्टिक, इज रियली इलेक्ट्रिक, यू नो, बिकॉज़ सी एवरीवन इज लुकिंग टुवर्ड्स द एंट्रेंस to the plenary hall, because very soon I'm sure the Prime Minister will be coming in, walking in with the other dignitaries, and he'll take his seat over here on the dais.
1: और आकाशवाणी के माध्यम से आंखों देखा हाल आप तक पहुंच रहा है. और इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा और बताना चाहूं तो ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उसके युवाओं के लिए गुणवत्ता पूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो.
0: यस, एंड आवर प्राइम मिनिस्टर हैज ऑलवेज पुट लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन द यूथ, यू नो, द यूथ ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज दे आर द फ्यूचर पिलर्स, दे आर द वंस हु आर गोइंग टू होल्ड दिस नेशन. सो ही इज पुटिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन देम एंड ही सीज दैट ऑल आर एम्प्लॉयड, ऑल गेट एम्प्लॉयमेंट, नन ऑफ देम आर लेफ्ट विदाउट अ जॉब, बिकॉज यू नो हाउ मच फ्रस्ट्रेशन इट लीड्स टू व्हेन अ पर्सन डजंट हैव अ जॉब. सो दैट्स व्हाई द प्राइम मिनिस्टर इज वर्किंग ऑन दिस एंड इज ब्रिंगिंग आउट दीज स्कीम्स. एंड देन I think the Prime Minister is about to arrive in the plenary hall. People are anxiously waiting. Silence is

0: maintained, and the announcement is going on that, well, the Prime Minister is about to arrive, he's on his way. And I want to tell you one thing, one more thing. ESIC's growing network of protection and care. This is Social Security for All, which is 3.24 crore plus insured persons enrolled, 14.91 crore plus beneficiaries, which is covering 728 districts. So this is Social Security for All.
1: और अभी सभी जुड़े भी हुए हैं ना? लाइव जुड़े हुए हैं सभी यहाँ. ये महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा भारत हमारे साथ.
0: Yes. Because this is applicable to 728 districts right now. Right now, and already 15 lakh people have already got their employment letter, their job letters, and that total incentive which is going to go to them is 2400 crores.
1: और थोड़ा सा सार देखें एंड्रयू तो जरूर बताना चाहेंगे. योजना के अनुसार 1500 रुपए की राशि दो किस्तों में मिलेगी और ये पैसा उन कर्मचारियों को मिलेगा जिनका पहली बार प्रोविडेंट फंड नंबर जनरेट हुआ है. ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है. और सैलरी 1 लाख रुपए महीने से ज्यादा ना हो, कम होनी चाहिए, तब ये मिलता है. और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 तक है तो कंपनी को 1,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेगा, और अगर कर्मचारी की सैलरी 10,000 से 20,000 तक है तो कंपनी को 2,000 रुपए हर महीने मिलेंगे, और 20,000 से 1 लाख तक है तो सैलरी तो कंपनी को 3,000 रुपए प्रति कर्मचारी मिलेंगे. इसका आपने जिक्र भी किया था.
0: एंड यू नो दिस की ऑब्जेक्टिव्स हैज बीन टू जनरेट मोर देन 3.5 करोड़ jobs across India, promote formal employment and social security coverage, support first-time job seekers. That is what it says, no? The scheme aims to make it easier for young people to enter formal employment while encouraging businesses to hire more workers and expand India's organized workforce. And then support first-time job seekers, and then incentivize employers, especially in the manufacturing sector, to create new jobs. See, only when the employees also get an incentive, when they are paid something for every time they give a, they taken a new person, a new job seeker, they also given an incentive which accounts to 3,000 rupees. So why not? They'll definitely try to employ more and more people so that their work also expands, the workforce also expands, and of course it is always on the for the development of the country.
1: Okay. ESIC का बढ़ता सुरक्षा एवं स्वास्थ्य नेटवर्क 3.24 करोड़ प्लस बीमित व्यक्ति पंजीकृत और 14.91 करोड़ प्लस लाभार्थियों तक पहुंच और 728 जिलों में सेवाएं उपलब्ध. और सभी के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक सुरक्षा. ये बहुत जरूरी है. और प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना बहुत ही ऐसी योजना जिससे सभी को फायदा है.
0: Our Prime Minister is a man with dreams. He wants to take India to great heights, and he has achieved it almost. He's taken India to great heights, and right now, and of course, internationally, the world, India has got recognition as a mediator among warring countries, because people have so much of confidence on our Prime Minister that they contact him for problems to be solved.
1: 4 श्रम संहिताएं लागू, मजदूरी संहिता 2019, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य एवं कार्यदिशा संहिता 2020. 29 श्रम कानूनों का एकीकरण, सरल प्रक्रियाएं एवं एक समान परिभाषाएं और अनुपालन का दबाव कम, पारदर्शी, कुशल और डिजिटल प्रणाली. और फिर कुल मिला के कहें तो प्रधानमंत्री विकसित रोजगार योजना जी.
0: एंड आई एम रियली ईगर टू सी आवर प्राइम मिनिस्टर कम एंड प्रेस दैट बटन, यू नो, द मनी विल गो टू 15 लाख पीपल इनटू देयर अकाउंट्स, एंड दे विल बी गेटिंग द लेटर्स, एंड इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. प्रीति, इनफैक्ट आई हैव नेवर सीन समथिंग लाइक दिस, यू नो, जस्ट एट द प्रेस ऑफ अ बटन 15 लाख people, beneficiaries, get the employment letter. India has also gone ahead with the world. When we have advanced, they have gone digital and we have gone digital. So we are going digital in every field. So we should be proud of our country, and the people are anxiously waiting over here. There are about 700 people, I think, or almost 700 people are seated over here, right up to the top.
1: जितनी कैपेसिटी है पूरी भरी हुई है.
0: इट्स फुल, नॉट अ सिंगल सीट इज एम्प्टी. पीपल आर

0: They all, see, they're all job seekers, and most of these people, they'll be getting their jobs. They're all keeping their phones ready on the table. So as soon as the president, prime minister presses the button, it'll come to their phone that they have got their letter.
1: An amount will be transferred.
0: या।
1: और कैमरामैन बिल्कुल तैयार इन ऐतिहासिक क्षणों को कैमरे में कैद करने के लिए. और आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन कह सकते हो, नहीं आज का दिन भी ऐतिहासिक दिन है. और माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित होगी और रिमोट बटन प्रेस करके. और देश में रोजगार के नए मौके बढ़ाने और युवाओं को अच्छी नौकरियों से जोड़ना मुख्य उद्देश्य है, ये कह
0: yes.
1: सकते हैं.
0: एंड सी द सपोर्ट फॉर एम्प्लॉयर्स, यू नो दिस इज द एलिजिबिलिटी इज एस्टैब्लिशमेंट्स रजिस्टर्ड विद द ईपीएफओ दैट सक्सेसफुली जनरेट नेट न्यू एम्प्लॉयमेंट टू क्वालिफाई स्मॉलर फर्म्स फ्यूअर देन 50 बेसलाइन वर्कर्स मस्ट hire at least 2 new employees, while larger firms, 50 or more baseline workers, must add at least 5 new employees. And the financial benefit is that the government pays companies up to rupees 3,000 per month for each additional new hire whose salary is within the 1 lakh rupees threshold, provided they are retained for at least 6 months. And the duration of the incentives are covered for 2 years across all sectors. However, to heavily support the manufacturing sector, businesses operating in manufacturing receive extended incentives lasting up to 4 years. And then the payout channel is, payouts are routed straight into the employer's verified PAN-linked company bank account. That is very important. See, every account has to be linked with a PAN number. Yeah. And then registration processes, eligible entities can participate through designated digital channels. For employers, companies must visit the official Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana portal to finish a quick one-time institutional registration. And then for the employees, the first-time workers need to register and generate a universal account number, UAN, utilizing the face authentication technology built directly into the Umang app.
1: ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ और उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए. और
0: yes,
1: ये बहुत
0: yes.
1: महत्वपूर्ण है
0: yeah,
1: जी
0: yeah.
1: इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि रोजगार या कारोबार साथ है भारत सरकार जी. और फिलहाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लाभार्थियों से बातचीत कर रहे हैं और कुछ एक पलों में मंच पर होंगे. और उनके साथ आएंगे श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय और श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे. और उनके साथ उनको स्कॉट करेंगी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव वंदना गुना और साथ में दो युवा लाभार्थी भी होंगे.
0: एंड सी द ब्यूटी इज दैट द पर्सन विल बी गिविंग द बुके ही इज वन ऑफ द यंग बेनिफिशियरीज एंड ही विल बी सो हैप्पी इन हिज हार्ट दैट आई एम गेटिंग अ जॉब एंड अ प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन दिस जॉब टू मी. सो एंड आई एम टेलिंग इट्स रियली गोइंग टू चेंज द लाइव्स ऑफ दीस पीपल ऑल दीस बेनिफिशियरीज हु आर सिटिंग ओवर हियर इन द प्लेनरी हॉल ऑफ विज्ञान भवन एंड दे विल बी ड्रीमिंग यू नो आई एम श्योर आई एम गोइंग टू कम अप. And I think they are all looking towards the door. I'm sure the Prime Minister is about to arrive. And once he arrives, then the other deliberations will take place. The Union Minister, he'll give the welcome address. And then the Prime Minister will be, there'll be a filming of the... short film that will be filmed on the screen. And then after that, he'll be clicking on the button. The magic button.
1: Magic button.
0: Yeah, that is the magic button, which will give jobs to about 15 lakh people across the country. And then, of course, the Prime Minister will give his speech. And I'm sure people are waiting for him to give his speech because his speech has always been very inspiring. The young people, you know, it has been a real inspiration for them. You know, he's been an inspiration to the country. And so many followers of Prime Minister, they all know that really whatever he does is something, you know, means... he wants to build India into one of the superpowers in the world, bring the rank of our country to the top, and his dreams, you know, of making India

0: a strong economic power and is on the way, is on that route right now.
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का उद्देश्य श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है और ये इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाएगा और जिससे उन्हें कार्यबल में शामिल होने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी और ये बहुत जरूरी भी होता है. अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति अतिरिक्त कर्मचारी प्रतिमाह 3,000 रुपए का प्रोत्साहन मिलता है और इससे सतत रोजगार सृजन को प्रोत्साहित किया जाता है और प्रोत्साहन भी मिलता है और आर्थिक विकास को गति देने में विनिर्माण के कार्यनीतिक महत्व को देखते हुए विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ताएं 4 वर्षों की अवधि के लिए प्रोत्साहन प्राप्त करने के पात्र हैं जबकि अन्य सभी सेक्टरों के नियोक्ता 2 वर्ष के लिए प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं.
0: एंड सी द डायस, हाउ मेनी बुकेस आर देयर. द प्राइम मिनिस्टर विल बी सिटिंग राइट इन द मिडल. ऑन द राइट ही विल बी फ्लैंक्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर एंड ऑन द लेफ्ट बाय द मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड द बोर्ड बिहाइंड, यू नो, दैट्स अ ब्यूटीफुल वन. देयर इज अ स्क्रीन ऑन द एट द on the plenary hall and the dais, just behind the dais, there's a beautiful board. And on that, the Prime Minister, the Rozgar Yojana, everything is given, all the details are given on that.
1: आर्थिक विकास में अगर हम बात करें तो ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है और देश की आर्थिक प्रगति को युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण औपचारिक रोजगार के अवसरों में बदलने में मदद भी करेगी और साथ ही साथ ये योजना श्रमिकों और नियोक्ताओं दोनों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये योजना रोजगार आधारित विकास के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने और ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि भारत की आर्थिक प्रगति के लाभ उनके युवाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण रोजगार के अवसरों में परिवर्तित हो जाए.
0: Yes, and this, you know, I want to tell you, in fact, I've seen over the years, I think this is the 12th year, he's completed 12 years of his rule as the Prime Minister of our country. And all these years, you know, his intention has always been to generate more and more employment, right? Just to remove this unemployment, reduce it to the max, minimum, reduce the unemployment to the minimum so that more and more people are employed. And they are able to overcome all the financial problems that they go through. And because through all these schemes, you know, our Prime Minister is helping out the people to see that they are self-sufficient, they are independently, they're financially independent. And very soon our Prime Minister will be coming in and people are getting ready. All are viewing towards the gate, towards the entrance to the plenary hall.
1: जो माननीय प्रधानमंत्री जी की युवा लाभार्थियों से बातचीत हो रही है जब वो लौट करके यहाँ आते हैं तो उनके अंदर जो उत्साह होगा उसे हम सब महसूस कर सकते हैं क्योंकि वो तो कभी कम नहीं होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 बात करना ये एक प्राउड मोमेंट होता है. नहीं,
0: दैट्स ट्रू. एंड यू नो, आई अटेंडेड वन ऑफ दीज डेज, यू नो, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर स्पोक टू द स्टूडेंट्स ऑल ओवर द कंट्री through the live telecast, you know. And you won't believe the way he encouraged the students. He said that don't worry, if you get low marks, it's not that everything is closed for you. Still, you've got a job, you've got something, you've got a future. Every person has a plan, a talent. God has given a talent in you and he will see that it you come up in your life. So he said that if low marks will not, it's not an end to anything. So that's why, you know, here, that's how he encourages. And students, I'm sure, you know, they go and write the exam with confidence. And here also these young people, these beneficiaries, they have come here with confidence, with of hope that our Prime Minister is helping us to get a job.
1: आपने जिक्र किया बच्चों का तो मुझे याद आ गई परीक्षा पे चर्चा.
0: yes,
1: तालकटोरा स्टेडियम कैसे भरा रहता था और बच्चे कितने उत्साह के साथ प्रश्न पूछते थे और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो बात कर लेते हैं तो उनमें ऐसी कोई बात होती नहीं कि हमारे लिए पढ़ना कहीं मुश्किल हो सकता है क्योंकि उनकी एक किताब आती है जो जिसको पढ़ने के बाद बहुत उत्साह भर जाता था बच्चों.

0: तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
1: और उनके साथ इस अवसर की शोभा और बढ़ा रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के माननीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडव्य जी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री सुश्री शोभा करांदला जी का।
0: आप सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान ग्रहण करें।
1: मैं मन्नत भाटिया
0: और मैं जयवर्धन गोयल,
1: माय भारत वॉलंटियर्स, आप सभी का।
2: The Prime Minister has arrived. He's taken his seat on the dais.
1: प्रधानमंत्री जी, हम आपको सविनय सूचित करना चाहते हैं कि आज
2: flanked by the Union Minister on his right and by the Minister of State to his left.
3: और सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया और अब सब ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया।
0: अनुरोध करेंगे हमारे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के बेनिफिशियरी सुश्री शिखामोनी डेका जी से कि वे पुष्प देकर मंच पर विराजमान हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां।
3: पुष्प से स्वागत किया माननीय प्रधानमंत्री जी का एक युवा लाभार्थी ने।
0: यह सम्मान का माध्यम है, यह आत्मविश्वास का आधार है और यह विकसित भारत के निर्माण की सबसे मजबूत नींवों में से एक है। यही प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का विजन है, यही रोजगार राष्ट्रीय समागम का संदेश है।
1: अब हम अनुरोध करते हैं माननीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भारत सरकार डॉक्टर मनसुख मांडविया जी से कि वो अपना स्वागत संबोधन दे।
2: And now the welcome remarks by Shri Mansukh Mandavia, the Minister for Labour and Employment. He walks to the podium to give a speech.
4: Pradhan Mantri, Viksit Bharat Rozgar Yojana ke antargat Prosahan Rashi Vitran karne ke avsar par hamare beech mein upasthit Adaniya Pradhan Mantri, Shri Narendra Modi ji, मेरी सहयोगी मंत्री आदरणीय शोभा करंदला जी, वीडियो कॉन्फ्रेंस से विभिन्न राज्यों से जुड़े आदरणीय राज्यपाल महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्रीय मंत्रीगण, राज्य के श्रम मंत्रीगण और सभी लाभार्थी भाई एवं बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है और नया भारत का निर्माण हो रहा है। नया भारत के निर्माण में आपकी विचार ने सोच भी बदली है और नए आयामों को भी आगे बढ़ाया है। और इसलिए एक समय था जो लेबर की बात करते थे, प्रो लेबर थे, उसको इंडस्ट्रीज के खिलाफ माना जाता था और जो इंडस्ट्रीज की बात करते थे उसको लेबर के खिलाफ माना जाता था। लेकिन आपकी सोच ने ये चरित्र को बदल दिया है। आज एम्प्लॉयर और वर्कर दोनों को नेशनल बिल्डर के रूप में आपने परिभाषित करा है और दोनों गौरव महसूस कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपने दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से वेल्थ क्रिएटर को सम्मान करने की बात कही थी। उनके साथ आपने श्रमिक कल्याण के लिए और वर्कर के हितों को सुरक्षित करने के लिए 4 महत्वपूर्ण लेबर कोड भी लागू करा। पिछले ही वीक में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की कॉन्फ्रेंस चल रही थी, दुनिया के 40 देशों ने भारत के लेबर कोड के प्रेजेंटेशन को देखा और उसको सराहा। वो बताते हैं कि आपने जो लेबर कोड बनाया है वो हमारे देश के श्रमिक के हित में है और देश के श्रमिक के कल्याण को पूरा करता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके लेबर कोड आपके द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके द्वारा लागू करे गए लेबर कोड महिला और पुरुष दोनों को समान काम के लिए समान वेतन की गारंटी देता है। देश में 40 करोड़ से अधिक श्रमिकों को सोशल सिक्योरिटी की आपने गारंटी

दी है महिला वर्कर्स के हित के लिए, एस्टेब्लिशमेंट में क्रेज की भी आपने गारंटी दी है, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयर को एक साल बाद ही ग्रेजुएटी मिले उसकी भी आपने गारंटी दी है, जो पहले कोई वर्कर्स काम करते थे और 5 साल वो कंटिन्यूस काम करते थे तो ही ग्रेजुएटी का प्रावधान था, 40 साल से के अधिक उम्र वाले सभी हमारे एम्प्लॉयज़ को वर्ष में एक बार हेल्थ चेकअप करने की भी आपने गारंटी दी है। 12 साल में आपने डेवलपमेंट तो किया, उसके साथ भी आपने रोजगार निर्माण करने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए। सामान्यतः रोबस्ट इकोनॉमी का ये नियम है, कोई भी देश की इकोनॉमी 1% ग्रो करती है तो उनके साथ 1% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना वो आदर्श शासन व्यवस्था मानी जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ सामने 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11 यानी कि 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। केवल ये फिगर नहीं है, उसके साथ जो एलाइन करते हैं हमारे देश की रिजर्व बैंक, जो रिजर्व बैंक आज़ादी के पहले बनी है और 1980 से रिजर्व बैंक देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेबर फोर्स की डिमांड, एनर्जी कंजप्शन, मटेरियल और सर्विस सेक्टर में जो गतिविधि हो रही है उसके डेटा को एनालिसिस करती है और उनके आधार पर क्लेम डेटा डिक्लेयर करती है। ये क्लेम डेटा एनालिसिस होता है 1980 से, और यही डेटा का जब हम विश्लेषण करें तो 2004 से 2014 एक दशक में केवल देश में 2.9 करोड़ 9 लाख जॉब क्रिएट हुए थे, और रिजर्व बैंक ने कहा कि 2014 से 2024 एक दशक में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के लिए 17 करोड़ जॉब निर्माण करके देश के युवाओं को हाथ में काम दिया है, और उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री जी 2014 के पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में 6% था, लेकिन यही आपका प्रयासों से आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.1% है, जो ग्लोबल एवरेज 4.8% है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जॉब भी निर्माण करा, आपने इंडस्ट्रीज को भी आगे बढ़ाया और उनके साथ आपने सोशल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करी, और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा भारत में 2014 के पहले 19% लोगों को सोशल सिक्योरिटी मिलती थी, यानी कि 25 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी के कवरेज में थे। आज आपके प्रयासों से 12 साल के बाद देश में 64.3% यानी कि 94 करोड़ लोग सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ऑलरेडी आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी दूरंदेशी दृष्टि से आपने देश के युवाओं के हाथ में रोजगार आए, मेरे देश के कोई युवा प्रतिवर्ष 1 से 1.5 करोड़ युवा वर्कफोर्स में आते हैं जिसको जॉब चाहिए, और आप तो पहले से उसकी तैयारी करते हैं। आपने जब तीसरी बार भारत में सरकार बनाई और 2025 के बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी आपने देश के युवाओं के रोजगार के लिए भी सुनिश्चितता करी, और बजट में ही आपने प्रधानमंत्री पैकेज फॉर स्किलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट अनाउंस करा। ये पैकेज क्या था? 2 लाख करोड़ का ये पैकेज 5 साल में 4 करोड़ जॉब निर्माण के लिए आपने निश्चय करा, उसका ही नतीजा है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ये प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपया का आउटलेट है, जो 2014 के पहले की 20 साल की सरकार का लेबर मिनिस्ट्री का बजट का हिसाब करें तो भी 1 लाख करोड़ नहीं हो रहा है। मेरे देश के युवाओं के लिए, उसकी रोजगार की बढ़ोतरी के लिए प्रधानमंत्री जी आपने 1 लाख करोड़ रुपया का अनाउंसमेंट करके 3.5 करोड़ जॉब यही योजना से आपने सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना बनाई है, उसका फल

0: स्वरूप आज देश के 15 लाख एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज दोनों को प्रोत्साहित करने के लिए आप 2400 करोड़ रुपया सभी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉइज के अकाउंट में आज सुनिश्चित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस कार्यक्रम में आप उपस्थित रहे, हम सबका हौसला बढ़ाया, आपका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं।
1: श्रम एवं रोजगार केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, सभी अतिथियों का विधिवत स्वागत किया आपने। और अब एक लघु फिल्म दिखाई जाएगी प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर कुछ एक पलों में, है ना?
2: स्क्रीनिंग ऑफ अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्राइम मिनिस्टर विकसित भारत रोजगार योजना।
3: देवियों और सज्जनों, अब हम आपको प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर आधारित एक विशेष फिल्म दिखाने जा रहे हैं, जो शब्दों को चेहरों में, जिंदगियों में और सच में बयां करती है।
4: भारत अपनी समृद्ध युवा शक्ति के साथ विश्व के सबसे अधिक युवा देशों में से एक है। तेजी से बढ़ते मैन्युफैक्चरिंग, एमएसएमई या सर्विस सेक्टर हो, या फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते युवा धुरंधर, हमारे सामूहिक प्रयास भारत को ग्लोबल स्टेज पर नित नई ऊंचाई दे रहे हैं। इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए औपचारिक कार्यबल को कौशल विकास के साथ मजबूत करना और उद्योगों को अधिक भर्ती के लिए प्रोत्साहित करना विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसी उद्देश्य से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की घोषणा की।
5: आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1,00,000 करोड़ रुपए की योजना हम लागू कर रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लागू हो रही है।
4: इस योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन 31 जुलाई 2027 तक खुला रहेगा। इसका उद्देश्य 3,50,00,000 से अधिक रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। योजना में पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 1 महीने के वेतन के बराबर 15,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में दी जाती है। इसके लिए कम से कम 6 महीने लगातार रोजगार में बने रहना होगा। 1,00,000 रुपए तक वेतन वाले कर्मचारी ही इस योजना के पात्र होंगे। इसके साथ ही सरकार रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ता को भी प्रोत्साहित कर रही है। अब यदि कोई नियोक्ता नया रोजगार सृजित करता है तो उसे 1,00,000 तक की मासिक सैलरी वाले हर नए कर्मचारी के लिए 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के नियोक्ता को ये राशि 4 साल तक मिलेगी और इसका लाभ लेने हेतु नियोक्ता को ईपीएफओ में रजिस्टर्ड होना तथा कर्मचारियों को भी ईपीएफ सदस्य बनाना अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा।
6: हमारे व्यवसाय के विस्तार के लिए नई प्रतिभाओं को जोड़ना आवश्यक था। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना ने अतिरिक्त रोजगार सृजन को प्रोत्साहन दिया, जिससे हम अधिक युवाओं को अवसर दे सके। इससे हमारे व्यवसाय की उत्पादकता भी बढ़ी और रोजगार के नए अवसर भी बढ़े।
7: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत मिले लाभ और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम ने मुझे पैसे को बेहतर प्रबंध करना सिखाया। आज मैं अपने करियर को लेकर पहले से कहीं अधिक आश्वस्त हूँ।
4: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिर्फ इंसेंटिव देने की योजना नहीं है, ये योजना है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को नए अवसरों से जोड़ने की, युवाओं की रोजगार क्षमता और वित्तीय समझ बढ़ाने की। आज ये योजना रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता का अभियान बन चुकी है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, रोजगार या कारोबार, साथ है भारत सरकार।
2: That was a screening of a short film on the Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana. And that was a short film. And now very shortly, the Prime Minister will be distributing

0: Prime Minister Viksit Bharat Rozgar Yojana benefits to the beneficiaries. And the people are waiting anxiously, and the button is coming right in front. That is a remote control button. And the Prime Minister will be pressing the button. As soon as he presses it, well, about 15 lakh people all over the country will be getting their appointment letters, and they'll be getting the money. And the Prime Minister presses the button, and you can see the people cheering.
1: तालियों से स्वागत किया सबने इस बेहतरीन क्षण का, और भारत के माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से देश के लाखों युवाओं के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से करीब 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे हस्तांतरित हो गई।
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि डिस्पर्स करने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की इंसेंटिव की इस इकाई से 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार मिला है। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं।
0: What a time, what a moment. The Prime Minister just pressed the button and all the beneficiaries, they've got the benefits.
2: कृपया अपने अमूल्य विचारों से हम सबका मार्गदर्शन। जोरदार तालियों की गूंज के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें।
1: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।
2: तालियों की कड़कड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए।
1: डाइस पर
3: मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्री मनसुख मांडविया जी, बहन शोभा जी, देश के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग कार्यक्रमों में जुड़े, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी महानुभाव, और जैसा अभी मंच संचालक बता रहे थे कि 200 स्थान पे करीब 2 लाख लोग अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उन सबका भी दूर से ही सही लेकिन दिल से आप सबको मेरी शुभकामनाएं देता हूं। उद्योग जगत से भी जुड़े हुए बहुत सारे महानुभाव मैं आज देख रहा हूं यहां पर, और युवा साथियों का उत्साह तो ध्यान में आता ही आता है। इतनी बड़ी तादाद में आज यहां इस कार्यक्रम से जुड़ी युवा साथियों में मुझे भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर दिखाई दे रही है। मैं आपसे कुछ ही घंटे पहले ही फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा से लौटा हूं। G7 में विकसित देशों के दिग्गज नेताओं से मिला हूं। दुनिया आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रही है, भारत के टैलेंट, स्किल और पोटेंशियल की चर्चा सब दूर हो रही है। दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है, और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है।

यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है। साथियों, आमतौर पर योजनाएं या तो कर्मचारी के लिए बनती हैं या तो फिर उद्योगों के लिए बनती हैं, लेकिन ये एक योजना ऐसी है, इस योजना में भारत के सामर्थ्यवान मेरे युवा, समृद्ध युवा भविष्य की ओर और उद्योग विकास की ओर और इन दोनों को साथ लेकर चलती है। जो युवा अपनी पहली नौकरी शुरू करता है, सरकार उसके साथ खड़ी होती है और इसलिए उद्योगकार को भी लगता है कि अकेला मेरे यहां नहीं आया है, इसके पीछे पूरी सरकार आई है और इसके कारण ऐसे युवकों की तरफ देखने का उस उद्योगकार का भी नजरिया बदल जाता है। और जो संस्थान नए रोजगार का सृजन करता है, सरकार उनका भी उत्साह बढ़ाती है। हमारे यहां पहले कुछ नियम व्यवस्था ऐसी थी कि लोगों को बड़े होने में थोड़ा डर लगता है, यार बड़ा हो जाऊंगा तो मैं ये बंधनों में फंस जाऊंगा, तो उसको लगता था छोटा ही रहना अच्छा है, और कभी बड़े होने की संभावना उसको लगता है ऐसा करो एक दूसरा छोटा और कर दो। आज वो सोच बदली है, हर किसी को बड़ा बनने का हौसला मिलना चाहिए, उसकी उम्मीदों को पंख मिलने चाहिए और ये उद्योग को भी जरूरत होती है। और इस योजना से वो द्वार भी खुला है और यही इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता है। अभी कुछ देर पहले मैं कुछ लाभार्थी नौजवानों के साथ बैठा था, उनके अनुभव में सुन रहा था। उसमें कुछ लोग वो थे जिनको पहली बार नौकरी मिली है और कुछ लोग वो थे जिन्होंने इस योजना के तहत अपने यहां कुछ लोगों को काम दिया है। मैं वाकई कहता हूं इतना कॉन्फिडेंस था उन बच्चों में और ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने दुनिया जीत ली है। उनके सपने, उनका विश्वास, ये सचमुच में हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। साथियों, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है, करीब 70 लाख फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को सोशल सिक्योरिटी का कवच भी मिला है, करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है। ये उनके उज्जवल भविष्य पर देश के विश्वास की अभिव्यक्ति है। साथियों, मुझे उतनी ही खुशी उन संस्थानों के लिए भी है जिन्होंने हमारे नौजवानों को

अवसर दिए, उनके अंदर भीते हुए सामर्थ्य को पहचाना। और इसलिए ये अवसर देने वाले भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। इन्हीं संस्थानों ने बीते महीनों में लाखों नौकरियों का सृजन किया है। और अभी मनसुख भाई जो आंकड़े बताते थे, मैं आशा करता हूं कि मीडिया के लोग इन आंकड़ों पर ध्यान करेंगे। देश के लोगों को खुशी की लहर छा जाएगी, कितना बड़ा काम हो रहा है। ये आंकड़े और अनुभव यही बताता है कि जब सरकार, युवा और उद्योग एक साथ आगे बढ़ते हैं तो रोजगार निर्माण की गति कई गुना बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना इसी नए भारत की पहचान है। एक ऐसा भारत जहां युवा को अवसर मिले, उद्योग को प्रोत्साहन मिले और रोजगार निर्माण एक राष्ट्रीय अभियान बन जाए। साथियों, भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले। मेरा स्पष्ट मानना है, भारत जैसे युवा देश में अवसरों के स्रोत जितने अधिक होंगे, युवाओं के सपनों को उतनी ही अधिक उड़ान मिलेगी। इसी सोच के साथ बीते 12 वर्षों में रोजगार के हर रास्ते को मजबूत किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिजिटल इकोनॉमी तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, हर क्षेत्र में नए अवसर तैयार किए गए हैं। मेक इन इंडिया अभियान, वोकल फॉर लोकल, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान, मिशन मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। आज गाड़ियों से लेकर मेट्रो कोच, ट्रेन के डिब्बे और डिफेंस के साजो सामान तक अनेक सेक्टर में निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ये तभी हो पा रहा है क्योंकि भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं और इसमें काम करने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की जो नीतियां रही हैं, जो निर्णय लिए गए हैं,

उन्होंने देश में निरंतर रोजगार के नए सेक्टर्स बनाए हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश लाखों युवाओं का आधार बन रहा है। मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपए से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी है। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसे

मुद्रा योजना के तहत 33 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता ने करोड़ों करोड़ युवाओं को अपना काम शुरू करने का अवसर दिया है। 10 करोड़ से अधिक महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं और 3 करोड़ से अधिक लखपति दीदी बन चुकी है। स्वनिधि और पीएम विश्वकर्मा जैसी पहलों ने छोटे उद्यमियों, रेहड़ी पटरी वालों और पारंपरिक कारीगरों को नई टेक्नोलॉजी दी है, नई आर्थिक सहायता दी है और नई ताकत से भर दिया है। मैं अभी जिन नौजवानों से बात कर रहा था उसमें एक नौजवान आईटीआई से निकल करके ड्रोन बनाने में लगे हैं, तो बड़े उमंग से बता रहे थे वो। मैं भी आपको ड्रोन सेक्टर का ही एक उदाहरण दूंगा। दवाइयों की सप्लाई हो या पेस्टिसाइड का छिड़काव, स्वामित्व योजना में ड्रोन से मैपिंग हो या फिर रक्षा क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग, ड्रोन्स का उपयोग देश में लगातार बढ़ रहा है और ड्रोन्स का ये बढ़ता हुआ उपयोग युवाओं को नई नौकरियां दे रहा है। वो नौजवान तो आईटीआई करके निकला है लेकिन वो कह रहा था कि वीडियो ड्रोन का मत देखो, खुद ड्रोन बनाना शुरू करो, बना लोगे, इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा था। हमारी सरकार ने स्पेस सेक्टर को खोलने का जो निर्णय लिया उसका भी बड़ा लाभ युवाओं को मिला है। साथियों, पिछले दशक में डिजिटल इकोनॉमी ने भी अवसरों की एक नई दुनिया बनाई है। गिग इकोनॉमी हो, प्लेटफॉर्म इकोनॉमी हो, कंटेंट क्रिएशन हो या टेक्नोलॉजी सर्विसेज, रोजगार के नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। आज जिन अवसरों की कल्पना भी मुश्किल थी वे करोड़ों युवाओं की आय का माध्यम बन चुके हैं। यही बदलाव स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी दिखाई देता है। एक समय देश में लगभग 500 स्टार्टअप हुआ करते थे, आज 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप और वो भी देश के हर जिले में आपको स्टार्टअप नजर आएंगे। ये आंकड़े विश्वास देते हैं कि भारत का युवा आने वाले वर्षों में दुनिया की ग्रोथ, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप का नेतृत्व करेगा। साथियों, आज दुनिया में हर कोई भारत के भविष्य को लेकर बहुत उत्साहित है, हर कोई भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य को लेकर के बहुत आश्वस्त है। आपने भी देखा होगा, फ्रांस में भारत इनोवेट्स का इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, एआई, स्पेस, ग्रीन एनर्जी, बायोटेक्नोलॉजी, ऐसे कई क्षेत्रों में भारत के स्टार्टअप्स और ग्लोबल इन्वेस्टर्स, यानी मैं देख रहा था वो एक नई ताकत के रूप में उभर रहे हैं, वो एक साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं। आज भारत दुनिया के साथ नए ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रहा है, ऐसे समझौते जो भारत के उद्योगों के लिए नए बाजार खोल रहे हैं।

ऐसे समझौते जो भारत के प्रोफेशनल्स के लिए नई संभावनाएं बना रहे हैं। पिछले महीनों में भी यूरोप के अनेक देशों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। ये समझौते भी देश में लाखों की संख्या में नए रोजगार का बनाने का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजीज की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है और यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत के रोजगार परिदृश्य में एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। अक्सर इसकी चर्चा कम होती है लेकिन विकसित भारत की यात्रा में इसका महत्व बहुत बड़ा है। ये परिवर्तन है रोजगार के साथ सुरक्षा और सम्मान को जोड़ने का। हमारी सोच सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की है। हमारी सोच सोशल सिक्योरिटी फॉर एवरी वर्कर की है। इसलिए आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से ईपीएफओ की व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है। पेंशन व्यवस्था को भी सरल और सुलभ बनाया गया है। लाखों नए कर्मियों को हेल्थ इंश्योरेंस और सस्ते उपचार की व्यवस्था से भी जोड़ा गया है। साथियों, हमने श्रम सुधारों को भी इसी दृष्टि से आगे बढ़ाया है। नए लेबर कोड्स का उद्देश्य कामगारों को अधिक सुरक्षा, अधिक पारदर्शिता और अधिक अधिकार देना है। अपॉइंटमेंट लेटर को कानूनी मान्यता देना हो, फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को सम्मान सुविधाएं सुनिश्चित करना हो या फिर मिनिमम वेज के दायरे का विस्तार करना हो, हर प्रयास का उद्देश्य यही है कि श्रमिक का सम्मान और सुरक्षा दोनों मजबूत हो। साथियों, हमारी नारी शक्ति भी आज हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रही है। इसलिए महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक और अधिक अवसरों वाला वातावरण तैयार किया जा रहा है। नाइट शिफ्ट से जुड़े पुराने प्रतिबंधों में बदलाव हो, वर्क फ्रॉम होम की सुविधा हो या सुरक्षित कार्यस्थल की व्यवस्था, हम महिलाओं की भागीदारी को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। साथियों, आज यहां बड़ी संख्या में मेरे उद्योग जगत के साथी भी उपस्थित हैं। आप सबसे भी मेरा एक आग्रह है, 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के पास जाएंगे जिनके पास स्किल टैलेंट होगा, जिनके पास इनोवेशन होगा, जिनके पास क्वालिटी होगी। और आज भारत के पास इन तीनों क्षेत्रों में आगे बढ़ने की अभूतपूर्व क्षमता है। और इसलिए मैं भारत के उद्योग जगत से भी कहना चाहता हूं, आज जो अवसर हमारे सामने हैं उन्हें हमें पूरी शक्ति से अपनाना होगा। हमें नए बाजारों तक पहुंचना होगा, हमें नए उत्पाद बनाने होंगे।

हमें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, क्योंकि आज दुनिया भारत के लिए दरवाजे खोल रही है। पहले खिड़की भी खोलने नसीब नहीं था दोस्तों, आज दरवाजे खुल रहे हैं। भारत ने करीब 40 देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, हमें इसका भी पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। ये एग्रीमेंट्स नए बाजार बना रहे हैं, नए मार्केट्स को उपलब्ध करा रहे हैं, दुनिया में मेक इन इंडिया ब्रांड्स के लिए नए अवसर पैदा हो ही रहे हैं, और इसलिए हमें इन अवसरों को गंवाना नहीं है दोस्तों। साथियों, जब लक्ष्य बड़े होते हैं तो उपलब्धियां भी तो बड़ी होती हैं। जब सोच वैश्विक होती है तो सफलताएं भी, सीमाएं भी अपने आप विस्तृत हो ही जाती हैं। और इसलिए ट्रेनिंग, मेंटरशिप और इंटर्नशिप अब वैकल्पिक नहीं है, वो ये 21वीं सदी की आवश्यकता है। भारत के उद्योग जगत को अपने लिए स्किल्ड वर्कफोर्स को भी तैयार करना ही करना है, और भविष्य के लिए नए अवसर भी तैयार करने हैं, क्योंकि विकसित भारत का रास्ता केवल निवेश से नहीं बनेगा, वह टैलेंट, स्किल और इनोवेशन की शक्ति से बनने वाला है। और इस पूरी यात्रा की सबसे बड़ी कसौटी एक ही है, और मैं उद्योग जगत के साथियों को बार बार कह रहा हूं, इन सारी परिस्थितियों का फायदा लेने की एक सबसे बड़ी सफल जड़ी बूटी एक ही है, और वो जड़ी बूटी है क्वालिटी। शिक्षा की क्वालिटी, स्किल की क्वालिटी, सर्विस की क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इवन पैकेजिंग की क्वालिटी। दुनिया में टिकना है तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मानकों पर खरा उतरना ही होगा। दुनिया में आगे बढ़ना है तो उत्कृष्टता को अपनी पहचान बनाना होगा। आज दुनिया भारत से बहुत अपेक्षाएं रखती है, लेकिन मुझे विश्वास है भारत का युवा उन अपेक्षाओं को पूरा ही नहीं करेगा, बल्कि उनसे भी आगे निकल करके दुनिया को दिखा देगा और डंके की चोट पर दिखाएगा। और यही विकसित भारत की शक्ति है, और यही मेरे नौजवान साथियों की, मेरे युवाओं की, उनके सामर्थ्य की, युवा शक्ति की पहचान है, यही उनका सामर्थ्य है। साथियों, सपने वही बड़े होते हैं जहां वो साकार होते हैं। एक सपने का पूरा होना उससे बड़े सपने का रास्ता खोलता है, और यही आज भारत में हो रहा है। मैं भारत के युवाओं की अधीरता समझता हूं, और मैं युवा शक्ति से एक ही बात कहूंगा, आपके सपने ही, मैं फिर कहता हूं मेरे नौजवान साथियों, आपके सपने ही मोदी का संकल्प है। कामयाबी की तरफ बढ़ता आपका हर कदम, ये मेरी भी प्रेरणा है। और हां, असफल होने पर भी आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं, हर असफलता में हमें कुछ न कुछ तो सीखने को मिलता ही मिलता है।

0: और मैं तो खेल जगत के लोगों को मैं हमेशा कहता हूं, जो खेल के मैदान में उतरते हैं ना, कोई हारता नहीं है। एक जीतता है तो दूसरा सीखता है, हारता कोई नहीं है। युवा मन की एक ही कसौटी है, जो असफलताओं से निरंतर नया सीखने का आदि हो, जो सपनों को सिद्ध करे और हर सिद्धि के बाद नए सपनों को जन्म दे। मुझे भारत की युवा शक्ति पर विश्वास है, मुझे भारत की उद्यमिता पर भरोसा है। इसी भरोसे के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विकसित भारत 2047, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हिंदुस्तान विकसित होकर रहेगा। ये हम सबका सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है। और मैं मानता हूं दोस्तों, मेरे नौजवान साथी, हम अपनी आंखों से खुद देखेंगे, विकसित भारत खुद देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: What a fantastic speech by our Prime Minister.
2: धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री।
1: Full stress on the youth of the country. And he says that they are the future pillars of our country and the country rests on their shoulders. That's why he has been putting so much of stress on the youth. And he said that their dreams is what my oath is. My oath is the fulfillment of your dreams.
3: भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति एवं प्रेरक उद्बोधन ने देश के युवाओं में नए उत्साह और आत्मविश्वास का संचार किया है। और ये जो राशि आज हस्तांतरित हुई है, ये राशि युवाओं के परिश्रम का सम्मान है, ऐसा उन्होंने कहा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन्होंने कहा कि आप सपने देखिए, उन्हें साकार करने का संकल्प हम लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है ना एंड्रू। और माननीय प्रधानमंत्री अन्य गणमान्य अतिथियों के साथ विज्ञान भवन से प्रस्थान कर रहे हैं। इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू, ओबी टीम इंचार्ज, प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वीके तोमर, इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्र, बाबूलाल मीना और कार्यक्रम के ओवरऑल इंचार्ज प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूँ। नमस्कार।
4: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकायतन।

0: पंचो जय हिंद। लो कुछ भैया।
1: हाँ ओम प्रकाश भैया,
0: देखो कई इस मौसम बदला है, और यानी बदला का है, इतनी घाम हो रहा है, इतनी गर्मी हो रही है, कुछ कहा नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा
1: भैया ऐसा ही तो लू कैसे चल रहा था, जैसे लगा था कि मई वाली गर्मी शुरू हुई है। और बिल्कुल
0: और जेठ चल रहा है भैया, तो जेठ में गर्मी कैदित होते हैं। और भैया देखो, जब गर्मी हो रही तो कुछ चीज़ें अपन ध्यान रखा है कि भैया जो उन कपड़ा पहने के है वे ढील ढाल पहने के है और पूरी बाहन वाले पहने के है।
1: बिल्कुल भैया, और देखो और काम धाम के लिए जब बाहरी निकलो हर एक चीज़ सोचो तो बड़ी दिक्कत होती है। तो बिल्कुल दुरुस्त हुई कि जब आप ना निकली हैं कामों
0: हाँ
1: पे तो दिक्कत तो हो इनका है। तो ये लिए हर एक चीज़, और मान लिए जब कुछ अपन बिजनेस के काम हुए और बिल्कुल तैयार हुई के निकल रहा हूँ तो वह टाइम तो बहुत ज़रूरी
0: हाँ
1: है।
0: पानी भैया बोतल साथ है रखो। वही के साथ साथ देखो, जब काम काज की बात होते भैया तो बहुत चीज़ें ऐसी रहती हैं, कबो कबो हम पंचे काम तो करी थे लेकिन वी चीज़ें जब हम पंचन का समय नहीं मिल पाते हैं
1: बिल्कुल
0: तो बड़ी समस्या
1: बड़ी
0: होते।
1: समस्या होती भैया। और ऐसन में अब कबो कबो हम सोचे थे भैया कि कुछ ऐस काम कीन जाए कि जोन है देश विदेश पे भी नाम जोन है मिले, अपने देश का मिले, अपन गांव का मिले। तो कुछ ऐसी व्यवस्था जोन है सरकार अब अपन जोन है हम सबका जो पहल करे, और पहल का करे भैया, मेक इन इंडिया के पहल कर रही है अपन
0: हाँ
1: सरकार।
0: भैया आप सोच रहे हो, देखो हमारे

0: पंचन जो सरकार है वह हमारे पंचन बारे में कितना
1: बिल्कुल
0: सोचत है। तो यही के खातिर देखो जो मेक इन इंडिया हुए वही के तहत कितने नीक नीक काम हो रहे हैं। अब देखो पहले कह रहा है कि कोनो जब चीज़ ना मिलत रहा है यहाँ तो देश विदेश पर यहाँ भैया हम पंचन का
1: बिल्कुल।
0: निर्भर हो पड़
1: और
0: रहा
1: अब
0: है।
1: समय आ गया है भैया कि हम सब स्वावलंबी बनी और अपने जोन है बल पे जोन है हम सब जोन है रही, और ये चाहिए थे कुछ ऐसा नीक काम कीन जाए अपने पंच भैया करें कि देश विदेश के लोग भी आए के निवेश करें।
0: हाँ भैया अब देखो कतनी कंपनी जो बाहर के रह रहे हैं अभी सब अपने देश में आ रहे हैं और ये सब भवा कैसे भैया जो मेक इन इंडिया जो अभियान हुए योजना हुए वही के अंतर्गत। और देखो अब अपने गाँवन में यहाँ कितनी तेज बदलाव हुई रहा।
1: बिल्कुल भैया, हम तो देखे थे भैया जगह जगह अब गांव में ऑटोमोबाइल की दुकान खुल गई हैं,
0: हाँ
1: सारे
0: हाँ
1: पार्ट सब मिल जा रहे हैं भैया,
0: हाँ
1: और तुरंत जोन है गाड़ी या कोनो पुर्जा खराब होते है तो बिल्कुल बन जात है। और ऐसे देखें भैया अब वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के ले लिए, वो
0: हाँ
1: बिल्कुल हर एक चीज़ उपलब्ध है, हर बच्चा अब देखें तो बच्चों मोबाइल से
0: अरे
1: पढ़त
0: नान मुन
1: हैं।
0: लड़का को भैया दन दन मोबाइल चला रहे हैं। और देखो भैया यह हो गया है कि पहले हम पंचे का करे रहन जैसे मौसम के हाल पता करे खोत रहे तो भैया बस बदरे तन देखित रहन कि भैया कब करिया बादर हुई और कब पानी गिरी। लेकिन अब देखो कितना नीक हो गया है दन नदरे पहले मैसेज आ जाते भैया
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: और देखो भैया आपकी हीट वेव जब आवा तो अपने मोबाइल पे तुरंत अलर्ट आएगा, और
0: हाँ
1: अपने जैसे ला कि कहा तुम्हें साफ साफ लिखा रहा है कि जोन
0: हाँ
1: है गर्मी बढ़े का आसार है, और बच के निकलें पानी लेके निकलें, हर एक चीज़ के जोन है पहले सूचना मिल गए।
0: पूरी सूचना मिल
1: और
0: जाते
1: भैया
0: तो
1: देखो
0: भैया
1: कितना चीज़ बदला, पहले देखो जब पारंपरिक चीजन का देखित है और आज का देखित है तो बहुत अंतर लागत है भैया।
0: हाँ तो यही कड़ी में देखो भैया परंपरा और प्रौद्योगिकी से बदलते गांव ये विषय पर एक वार्ता लेके आए हैं और जो वार्ताकार हैं डॉक्टर सौरभ राय भैया तो आओ बता रहे हैं सुना जाए जाना जाए पंचों भाई सुने और जाने।
1: बिल्कुल भैया,
2: परंपरा और प्रौद्योगिकी से बदलते गांव। जब हम भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में गांव की तस्वीर उभरती है क्योंकि भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव केवल खेत खलिहान और कच्चे रास्तों का नाम नहीं है बल्कि यह हमारी संस्कृति सभ्यता संस्कार सामाजिक समरसता और आत्मनिर्भरता का आधार है। भारत की आत्मा उसके गांव में बसती है। हमारे गांव सदियों से अपनी संस्कृति परंपराओं रीति रिवाजों और सामाजिक मूल्यों के लिए जाने जाते रहे हैं लेकिन आज प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रभाव ने गांव के विकास को नई गति प्रदान की है। पहले जहां किसानों को खेती की जानकारी के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था वही आज मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से मौसम बीज उर्वरक तथा बाजार भाव की जानकारी तुरंत उपलब्ध हो जाती है। डिजिटल भुगतान ऑनलाइन बैंकिंग और सरकारी योजनाओं की जानकारी ने ग्रामीण जीवन को सरल बनाया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा परिवर्तन आया है। ऑनलाइन कक्षाएं स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से गांव के बच्चे भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसका प्रेरणादायक उदाहरण हमें नए भारत की ग्राम पंचायतों में देखने को मिलता है जहां ग्रामीण परिवेश और पारंपरिक मूल्यों को बनाए रखते हुए बच्चों को विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ने के लिए ग्रामीण स्पेस लैब की स्थापना की जा रही है। यह पहल दर्शाती है कि यदि संकल्प मजबूत हो तो गांव के बच्चे भी अंतरिक्ष विज्ञान और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में बड़े सपने देख सकते हैं। यह परंपरा और प्रौद्योगिकी के सुंदर संगम का जीवंत उदाहरण है। स्वास्थ्य सेवाओं में टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन परामर्श की सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रही है। वहीं डिजिटल तकनीक के माध्यम से शासन और प्रशासन भी अधिक पारदर्शी तथा जवाबदेह बन रहा है। लेकिन इस विकास के बीच हमारी परंपराएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। गांव की एकता सामूहिकता लोक संस्कृति त्यौहार और सामाजिक सद्भाव हमारी पहचान है। यदि हम आधुनिक तकनीक को अपनाते हुए अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी सुरक्षित रखें तो गांव विकास और संस्कार दोनों का आदर्श मॉडल बन सकते हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि परंपरा और प्रौद्योगिकी का संतुलित समन्वय किया जाए। नए भारत के गांव यह सिद्ध कर रहे हैं कि आधुनिक विज्ञान और भारतीय संस्कार साथ साथ चल सकते हैं। यही समन्वय आत्मनिर्भर समृद्ध और विकसित भारत के निर्माण का आधार बनेगा। सदियों से भारतीय गांवों ने हमारी परंपराओं को सुरक्षित रखा है लेकिन आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के युग में

गांव की तस्वीर तेजी से बदल रही है। जो गांव कभी विकास की मुख्य धारा से दूर माने जाते थे, वे आज डिजिटल क्रांति, आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक सोच के माध्यम से नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय संस्कृति की धरोहर भारत के गांव में आज भी रिश्तों की मिठास, सामूहिकता की भावना और सामाजिक एकता देखने को मिलती है। हमारे त्यौहार, लोकगीत, लोक नृत्य, पारंपरिक ज्ञान, कृषि संस्कृति और पारिवारिक मूल्य गाँव में ही सबसे अधिक सुरक्षित हैं। पहले गाँव में चौपालें सामाजिक संवाद का केंद्र होती थी। लोग शाम को एकत्र होकर गाँव के विकास, सामाजिक समस्याओं और कृषि कार्यों पर चर्चा करते थे। यह लोकतंत्र की सबसे प्राचीन और प्रभावी व्यवस्था थी। आज भी गाँव की यही सामाजिक शक्ति उन्हें विशेष बनाती है, लेकिन बदलते समय के साथ केवल परंपराओं के सहारे आगे बढ़ना संभव नहीं है। यदि गाँवों को आत्मनिर्भर और विकसित बनाना है तो उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ना ही होगा। प्रौद्योगिकी विकास का नया आधार बन रहा है। 21वीं सदी को तकनीक की सदी कहा जाता है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, AI, रोबोटिक्स, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा और अंतरिक्ष विज्ञान जैसी तकनीकों ने पूरी दुनिया को बदल दिया है। एक समय था जब गाँव में किसी सूचना को पहुंचने में महीनों लग जाते थे। आज वही सूचना कुछ सेकंड में मोबाइल स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाती है। तकनीक ने गांव और शहर के बीच की दूरी को कम कर दिया है। आज गांव का युवा भी दुनिया की नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकता है और वैश्विक अवसरों से जुड़ सकता है। कुछ दशक पहले किसान पारंपरिक तरीकों से खेती करते थे। उत्पादन सीमित था और मौसम की मार से भारी नुकसान होता था, लेकिन आज तकनीक ने खेती की तस्वीर बदल दी है। आधुनिक कृषि यंत्रों, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, पावर टिलर और अन्य आधुनिक मशीनों ने खेती को सरल और तेज बनाया है। वैज्ञानिक खेती, मिट्टी परीक्षण, उन्नत बीज, जैविक खाद और वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग से उत्पादन भी बढ़ा है। मौसम की जानकारी अब किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से मौसम की सटीक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इससे बुआई, सिंचाई और कटाई का सही समय निर्धारित करने में मदद मिलती है। ऑनलाइन बाजार, ई नाम और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध करा रहे हैं। किसान अब सीधे खरीदारों से जुड़ सकते हैं। इस प्रकार तकनीक ने किसान को केवल उत्पादक नहीं बल्कि एक आधुनिक उद्यमी बना दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति, यदि किसी क्षेत्र में तकनीक का सबसे सकारात्मक प्रभाव पड़ा है तो वह शिक्षा है। एक समय था जब ग्रामीण बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए घर से दूर शहर जाना पड़ता था। आज इंटरनेट और डिजिटल शिक्षा ने यह बाधा काफ़ी हद तक समाप्त कर दी है। स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन पाठ्यक्रम, डिजिटल पुस्तकालय और वर्चुअल प्रयोगशालाएं ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए नए अवसर लेकर आई है। कोविड काल में ऑनलाइन शिक्षा ने यह सिद्ध कर दिया कि तकनीक शिक्षा को हर घर तक पहुंचा सकती है। आज गांव का छात्र भी देश के प्रतिष्ठित शिक्षकों से ऑनलाइन पढ़ सकता है और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी काफ़ी परिवर्तन आया है। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी एक बड़ी चुनौती थी। अब डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं और टेलीमेडिसिन इस समस्या का समाधान बन रही हैं। गांव का मरीज ऑनलाइन डॉक्टरों से सलाह प्राप्त कर सकता है। स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध है। डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बना रही है। महिला सशक्तिकरण और तकनीक गाँव के विकास में महिलाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज तकनीक ने महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया है। स्वयं सहायता समूह डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने उत्पादों की बिक्री कर रहे हैं। ऑनलाइन प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाएं सिलाई, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण

0: और अन्य व्यवसाय सीख रही हैं। डिजिटल बैंकिंग ने महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया है, युवाओं के लिए नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। आज का ग्रामीण युवा केवल सरकारी नौकरी तक सीमित नहीं है, तकनीक ने उसके लिए नए अवसर खोले हैं। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स और कंटेंट क्रिएशन, ऐप डेवलपमेंट जैसे अनेक क्षेत्र उसके लिए उपलब्ध हैं। स्टार्टअप जैसे अनेक क्षेत्रों में ग्रामीण युवा अपनी पहचान बना रहे हैं। डिजिटल ग्राम पंचायतें, आज ग्राम पंचायतों में तकनीकी बदलाव स्पष्ट दिखाई देता है। ऑनलाइन योजनाएं, डिजिटल रिकॉर्ड, ई गवर्नेंस, भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण, ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रक्रिया, इन सब ने पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाया है। ग्राम पंचायतें अब केवल प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि विकास की डिजिटल प्रयोगशालाएं बनती जा रही हैं। परंपरा और तकनीक का संतुलन आवश्यक है। यदि हम केवल तकनीक अपनाएं और अपनी संस्कृति भूल जाएं, तो हमारी पहचान कमजोर हो सकती है। और यदि हम केवल परंपराओं से चिपके रहें और आधुनिक तकनीक को न अपनाएं, तो विकास की दौड़ में पीछे रह जाएंगे। इसलिए आवश्यकता है कि हम दोनों का संतुलन बनाएं। हमें अपनी भाषा, संस्कृति, लोक कला और सामाजिक मूल्यों को संरक्षित रखते हुए विज्ञान और तकनीक को अपनाना होगा। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले की ग्राम पंचायत हसुड़ी अवसानपुर हमारे बीच का एक उदाहरण है, जहाँ परंपरा और प्रौद्योगिकी का अनूठा संगम देखने को मिलता है। यह गांव अपनी सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक मूल्यों और ग्रामीण परंपराओं को सुरक्षित रखते हुए विज्ञान और तकनीक की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। हुसड़ी अवसानपुर में स्थापित लैब ने पूरे क्षेत्र में नई वैज्ञानिक चेतना का संचार किया है। स्पेस लैब ने बच्चों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना को बढ़ाया है। अब बच्चे केवल नौकरी पाने का सपना नहीं देखते, बल्कि वैज्ञानिक, इंजीनियर, शोधकर्ता और नवप्रवर्तक बनने की सोच भी विकसित कर रहे हैं।
1: लोकस भैया,
2: हाँ प्रकाश भैया,
1: देखो कितनी नीकी तनात्रे जानकारी देने डॉक्टर सौरभ राय भैया, परंपरा और प्रौद्योगिकी से बदलते गांव ई विषय पर यहाँ, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद भैया।
1: और भैया आप रुका जाए एक अंतराल के लिए, फिर के बाद अपन जो बैठकी है वह आगे जारी रही।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: उत्तर प्रदेश के प्रथम नैक ए प्लस प्लस मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, बीसीए, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: लोकुश भैया,
2: हाँ प्रकाश भैया,
1: देखो ये बेरा जैसे देखो वैसे मने ही तना तना के फोटो डाल रहा भैया फोन पर, यहाँ है काहे तेरे कहूँ हियाँ घूमे जा रहा, कहूँ हुमे घूमे जा रहा, कोई नानी घरे जा रहा, कोई मैके जा रहा है और कोई अम्बिया खाए जा रहा है। तो भैया खूब तना तरह सब जने घूम रहे हैं और सब जने फोटो डाल रहे हैं
2: पूरा भैया
1: है? और भैया मनोरंजन की जब बात चलत है तो कुछ कहे चाहते हो भैया?
2: बिल्कुल भैया, तो मनोरंजन के लिए हम लाइन है नकटा, बाजार चले जाओ और एक गायन की नहीं, किरण गौतम बहनी।
1: तो किरण गौतम बहनी कहा कह रही कि बाजार चले जाओ, कहा मंगा रही, इतनी कहा सुना जाए, पंचो भाई सुने और आनंद लें।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।

0: लोकल भैया।
1: हाँ ओम भैया,
0: और बताओ खेती पाती का हाल चाल है?
1: एकदम बहुत बढ़िया भैया, खेती तो एकदम बढ़िया चल रही है और खेती हम तैयारी बिल्कुल कर लेन है और अब धान लगावे जाते रहे भैया।
0: बिल्कुल भैया, देखो समय तेरे तैयारी कर ले चाहिए, काहे तेरे कहा थे कि जो डार के चूका बानर और समय चूका किसान, फिर समय नहीं पावत है।
1: और एक बात बताई भैया,
0: हाँ
1: आपकी हम जैविक खेती करे जात हन,
0: अब किन करे जा रहे हो
1: भैया? एक पहले तो हम जो है जैविक खाद
0: और
1: तो
0: मिला रहे भैया, जब जादो तबे सवेरा है
1: खाद के प्रयोग करते रहे भैया, लेकिन अब की मन बनाए लेने थोड़े खेत में कि पूरा जैविक करे के।
0: बिल्कुल भैया, बहुत नीक काम कर रहे हो। देखो जैविक खेती करे भैया चाहबे करी का है तेरे। देखो मने यू सोचत है कि ज्यादा ज्यादा खाद वही डारी जाए और बहुत खाद डारे के बाद उत्पादन अच्छा नहीं हो पाओ थे, वही अपन माटी खराब हो रही है और वही के साथ साथ जो नाज होते पैदा हुए थे बहुत भैया जहरीला अनाज मिला थे।
1: बिल्कुल भैया, देखो हम ऐसे बताएं आपका कि जैविक खेती भैया सुनित तो बहुत रहन हम, लेकिन अब की हम खुद से मन बनाए हैं कि देखी थे कैसे कितना उत्पादन होते है और ई जोन अपन पंच भैया कर रहा हन, एक दुई पंच भैया के खेतन पर हम गए और देखें तो उनके खेत से महक भी आ रही थी।
0: अरे
1: तो हम ये सोचें कि जोन भैया उनके थोड़ा बहुत चावल और ये सब जोन है उनके घर से हम लिए भी रहें, तो यह बार हम मन बनाए लेन कि जोन है उनके खेत के चावल से हम खुद है जो है उत्साह।
0: अरे हम भैया बहुत पहले तर करे थे ना, तुम का बताई तुम लदुआ पर जोन वाल तुरई लौकी लगाए जाते।
1: हाँ भैया,
0: वही का भैया खाओ वेमा कोनो जो रसायन असायन नहीं डारा जाते, इतना बढ़िया मीठ मीठ लागत है वही सब्जी भैया, आनंद अलग हो जाते।
1: बिल्कुल भैया, और सब्जी की बात के हो चावल तो बिल्कुल,
0: अरे चावल भैया एकदम मिलकर लागत है। और देखो जब खेती पाती बात की जाते है, खेती भैया इस समय तैयारी बहुत काम जोरन से चल रहा है, लेकिन बात जब हो जाते है कि भैया जब रुपया पैसा की बात चलत है तो मन करत है कि दादा कहूँ तेरे मिल जाते दो चार हजार तो समझ लो सगरे काम निपट जाती।
1: तो बिल्कुल खुशी की बात आप बताए चाहते हैं भैया, कुछ आपके मन में है तो बता दें भैया।
0: अरे भैया देखो खुशखबरी यह है कि हम तो भैया इतने खुश हैं कि कल जो है 20 जून के यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी जो 2000 रुपया भैया किसान सम्मान निधि वाले आवत है ना,
1: 2300 किस्त जारी होने वाली है भैया।
0: वाह भैया मिला वाली है, अब इन्हें तरह इतनी खुशी हो रही है कि भैया 2000 मिल रही हैं तो अपन जो खेती पाती जुताई खुदाई बिया बेसार और खाद पानी जो देख है वो सब वही काम निपट जाए।
1: बिल्कुल सोचे हो कि अपन पैसा लगाए के जो मिली है वो सही जगह लगावा जाए। और एक चीज हम और कहा चाहते भैया, देखो सरकारी योजना के कोनो लाभ लिया चाहते हैं अपने पंच भैया तो उनसे यह कहा चाहते किसान रजिस्ट्री जरूर करें।
0: हाँ देखो बहुत जने कहा थे कि भैया जो 2000 रुपया आवत है आए नहीं रहे हैं,
1: बिल्कुल
0: बहुत मन ही किया शंका रहा थे, तो भैया अगर किसान रजिस्ट्री नहीं कराए हो तो करा लो, बहुत आसान है, चाहे अपने हाथे कर लो चाहे जो आपके नजदीकी भैया जनसेवा केंद्र है वहाँ जाए भैया बढ़िया आराम तेरे करा लो, 10 रुपया बहुत ज्यादा लगे हैं।
1: बिल्कुल भैया,
0: और तुम्हारा जोन खेती का सगरा ब्यौरा है आके जगह हुई जी जोन आगे भविष्य में आवे वाली जोन योजना है वे सब तुमका भैया बड़ी आसानी से मिल रही है तो बड़ी आसानी से किसान रजिस्ट्री कराई जा सकते हैं।
1: बिल्कुल, और एक चीज कही भैया, जैसे जान ले खेती के आधार है,
0: आधार
1: कार्ड अपन सबके भैया वैसे खेती के आधार कार्ड हुए एक बनवा ले हैं तो सब मेयर के जोन लाभ मिली और जोन है सरकारी लाभ बिल्कुल नहीं है तो अपन आमदनी बढ़े और जब सही समय पर सलाह भी मिल जाते है हर एक चीज के। और पंच भैया का हम तो यही कहा कि देरी ना करें और कल जोन है
0: मिल रही है। और भैया देखो जब सलाह की बात चलते है तो भैया देखो अगर हम पंचन कहीं समय तेरे सूचना और जानकारी खेती की जोन है वह अगर मिल जाते समाचार प्राप्त हो जाते हैं तो हम पंचे जोन अपन खेती में या नवाचार अपनावक है या जो नहीं योजना होने वाली हैं वे सब पहले तरह पता हो जाते तो भैया हम पंचे अपन खेती काम कर लेते हैं वे योजना का लाभ उठा लेते हैं। तो वही कहें हमारे आज दिन है देखो भैया शुक्रवार और लैके आहन किसान डायरी जो बीते सप्ताह के किसी समाचार पर आधारित होते तो आलेख एवं वाचन हुए नवेद शिको भैया क्या और ये किसान डायरी का जो संपादन किए हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया, तो आप सुना जाए पंचो भाई सुने और जानकारी लें।
2: किसान भाइयों बहनों नमस्कार, किसान डायरी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं इस सप्ताह के कृषि समाचार। पहले आज की सुर्खियां। कल 20 जून को किसानों को मिलेगी सम्मान निधि। मुख्यमंत्री योगी ने प्राकृतिक खेती अपनाने पर दिया बल। दलहन खरीद की आय सीमा बढ़ी। न्यूनतम समर्थन मूल्य में यूपी को सबसे अधिक लाभ और खेती बचाओ अभियान तेज। अब कृषि

कृषि समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2 हेक्टेयर से कम वाले किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं। सरकार पर फसली सीजन की शुरुआत होते ही 2,000 रुपये की किस्त किसानों के खाते में भेजती है। इधर खरीफ सीजन शुरू होने जा रहा है, इस कारण किसानों को खेती किसानों में राहत देने के लिए सरकार 20 जून को सम्मान निधि भेजने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन माध्यम से किसानों के खातों में पैसा ट्रांसफर करेंगे। कृषि विभाग ने ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिल सके इसके लिए कुछ दिन पहले कर्मचारियों को लगातार खाते की ऑनलाइन फीडिंग करा दी गई है। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक 4.52 लाख किसानों का डाटा फीड करने का काम किया गया है। जैसे ही प्रधानमंत्री ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने के लिए बटन क्लिक करेंगे, वैसे ही किसानों के मोबाइल में पैसा पहुंचने का मैसेज आने लगेगा। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित प्राकृतिक खेती कार्यशाला 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने को कहा। सीएम ने कहा कि प्राकृतिक खेती किसानों की लागत कम करने, आय बढ़ाने और लोगों को स्वस्थ जीवन देने का सबसे प्रभावी तरीका है। प्रदेश में प्राकृतिक खेती को जन आंदोलन का रूप देने की जरूरत है ताकि अधिक से अधिक किसान इससे जुड़ सकें। भारतीय कृषि परंपरा में गाय का विशेष महत्व रहा है। गौ आधारित प्राकृतिक खेती से किसानों का खर्च कम होता है और जमीन की उर्वरता भी लंबे समय तक बनी रहती है। आज किसान रासायनिक खाद्य और कीटनाशकों पर बड़ी रकम खर्च कर रहे हैं। यदि किसान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ेंगे तो खेती की लागत में काफी कमी आएगी और मुनाफा बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उत्तर प्रदेश के किसानों के हित से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। केंद्र सरकार ने प्रदेश में जायद दलहन फसलों की खरीद की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून 2026 तक करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इससे प्रदेश के हजारों किसानों को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने का अतिरिक्त अवसर मिलेगा। केंद्र सरकार ने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 4 राज्यों में दलहन और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के तहत तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में की जाएगी। इसका मुख्य मकसद किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाना और उन्हें मजबूरी में कम कीमत पर फसल बेचने से बचाना है। इस फैसले से उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। राज्य में ग्रीष्मकालीन 2026 सीजन के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी मिली है। इन फसलों की कुल एमएसपी कीमत 1,490 करोड़ रुपए से अधिक है। कृषि मंत्री के अनुसार इस कदम से राज्य के दाल और तिलहन उगाने वाले किसानों को बहुत मदद मिलेगी। खेतों में अंधाधुन रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल से बंजर होती जमीन और बढ़ती बीमारियों को देखते हुए कृषि विभाग ने सिरमौर में विशेष खेती अभियान शुरू किया है। 1 जून से चल रहे इस अभियान के तहत किसानों को रसायनों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अब तक 26 जागरूकता शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इन शिविरों के माध्यम से करीब 3200 किसानों को रासायनिक खाद्यों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरकता शक्ति में कमी, जल प्रदूषण और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले

0: दुष्प्रभावों को जानकारी दी गई है। साथ ही किसानों को प्राकृतिक खेती और संतुलित उर्वरक उपयोग अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। विभाग ने 50 शिविर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र धौलाकुआं के विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज मित्तल और उनकी टीम तकनीकी सहयोग प्रदान कर रही है। वहीं आत्मा परियोजना के निदेशक डॉक्टर नदीम कौंडल की देखरेख में कृषि विभाग इस अभियान को धरातल पर उतार रहा है। प्रशिक्षण शिविरों में विशेषज्ञ किसानों को बता रहे हैं कि खेती में डाले जाने वाले रसायन बारिश और सिंचाई के पानी के साथ प्राकृतिक जल स्रोतों में मिलकर उन्हें प्रदूषित कर रहे हैं। इन दूषित पानी के सेवन से कैंसर, त्वचा रोग और अन्य गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। इसके अलावा मिट्टी की जैविक गुणवत्ता भी लगातार प्रभावित हो रही है। कृषि विभाग सिरमौर के 6 ब्लॉकों में अभियान चल रहा है। ग्रामीणों को मिट्टी परीक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया जा रहा है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की ओर से बृहस्पतिवार को खेत बचाओ अभियान ज्ञान सरौना में चला। 70 किसानों को जागरूकता प्रदान की गई। उनको मृदा स्वास्थ्य और फसल उत्पादकता में सुधार के लिए टिकाऊ पोषक तत्व प्रबंधन पद्धतियों के बारे में जानकारी दी गई। वैज्ञानिकों ने बताया कि उर्वरकों का असंतुलित उपयोग खेती की लागत बढ़ाता है, इससे आर्थिक बोझ बढ़ता है, साथ ही मृदा क्षरण और पर्यावरण समस्या भी उत्पन्न होती है। उन्होंने गोबर की खाद, अपरिशिष्ट अपघटन और दलहनी फसल आधारित फसल चक्र के महत्व पर जोर दिया। प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अच्युत कुमार सिंह, डॉक्टर प्रदीप कर्मकार, डॉक्टर श्वेता कुमारी सौरभ आदि ने विचार रखे। इस मौके पर ग्राम प्रधान जितेन नारायण कुशवाहा सहित कई किसान मौजूद थे। वाराणसी के काशी विद्यापीठ एवं चिरई गांव विकास खंड के 9 सदस्यीय किसानों का दल गुरुवार को अपनी 9 दिवसीय जापान यात्रा से वापस लौटा। किसानों के इस दल ने राष्ट्रीय दूतावास जाकर भारतीय राजदूत से भी भेंट की। इस दौरे के दौरान किसानों ने अपने अनुभव साझा किए और जापान में कृषि क्षेत्र में हो रहे नवाचारों के बारे में चर्चा की। हरियाणा में कृषि क्षेत्र के एग्रीस्टैक कार्यक्रम तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य में अब तक 1.75 करोड़ कृषि भूखंडों की डिजिटल मैपिंग पूरी की जा रही है, जबकि 11.58 लाख से अधिक का पंजीकरण और 8.32 लाख किसान आईडी तैयार की जा चुकी हैं। प्रदेश में लगभग 96% गांवों का डिजिटल मानचित्रण के दायरे में लाया जा चुका है। शेष गांवों को अगले 2 महीने में कवर करने का लक्ष्य है। ये थे इस सप्ताह के कृषि समाचार। इसी के साथ किसान डायरी का आज का अंक संपन्न होता है। नमस्कार।
1: ओम भैया।
2: हाँ लोकेश भैया,
1: देखो कितना नीक किसान डायरी कृषि समाचार पर आधारित जोन रहा। अपने पंच भैया सुनी नो के आलेख एवं वाचन के ही नवेद सिको भैया और संपादन के ही अपने डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया, तो आप दोनों जन का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद हो भैया। देखो जब अपन इतनी नीक जानकारी हो जाते वही के साथ साथ हम पंचे अपन खेती पाती काम करे था ना।
1: बिल्कुल भैया।
2: और गर्मी तो इतनी हो रही है, लेकिन भैया जब संझा कहीं आओ अपने घर और खटिया पर रखा हो इसी तखत पर बाजा और वे पास चलत हुए कार्यक्रम खेती किसानी बढ़िया भैया, मूँगफली हो, चटनी हो, ये बेहरा तो हम भैया चल रहे भैया चुहान मने जैसे देखो वैसे ही खाए रहा है डोलची मैया परी हो अम्बिया और भैया अम्बिया खाए जाती हो एक घर परिवार के सब जने साथ है बैठ हो और बाजा बाजत हो और वही पास चलत हो गौनई।
1: बिल्कुल भैया, और एक चीज कहा घर के मजा बिल्कुल एक नंबर के होते है और जब आप कहीं बात कहो नहीं के, तो पूछो ना भैया।
2: तो बात यह भैया बता रहे हैं कि जितनी थकान होते
1: सब उतर जाते
2: और इतनी गर्मी में यह भैया एकदम जो एकदम जुड़ाए जाते, तो भैया हम देख रहे हैं कि आप कौनी गौनाई लाए हो, तो भैया सुनवाए दो अपने पंच भाई।
1: भैया तो आज हम लेके आए हैं किसानी गीत हमरे देशवा के और जो ने के गायन की नहीं राम सूरत तिवारी भैया, तो चलो सुना जाए
2: पंचों भाई सुने आनंद ले भैया।

0: भारत महान बा ना लौकुश भैया। देखो जब इतनी नीक गौने हो जाते हैं वही के साथ साथ हवा पंचन की जो खेती होते है वह भैया मौसम पर आधारित होते हैं।
1: बिल्कुल भैया,
0: अगर हम पंचन का मौसम का हाल पहले तेरे पता चल जाते तो खेती पाती में का करे है पहले ते का सुप्तियावक है भैया वो हम पंचे कर लेते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो हम
1: भैया,
0: देख रहे हैं कि आपके हाथ में मौसम का हाल है तो अपने पंच बहन

0: बताए दो भैया।
1: बिल्कुल भैया, तो मौसम की जानकारी यह मेर है, भारत सरकार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत मौसम विज्ञान विभाग, मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ से जो जानकारी मिली है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अगले 7 दिनों के जो वर्षा पूर्वानुमान है, 19 और 20 तारीख का जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। वो पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो जोन है 19 तारीख का जोन है कहीं गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है, और वहीं 20 का कोनो संभावना नहीं है, मौसम शुष्क रहायक है। और बात करें 21 से 23 तक के तो पूर्वी और पश्चिमी दोनों जगह जोन है मौसम शुष्क रहायक संभावना है, वहीं 24 और 25 का दोनों जगह छिटपुट बारिश हुए की संभावना है। अगर बात की जाए अगले 7 दिनों के लिए मौसम संबंधी चेतावनी के तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जोन है अगले 7 दिनों तक कोनो चेतावनी नहीं है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं जोन है लू चले के जो है संभावना
0: हाँ भैया लू चले के संभावना है 21-22 के यहाँ। तो भैया अपन जोन सुविधा हुए वह पहले तरह बनाए रखो,
1: बिल्कुल
0: कि भैया गमछा वमछा लेके निकलो, है ना, यो नहीं कि भैया ऐसे निकल पड़े और जब मार मुंह एकदम जरा जा रहा तब समझ में आ रहा है कि गमछा ले ले। लेकिन भैया देखो जब हम पंचे

0: अगले 7 दिनों तक कोनो चेतावनी नहीं है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं जोन है लू चले के जोन है संभावना।
1: हाँ भैया, लू चले के संभावना है 21-22 के यहाँ। तो भैया अपन जोन सुविधा हुए वह पहले तरह बनाए रखो,
0: बिल्कुल
1: कि भैया गमछा उमछा लेके निकलो, है ना। यू नहीं कि भैया ऐसे निकल पड़े और जब मार मुंह एकदम जरा जा रहा तब समझ में आ रहा कि गमछा ले ले। लेकिन भैया देखो, जब हम पंचे अपन फसल का उत्पादित करे थे वही के साथ साथ जब फसल के वाजिब दाम मिल जाते हैं तो भैया एकदम आनंद आ जाते हैं।
0: तो भैया
1: तो 4 मंडी का जो थोक भाव है वो हम पंचे लेके आए हैं। तो भैया मंडी
0: बता
1: भाव
0: दें भैया, बिल्कुल। तो
1: लखनऊ, कानपुर, गोंडा और अयोध्या का जो बाजार भाव है गेहूं दड़ा भैया, लखनऊ मंडी में 2590 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से, कानपुर में 2585 रुपया, गोंडा में 2545 रुपया और अयोध्या में 2570 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा।
0: बिल्कुल भैया। और चावल कामन की बात करें तो लखनऊ में 3520 रुपया प्रति क्विंटल, कानपुर में 3550 रुपया प्रति क्विंटल, गोंडा में 6775 रुपया प्रति क्विंटल और अयोध्या में 6450 रुपया प्रति क्विंटल।
1: भैया युद्ध ने आगे पीछे हो गया है, चना छोटा हो चावल कॉमन का। तो भैया देखो, जो मटर सफ़ेद का जो दाम रहा वो लखनऊ मंडी में 4470 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से, कानपुर में 4550 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से, गोंडा में 4200 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से और अयोध्या में 4340 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से।
0: बिल्कुल भैया। आलू सफ़ेद की बात करें तो लखनऊ में 8880 रुपया प्रति क्विंटल, कानपुर में 780 रुपया प्रति क्विंटल, गोंडा में 960 रुपया प्रति क्विंटल और अयोध्या में 880 रुपया प्रति क्विंटल।
1: जो प्याज लाल का भैया दाम रहा लखनऊ मंडी में 1460 रुपया प्रति क्विंटल, कानपुर में 1340 रुपया प्रति क्विंटल, गोंडा में 1600 और भैया अयोध्या में 1400 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा।
0: बिल्कुल भैया। तो बैगन की बात करें तो बैगन लखनऊ में 1750 रुपया प्रति क्विंटल, कानपुर में 1650 रुपया प्रति क्विंटल, गोंडा में 2450 रुपया प्रति क्विंटल और अयोध्या में 2000 रुपया प्रति क्विंटल रहा।
1: ये तो भैया रहा है 4 मंडी का थोक भाव। भैया अपन बाजार के हिसाब से अपन फसल के यहाँ भैया ले जा सकते हो, भैया अपन नाच पानी ले जाओ और बेचो भैया कि कितना का कैसे सही दाम मिल सकते है। और भैया देखो अपन पंच भाई कल के कार्यक्रम या का सुनिए वो बताए दिन जाए। तो लोकायतन में सुनिए, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल भुगतान वार्ता कर रही है यशोवर्धन तिवारी भैया, और खेती किसानी में भेंटवार्ता सुनिए, खरीफ में भूमि शोधन, बीज शोधन और पौध जड़ उपचार एक जो वार्ता कर रही है भैया डॉक्टर चंद्र प्रकाश नारायण भैया, और इनसे भेंट करी है डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। और भैया देख रहे हैं कि आप जो अपन श्रोता पंच अपन कार्यक्रम सुना थे उनका कैसे लागत है, तो अपने श्रोता पंच भाइन के यहाँ जो है कार्यक्रम का पता बता दो भैया।
0: बिल्कुल भैया। तो कार्यक्रम का पता है लोकायतन खेती किसानी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ, पिन कोड है 226001। और भैया एक चीज और है, पाती लिखेताई ईमेल आईडी भी नोट कर सकते हैं।
1: हाँ भैया, ईमेल दन दे भेजियो सन दे हम पंचंती आ जाए तो भैया वो जरूर सुन लो।
0: हाँ, ईमेल आईडी जो है भैया farmandhome@gmail.com, farmandhome@gmail.com।
1: तो भैया आप देखो चले खो रही बिरिया पंचन से लीन जाए आज्ञा,
0: जय हिंद।

0: खेती किसानी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से थोड़ी देर बाद प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: TLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।
4: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण, कहा

0: युवाओं और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु है ये योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, एसआईटी की जांच सामने आएगा मंदिर चढ़ावा मामले का सच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वांचल को दी 3 ट्रेनों की सौगात। कहा, आने वाले समय में दिल्ली से वाराणसी होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी बुलेट ट्रेन। और केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी आज आगरा में ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई कार्य समूह की बैठक में हुए शामिल। वैश्विक एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने पर हुआ विचार विमर्श। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सहित देश भर से जुड़े लोगों को वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि पूरा विश्व आज भारत की युवा शक्ति की चर्चा कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदले। इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत हुई है। यह युवाओं और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ। यह रोजगार योजना सामान्य तौर पर सोचे जाने वाली रोजगार योजना से बहुत आगे बढ़कर पहली नौकरी पाने वाले युवा के सपनों को शक्ति देने वाली योजना है। यह युवा और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु बनाने वाली योजना है।
0: इस आयोजन के अंतर्गत प्रदेश में लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, वाराणसी, मेरठ सहित 17 जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में योजना के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं आगरा में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल शामिल हुए। इस योजना के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपए तक का प्रोत्साहन दिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अयोध्या में रुदौली विधानसभा क्षेत्र में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय व चिकित्सालय समेत 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरासत और विकास के विजन को साकार करने की दिशा में डबल इंजन सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ निरंतर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की वजह से उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था में ब्रेक थ्रू साबित हुआ है।
2: आज उत्तर प्रदेश अपनी शानदार यात्रा को लेकर के चल रहा है। अब देश के अंदर बीमारू राज्य नहीं, भारत की अर्थव्यवस्था का एक ब्रेक थ्रू बनकर के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। अब यूपी के हमारे नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं है, ये इसी पंच प्रण का परिणाम है और डबल इंजन सरकार का परिणाम है।
0: मुख्यमंत्री ने श्री राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर कहा कि ट्रस्ट के अनुरोध पर सरकार ने एसआईटी जांच बैठाई है। एसआईटी की जांच से सारी सच्चाई सामने आ जाएगी।
2: हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो।
0: मुख्यमंत्री ने नगर निगम अयोध्या में 290 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 245 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने गोंडा में देवीपाटन और बस्ती मंडल के लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक

0: की। मुख्यमंत्री ने देवीपाटन मंडल के प्रमुख 13 मार्गों के विकास को मंजूरी दी। कुल 4,901 करोड़ 65 लाख रुपए की 1,000 से अधिक विकास परियोजनाओं के प्रस्तावों को स्वीकृति भी दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज बिहार के छपरा जंक्शन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूर्वांचल को सौगात देते हुए दोहरी घाट ओढ़िया ट्रेन सेवा का वाराणसी सिटी तक विस्तार और मऊ आनंद विहार नियमित एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने मऊ के रास्ते संचालित होने वाली छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि आने वाले समय में इस क्षेत्र को बुलेट ट्रेन की सौगात मिलेगी जो दिल्ली से लखनऊ और वाराणसी होते हुए पटना और सिलीगुड़ी तक जाएगी।
1: आने वाले समय में एक और नई चीज चालू होगी, बिहार में बुलेट ट्रेन आएगी, दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से वाराणसी, वाराणसी से पटना और पटना से सिलीगुड़ी, यानी दिल्ली से पटना की यात्रा मात्र 4 घंटे और 41 मिनट की रह जाएगी।
0: इस दौरान मऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर आयोजित समारोह में प्रदेश सरकार के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा भी शामिल हुए। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में इंडिया फर्स्ट की भावना राष्ट्रीय चरित्र बन गई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इसी भावना ने वैश्विक मंच पर भारत के मान सम्मान और सामर्थ्य को नई ऊंचाई दी। इसी क्रम में केंद्र सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों और समावेशी विकास की यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पत्र सूचना कार्यालय वाराणसी द्वारा आज वाराणसी में वार्तालाप मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल और पत्र सूचना ब्यूरो के निदेशक दिलीप शुक्ला भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी समाचार एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
2: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्र सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने आज आगरा में प्रथम ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई कार्य समूह की बैठक आयोजित की। बैठक में केंद्रीय एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी शामिल हुए और उन्होंने सभा को संबोधित किया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने इसे सफल बताया। इस बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, रूस, वियतनाम और भारत सहित ब्रिक्स सदस्य और ब्रिक्स सहयोगी देशों के नीति निर्माता, उद्योगपति और अन्य हितधारक शामिल हुए। पेश है एक रिपोर्ट।
3: ब्रिक्स बैठक की थीम लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण रही। इस दौरान प्रतिनिधियों ने वैश्विक एमएसएमई इकोसिस्टम को मजबूत करने, स्थिरता को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ एमएसएमई की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ हुआ। ब्रिक्स एसएमई फोरम से ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और एमएसएमई के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक वातावरण विकसित करने की उम्मीद है। बैठक में प्रदेश के एमएसएमई मंत्री भूपेन चौधरी भी उपस्थित रहे। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधान

ने आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत लगभग 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का किया वितरण। कहा, युवाओं और उद्योगों के बीच एक मजबूत सेतु है ये योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में 378 करोड़ रुपए से अधिक की 126 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, SIT की जांच से सामने आएगा मंदिर चढ़वा मामले का सच। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्वांचल को दी 3 ट्रेनों की सौगात। कहा, आने वाले समय में दिल्ली से वाराणसी होते हुए सिलीगुड़ी तक चलेगी बुलेट ट्रेन। और केंद्रीय MSME मंत्री जीतन राम मांझी आज आगरा में ब्रिक्स MSME फोरम और तीसरी SME कार्य समूह की बैठक में हुए शामिल। वैश्विक MSME इकोसिस्टम को मजबूत करने पर हुआ विचार विमर्श। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: edition of the English program. Join us next Friday as we continue to bring you the stories and strategies that matter. Until then, I, Shiva Rakesh, say namaskar. Stay informed and stay connected.
1: अंग्रेजी कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे एन इंटरव्यू विद कम्युनिकेशन एक्सपर्ट एंड मीडिया कंसल्टेंट। इस कार्यक्रम में प्रियंका दीक्षित से बातचीत कर रही थी डॉक्टर शिवा राकेश। इसी के साथ अंग्रेजी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत। सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं प्रेम रतन धन पायो, इस फिल्म का गीत शान की आवाज़ में।

0: हिंदी कार्यक्रम के आज के संक में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, सुरेंद्र राजेश्वरी की ओर से। जब शब्दों को मिलती है सांस, जब भावनाएं पहनती हैं मुखौटा, जब जीवन उतर आता है मंच पर, तब जन्म लेता है रंगमंच। यहां आंसू भी संवाद बनते हैं और मुस्कान भी एक अभिनय। यहां हर पात्र में छुपा होता है हमारे समाज का प्रतिबिंब। हमारा सौभाग्य है श्रोताओं कि आज हमारे साथ हैं रंगमंच के सुविख्यात जाने माने रंगकर्मी, लेखक, निर्देशक श्रद्धेय ललित सिंह पोखरिया जी। ललित सिंह पोखरिया जी, हम आकाशवाणी के सुनने वालों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद, और मेरी ओर से आपको भी प्रणाम और इस कार्यक्रम को सुनने वालों को भी प्रणाम।
0: हमारे लिए सौभाग्य है कि आपने आकाशवाणी लखनऊ के सुनने वालों के लिए समय निकाला है। अगर हम रंगमंच को परिभाषित करना चाहें
1: जी,
0: तो हम किस तरह से कह सकते हैं कि रंगमंच क्या है?
1: रंगमंच एक ऐसी जगह है जहाँ जीवन से संबंधित भावनाओं को, विचारों को, कार्यकलापों को एक सूत्र में पिरोकर किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए दर्शकों के सामने प्रदर्शित किया जाता है। इस कार्य में कलात्मकता का बहुत ध्यान रखा जाता है और समय सीमा का ध्यान रखा जाता है, यानी कि बात जो भी कहनी है किसी घटना के माध्यम से कहें या मात्र वार्तालाप के माध्यम से कहें, उसमें या तो भावना होगी या विचार होगा जीवन से संबंधित, या दोनों बातें होंगी, उनको कलात्मक ढंग से समय और स्थान में बहुत ही सुगढ़ता से नियोजित करके दर्शकों के सामने प्रदर्शित करना, ये एक प्रकार से समग्रता में रंगमंच के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है इसको।
0: अच्छा, इसकी शुरुआत हम कहां से मान सकते हैं?
1: रंगमंच की शुरुआत को लेकर पूरे विश्व में अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों के बीच से या अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के बीच से अलग अलग मानवीय दर्शन को ध्यान में रखकर इसका प्रादुर्भाव हुआ है। मुख्य रूप से अगर हम आज पूरे विश्व में बात करें प्राचीनतम इसके उद्गम को लेकर, तो हम अपने भारतवर्ष की बात तो करते ही करते हैं, इसके अलावा यूनान की भी हम बात करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, यूनान साहित्य, कला, खेलकूद और अर्थशास्त्र, राजनीति, इनका उद्भव भी यूनान में एक प्रकार से अपने बिल्कुल एक विशिष्ट स्वरूप में हुआ है। उसी प्रकार से रंगमंच का भी वहाँ भी हुआ है। और हम भारत की बात करें तो मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी बात है, भारत का समय यूनान के समय से रंगमंच के उद्भव का और पुराना है। लेकिन दोनों समाजों में, दोनों संस्कृतियों में रंगमंच को एक कला के रूप में, एक बहुत बड़ा रचनात्मक कलात्मक विधान परंपरा के रूप में उसे आगे बढ़ाने का काम जो है, उसका उद्देश्य समान रूप से दोनों संस्कृतियों में रहा है। जी,
0: अच्छा, भारतीय रंगमंच की अगर हम बात करें तो इसके कौन कौन से ऐसे प्रमुख रूप हैं?
1: कहा जाता है कि हमारे यहाँ वेद, उपनिषद आदि अनेक ऐसे ग्रंथों की रचना हुई जिसके रचयिता या जिसके दृष्टा ऋषियों ने मानव जीवन का लंबे से और लंबे से लंबे समय तक सृष्टि के संसर्ग में कैसे जीवन सुखमय बीत सकता है, यही बातें तो उसमें हैं। जिसमें अद्वैतवाद भी है, जिसमें सृष्टि और जीवन, जीवन में न केवल मनुष्य, जीवन में वनस्पति भी है, सृष्टि में जड़ तत्व भी है, जल और चेतन। जब मैं सृष्टि की बात कर रहा हूं तो मैं जल और चेतन दोनों की बात कर रहा हूं। तो सृष्टि के संसर्ग में जल और चेतन का जो अस्तित्व है और चेतन का जो जीवन प्रवाह है, वो अनंत काल तक या लंबे काल तक कैसे सुखपूर्वक बीत सकता है, इन बातों का निरूपण हुआ है वेदों में। तो कैसे सुखपूर्वक बीत सकता है, वो पूरे ब्रह्मांड का जो सबसे मुख्य तत्व है या एनर्जी है, उसके साथ हमारी संवेदना का अंतर संबंध बनाए रखना, मानव कल्याण के लिए भी, सृष्टि के कल्याण के लिए भी। ऐसे राष्ट्र में, देश में जहां ऐसे ग्रंथ रचे हैं, कालांतर में वहां क्या होने लगा? जितने दुर्गुण होते हैं उन दुर्गुणों का आविर्भाव होने लगा। वैमनस्य, भोग, विलास, ईर्ष्या और तमाम आसुरी वृत्तियों का पनपना भी शुरू हो गया। तो ऋषि मुनियों को चिंता हुई कि भाई ये क्या हो रहा है, तो समाज तो ऐसे बिल्कुल गर्त में चला जाएगा। तो कहते हैं ब्रह्मा जी की प्रेरणा से भरत मुनि नामक जो एक अग्रणी ऋषि थे

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं और अब प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम।

0: और ऋषि समूहों के, उनसे कहा गया कि हाँ कुछ ऐसे उपक्रम की खोज करो जिससे ये जो लिखी हुई शिक्षा है या लिखा हुआ दर्शन है वो प्रत्यक्ष रूप से दृश्य के रूप में ज्यादा प्रभावी होगा और लोग कुमार्ग में से जाने से बचेंगे। और जो वेदों में कही गई बातें हैं, मनुष्य का सृष्टि के सापेक्ष सुखमय जीवन, न केवल मनुष्य का संपूर्ण जीवधारियों का, तो ऐसा तो कब होगा, जब नैतिक मूल्यों का अनुपालन होगा तभी होगा, है ना। तब फिर भरत मुनि ने काफी लंबे समय तक इस पर विचार विमर्श किया और अंत में एक नाट्य शास्त्र का निरूपण किया कि नाट्य जैसे कला का, दृश्य कला का दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने का विधान, तो विधान होगा तो उसका आर्किटेक्चर भी होगा, उसके स्थान की भी बात होगी, उसके अभिनय के तरीकों की भी बात होगी, अभिनय के अलावा किस बात का और ध्यान रखा जाना चाहिए यह भी होगा, प्रस्तुतिकरण का क्या ध्यान रखा जाना चाहिए यह भी होगा। तो इन सारे बातों का समुच्चय है नाट्य शास्त्र में। उसमें जहां नाट्य मंचन होगा वो कितने प्रकार के प्रेक्षा गृह होंगे, तीन प्रकार के, विकृष्ट, कनिष्ठ, विकृष्ट, चतुरस्थ और त्रियस्थ, त्रिभुजाकार, वर्गाकार और आयताकार, इनमें भी तीन तीन प्रकार की साइज होंगे, ज्येष्ठ, मध्यम, कनिष्ठ। ये क्यों इतने प्रकार के ऑडिटोरियम क्यों भरत मुनि ने कल्पित कर लिए थे नाट्य प्रदर्शन के लिए? क्योंकि हर नाटक का कथानक अलग अलग होता है, नाटक की प्रकृति अलग अलग होती है, किसमें युद्ध की प्रवृत्ति है, बहुत एक्शन और उग्र स्वभाव वाला है, लड़ाई का दृश्य है, ये सब है, बहुत सारे पात्र है, तो उसके लिए कौन सा ऑडिटोरियम, ज्येष्ठ
1: वाला जी।
0: और एक सामान्य प्रेक्षक वर्ग के लिए ये, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो सूक्ष्म बात कर रहे हो, बहुत ज्यादा एक्शन ना हो, कम पात्रों का हो और जीवन संबंधी बड़े मर्म की बात कर रहा हूं, तो उसमें दर्शक बहुत दूर दूर नहीं होना चाहिए, पास होना चाहिए, तो उसके लिए कनिष्ठ ऑडिटोरियम। और इसमें तीन स्वरूप, प्रकृति के अलावा त्रियस्त्र, विकृष्ट, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। भरत मुनि ने फिर अभिनय के जो विभिन्न अंग है उन पर भी बात करी कि अभिनेता में ये कौशल तो होना ही चाहिए, कौशल नहीं होगा तो दर्शक प्रभावित नहीं होंगे। तो अभिनय के लिए चार आयाम उन्होंने निरूपित किए, वाणी, शरीर, आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। अब इसको मैं समझाता हूं, इसका श्लोक भी है, आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्व वांग्मयम आहार्यम चंद्र तारादि तुम नमः सात्विकम शिवम।
1: क्या बात
0: है ना। तो ये इसमें आंगिक जो अंग से, एक्शन से, हाव भाव से, गति से, अभिनटन से अभिनेता अपने दिल की बात कहता है, संवाद संभाषण, उच्चारण, स्पष्टता और ध्वनि की संप्रेक्षण शक्ति, उसका अलग अलग स्तर। आंगिक पर तो यथा है जिसमें मुद्राओं का इतना काम है, अब तो वो लोग मुद्राएं समझते भी नहीं, कि भरत मुनि जी तो कहते थे कि प्रेक्षक को भी उतना ही विद्वान होना चाहिए, क्योंकि अब क्या है कि हिरण की मुद्रा है, अगर पात्र, क्यों हिरण तो मंच पर लाया नहीं जाएगा, और हिरण लाया भी जाएगा तो आपके अनुकूल व्यवहार थोड़ी करेगा वो, है ना भाई। दुष्यंत जो है हिरण का शिकार कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, तो मंच में सच का हिरण लाएंगे तो बताने वो दर्शकों में कूद जाए
1: जी जी।
0: वो तो अभिनय से ही जताया जाएगा ना कोई व्यक्ति ही अभिनेता ही हिरण बनेगा। तो हिरण कैसा होता है, उसका जो शरीर का जो पृथ्वी के सापेक्ष स्थिति होती है वह कैसी होती है, उसको कैसे दर्शाया जाए, तो ये एक मुद्रा है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये हिरण की मुद्रा है, इसी तरह सर्प की एक मुद्रा है, ये शेर की एक मुद्रा है, तो वो अभिनेता वैसी मुद्रा बनाता था तो दर्शक समझ जाते थे कि
1: ये शेर है जी।
0: बाकी वाओ, ये सब वाणी का उपयोग और उछलना कूदना ये सब भी शामिल था। तो भरत मुनि ने आंगिक अभिनय पर, शरीर के अभ्यास पर इसलिए बहुत बड़ा अध्याय रचा है।
1: ललित जी आखिरी सवाल, जो लोग नाटक लिख रहे हैं, जो लोग नाटक में अभिनय कर रहे हैं, जो लोग रंगमंच से जुड़े हुए हैं, संघर्ष का ये दौर है, एआई का जमाना है, डिजिटल युग है, उन नवोदित कलाकारों से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या गुरु मंत्र देना चाहेंगे कि वो भी एक दिन ललित सिंह पोखरिया की तरह हिंदुस्तान के नक्शे में उनका भी नाम हो?
0: किसी भी फील्ड में पाने के उद्देश्य से मत आइए, जानने के उद्देश्य से आइए। अभिनय तो बिना तपस्या के नहीं हो, आप तब भी अगर आ रहे हैं तो जितने दिनों आपका प्रशिक्षण चल रहा है पाने की तरफ से, करते करते दुवा स्वप्न में ध्यान मत लगाइए, वही काम करते रहिए। कोई भी फन, कोई भी कला आसान नहीं है, आग का दरिया है, डूब कर जाना है।
1: श्रद्धेय ललित सिंह पोखरिया जी, आज आप आकाशवाणी के स्टूडियोज आए, बहुत विस्तार से आपने बहुत अच्छी सार्थक बातें की, हम यही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि आपकी लंबी और बड़ी उम्र दोनों हो। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: कला, संस्कृति और चेतना का संगम रंग

0: अभी आप सुप्रसिद्ध साहित्यकार, रंगकर्मी, लेखक, निर्देशक श्री ललित सिंह पोखरिया के साथ की गई ये बातचीत सुन रहे थे। इसके साथ हिंदी कार्यक्रम का आज का अंक अब यहीं संपन्न होता है। सुरेंद्र राजेश्वरी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: हिंदी कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है सुगम संगीत। आज के सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं साबरी ब्रदर्स की गायी कव्वाली। कार्यक्रम के आरंभ में आइए सुनते हैं ये कव्वाली।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे साबरी ब्रदर्स की गाई कव्वाली। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
5: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
0: NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
6: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
7: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है चित्रपट से। श्रेया घोषाल की आवाज में आप सुन रहे हैं जब वी मेट फिल्म का ये गीत।

उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।

इस गीत के साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

आने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया, इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित।

0: बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाओ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
2: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा

0: देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था, इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूरदराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
2: As our foreign policy,
3: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
2: Remains a matter of right, not as a struggle.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
5: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
4: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
6: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
4: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
7: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए

0: एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
2: This is the country.
3: यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
1: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिनसन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana. Says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right, calls for setting up a regulatory body to execute it. India slams Pakistan at United Nations, accusing Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. A new round of direct peace talks between United States and Iran postponed amid killing of 21 people in Israeli strike on Lebanon. Israel and Hezbollah later agree to ceasefire. And in sports, Ashmita Chaliha to

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम की। उन्होंने कहा कि आइंदा बरसों में भारतीय नौजवान आलमी तरक्की को फरोग देने, इख्तिरा और इंटरप्रेन्योरशिप में कायदाना रोल अदा करेंगे। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से कोयले से अमोनियम नाइट्रेट तैयार करने वाला मुल्क का पहला कमर्शियल प्लांट उड़ीसा के झारसुगुड़ा में कायम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर चलने का हक एक बुनियादी हक है। उसने इसके नफाज के लिए एक इंजबाती इदारे के क्याम पर जोर दिया है। भारत ने पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने, उन्हें तरबियत फराहम करने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने का इल्ज़ाम लगाते हुए अक़वामे मुत्तहिदा में उसकी सख्त नुक्ताचीनी की है। लेबनान पर इसराइली हमले में 21 अफराद की हलाकत के

0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक तकरीब में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए मालियत की तरगीबात तकसीम की। PMVBRY के नफाज के तहत तरगीबात तकसीम किया जाना एक अहम संग मील की हैसियत रखता है, जो रोजगार से मुंसलिक हुकूमत की अहम तरगीबाती स्कीम है, जिसका मकसद रोजगार के मौके पैदा करने में तेजी लाना, रोजगार फराहम करने में इजाफा और मुख्तलिफ शोबों में समाजी सिक्योरिटी को वसत देना है। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 21वीं सदी में उन ममालिक में मौके फराहम होंगे जो हुनरमंदी को फरोग देंगे, इख्तरा में इजाफा करेंगे और क्वालिटी के आला तरीन मेयारात को बरकरार रखेंगे। उन्होंने कहा कि भारत आगे बढ़कर कायदाना रोल अदा करने के लिए तैयार है। जनाब मोदी ने कहा कि आइंदा बरसों में भारतीय नौजवान आलमी तरक्की में इजाफे, इख्तरा और कारोबार को बढ़ाने के सिलसिले में अहम किरदार अदा करेंगे।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले, और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: जनाब मोदी ने कहा कि पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का मकसद पहली मर्तबा रोजगार हासिल करने वालों को बाइख्तियार बनाना और नौजवानों और सनअत के दरमियान एक पुल का रोल अदा करना है। उन्होंने कहा कि उमंगें, हुनरमंदी और भारतीय नौजवानों की सलाहियत विकसित भारत की राह मुतय्यन करती हैं। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि स्कीम के अब तक तकरीबन 70 लाख नौकरियां कायम की जा चुकी हैं।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
0: स्कीम के तहत पहली बार रोजगार हासिल करने वाले 15,000 रुपए तक की तरगीबात के अहल होते हैं, जो उन्हें अफरादी कुव्वत की हैसियत से तस्लीम किए जाने में अहम मदद फराहम करती है। रोजगार के इजाफी मौके पैदा करने वाले आजिर 3,000 रुपए फी माह तक की तरगीबात के अहल होते हैं, जो फी इजाफी रोजगार पाने वाले के हिसाब से दी जाती है, जिससे रोजगार के पायदार मौके की हौसला अफजाई होती है। इससे कबल तरगीबात की तकसीम से पहले वज़ीर-ए-आज़म ने विज्ञान भवन में कुछ नौजवानों से बातचीत की। इस मौके पर खिताब करते हुए मेहनत और रोजगार के वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी हुकूमत ने वर्करों की बहबूद और मफादात की खातिर 4 अहम लेबर कोड नाफिज किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल उड़ीसा में झारगोड़ा के लखनपुर में कोयले को गैस में तब्दील करने के अमल से मुतालिक प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखेंगे। इस प्रोजेक्ट की तखमीना लागत 25,000 करोड़ रुपए है। कोयले की वजारत ने बताया कि यह प्रोजेक्ट मुल्क की पहली कमर्शियल सतह की कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने की सहूलत की तारीखी संग मील की निशानदेही करता है। ये प्रोजेक्ट भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल्स लिमिटेड के जरिए तैयार किया गया है, जो कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एंड कोल इंडिया लिमिटेड का एक मुश्तरका इदारा है। यह देसी साख्ता कोयले को गैस में तब्दील करने के अमल का इस्तेमाल करते हुए 2000 टन योमिया अमोनियम नाइट्रेट की पैदावार करेगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज अपनी आबाई रियासत के दो रोजा दौरे पर उड़ीसा पहुंची। खराब मौसमियाती सूरतहाल के पेश नज़र मयूरभंज जिले की डंडबोस हवाई पट्टी पर उनकी तयशुदा परवास की लैंडिंग मनसूख कर दी गई, जिसकी वजह से पड़ोसी रियासत मगरबी बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस से राय रंगपुर सड़क के जरिए सफर किया। अपनी आमद के फौरन बाद सदर जमहूरिया ने एम्स भुवनेश्वर सेटेलाइट सेंटर और राय रंगपुर में एक मेगा सब डिविजनल हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। इस पहल से शुमाली उड़ीसा के लोगों के लिए सेहत की देखभाल की मेयारी सहूलत की फराहमी में मदद मिलेगी। वज़ीर-ए-दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा है कि भारत की घरेलू सतह पर दिफाई साजो सामान की

0: तैयारी 2014 में 46,000 करोड़ रुपए से बढ़कर गुज़िश्ता माली बरस में रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई। उन्होंने कहा कि दिफाई साजो सामान की बरामदात जो 2014 से पहले सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए थी, वो अंदरूनी मुल्क तैयार करता भारतीय दिफाई साजो सामान की बढ़ती आलमी मांग के सबब बढ़कर तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए हो गई है। जनाब सिंह नागपुर के अंबाझरी में यंत्र इंडिया लिमिटेड की हथियारों की फैक्ट्री में 10,000 टन एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस का संग बुनियाद रखे जाने के बाद खिताब कर रहे थे। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि इस नए एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस से नागपुर और विदर्भ खित्ते में दिफाई साजो सामान की तैयारी का इको निजाम मुस्तहकम होगा।
1: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज हुक्म दिया है कि चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर पैदल चलने का हक एक बुनियादी हक है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और एएस चंद्रकर पर मुश्तमिल एक बेंच ने फैसला सुनाया है कि एक शहरी का चलने के लिए मखसूस फुटपाथ पर चलने का हक बुनियादी है और उसे मोटर गाड़ियों की आमद और रफ्त पर तरजीह दी जानी चाहिए। एक अहम फैसले में अदालत आलिया ने कहा है कि आर्टिकल 19(1)(d) के तहत आमद और रफ्त के हक की गारंटी का एक हिस्सा है और इसमें आर्टिकल 21 के तहत जिंदगी के हक और जीने की आज़ादी समेत दीगर बुनियादी हुकूक शामिल हैं। अदालत उज़्मा का यह फैसला मोटर गाड़ी के एक अफसोसनाक हादसे में मुआवजे के केस में सामने आया है जहां एक बाप ने स्कूल ले जाते वक्त अपने 5 साल बेटे को खो दिया। भारत ने पिछले 12 साल में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों की बुनियाद पर काबिले ज़िक्र तब्दीलियां की हैं। इस दौरान मोदी हुकूमत ने गरीबों किसानों ख़वातीन और नौजवानों की भलाई और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए बहुत से अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोभा आपके लिए खसूसी फीचर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम शुमाल मशरक में बड़ी तब्दीली लाने से मुतालिक हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम का जायजा ले रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: अगर मुल्क की तामीर और तरक्की की बात की जाए तो शुमाल मशरक को नजरअंदाज करना नए भारत में मुमकिन नहीं है। एक वक्त था जब इस खत्ते की पहचान सिर्फ तशद्दुद, नाकेबंदी और नज़रअंदाज होने तक महदूद थी, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इसे बदला। गुज़श्ता 12 साल में वज़ीर आज़म ने 83 मरतबा से ज़्यादा शुमाल मशरक का दौरा किया है। इस दौरान दूरदराज के पहाड़ी इलाकों तक कनेक्टिविटी बढ़ी है जिसकी वजह से सियाहत को फ़रोग़ मिला है और आमदनी के मकामी ज़राए से मुतालिक मौाक़े बढ़े हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 47,270 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किए जा चुके हैं और 46,290 किलोमीटर से ज़्यादा का रोड नेटवर्क तामीर किया जा चुका है। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए ईटानगर के डेरा नातुंग के गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर एम क्यू खान ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में फिजाई कनेक्टिविटी बेहतर हुई है।
3: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
2: आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में शुमाल मशरक की 8 रियासतें या अष्ट लक्ष्मी तरक्की की नई दास्तान लिख रही हैं। दिल्ली से सुपर्णा साइके की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: भारत ने अक़वाम मुत्तहदा में पाकिस्तान पर दहशतगर्दों को पनाह देने, उन्हें तरबियत फराहम करने और उन्हें दूसरे मुल्कों में भेजने का इल्ज़ाम लगाते हुए इसकी शदीद नुक्ताचीनी की है। भारत ने पाकिस्तान को फ्रैंकनस्टीन स्टेट करार देते हुए कहा कि उसे उस वक्त बेपनाह हैरत होती है जब उसका ही राक्षस उसे जकड़ लेता है। ये बातें अक़वाम मुत्तहदा में भारत के मुस्तक़िल मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी अनुपमा सिंह ने कल कहीं। उन्होंने ये बातें उस वक्त कहीं जब पाकिस्तान

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला मेल हमें भेजा है किसान रेडियो क्लब ग्राम व पोस्ट ललहवा जिला खीरी से विजय पाल यादव, शुभम यादव, शिखा यादव, ऋचा यादव, गुड़िया यादव, सुरभि यादव, राजेश कुमार और विजय पांडे जी ने। ये लिखते हैं कि किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। इसलिए सपनों को सच करना है तो खुद पर भरोसा करना सीखो। बिल्कुल सही बात कही आपने। साथ ही ये लिखते हैं कि आपके द्वारा प्रसारित सभी कार्यक्रम बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं आकाशवाणी लखनऊ को बहुत ही प्यार करता हूँ। आप सभी की प्रस्तुति बहुत ही अच्छी लगती है। हमें भी सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आपको हमारे कार्यक्रम और हमारी प्रस्तुति बहुत पसंद आती है। और साथ ही इन्होंने फरमाइश की है हिमालय की गोद में फिल्म के इस गीत की। तो आइए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज़।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला मेल हमें भेजा है राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश ने छत्रपति संभाजीनगर से। एक और मेल हमें मिला है पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से और इस मेल को भेजा है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह ने। आप सभी ने फरमाइश की है हेमंत कुमार की आवाज़ में इस गीत की। फिल्म का नाम है 20 साल बाद। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: जरा नजरों से कह दो जी

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद अपनी रेडियो साथी शिवानी वर्मा के साथ। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में अगला मेल हमें मिला है पटेल नगर मलोच से, और इस मेल को भेजने वाले हमारे श्रोता हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू। साथ ही एक और मेल हमें मिला है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, और इस मेल को भेजा है टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप ने। और कालका से हमें मेल भेजा है शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज ने। आप सभी ने सुनना चाहा है दीवार फिल्म का ये गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में। आइए सुनते हैं आप सभी की पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, अगला मेल हमें मिला है ग्राम जसवांडी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से। और इस मेल को भेजने वाले हमारे श्रोता हैं दुर्गेश नागनपुरे, राधे श्याम नागनपुरे, वंदना भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांशु और सूरज कुमार ढाकसे। श्रोताओं, अगला मेल हमें मिला है जिला रायबरेली, गांव पहाड़ीपुर से। और इस मेल को भेजा है रामराज, राजू, भानु, रामशंकर पत्रकार बहाई वाले, रक्षा मौर्य, राम सागर साहू, रसूलपुर वाले। आप सभी ने सुनना चाहा है प्यार झुकता नहीं, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में। तो आइए आपको सुनवाते हैं आप सभी की पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, इस कार्यक्रम में अगला मेल हमें मिला है ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से, और इस मेल को भेजा है प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेश, धर्मेंद्र मेघा, नंदिनी, हर्षिता और ममता बाई वर्मा ने। और साथ ही रिंग रोड नर्मदा नगर से हमें मेल भेजा है सूरज वर्मा, नीरज, शिवम, धीरज, चिंता वर्मा, ऋषभ, कनक और भावना वर्मा ने। और रिंगनी छत्तीसगढ़ से हमें मेल भेजा है दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा ने। आप दोनों ने फरमाइश की है पाताल भैरवी फिल्म के इस गीत की, तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़।

0: श्रोताओं, अगला मेल हमें मिला है नेपानगर मध्य प्रदेश से, और इस मेल को भेजा है प्रभुदयाल शिवदे, शिवा बसंतीबाई और गणेश शिवदे ने। और खंडवा से हमें मेल भेजा है श्यामाबाई रायकवार और परिवार के सभी सदस्यों ने। साथ ही अगली फरमाइश हमें भेजी है एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुन्निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और बेबी नुसरा खान ने, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से। आपने फरमाइश की है तलाश फिल्म के इस गीत की मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
1: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना।

श्रोताओं, अगर आप भी इस कार्यक्रम में अपने पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो हमें ईमेल भेजना ना भूलें। हमारी ईमेल आईडी है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। आप अपनी फरमाइश हमें पत्र के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक 18 विधानसभा मार्ग आकाशवाणी लखनऊ। पिन कोड है 226001। अब कार्यक्रम आपकी पसंद से मुझे यानी शिवानी वर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे पत्र व ईमेल अनुरोध पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है चित्रपट से।

अभी आप सुन रहे थे बाजीगर फिल्म का ये गीत, आवाज़ें थी विनोद राठौड़ और अलका याग्निक की। और अब आइए सुनते हैं कुमार सानू की आवाज़ में आशिकी फिल्म का ये गीत।

इस गीत के साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत। आज इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं राजकुमार झा का आदि ताल में पखावज वादन।

0: अभी आप सुन रहे थे राजकुमार झा का आदिताल में पखावज वादन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTUUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
2: घरांगन मा है बहार, कहानी कविता और बदकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
4: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को।
3: रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
4: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके, और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
3: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
4: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना

0: के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
1: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यह अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्णन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचनाओं को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। IX पोर्टल, MyIRINN पोर्टल, .IN ऑक्सन पोर्टल और एक AI संचालित हुज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Prime Minister Narendra Modi today dispersed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come. Mr. Modi said the PM Vikasit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and the industry.
0: प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं और आज इन्हीं में से करीब 10 लाख युवा साथियों को अपनी

0: अपनी पहली नौकरी में 6 महीना पूरा करने पर इस योजना के तहत उसके लाभार्थ के नाते इंसेंटिव भी मिल चुका है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है।
1: Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of a coal gasification project worth over 25,000 crore rupees at Lakhanpur in Jharsuguda district of Odisha tomorrow. The Ministry of Coal informed that the project marks a historic milestone as the country's first commercial-scale coal-to-ammonium nitrate facility. President Draupadi Murmu today inaugurated AIIMS Bhubaneswar Satellite Centre and Mega Health Camp at the Subdivisional Hospital in Rairangpur. The initiative is expected to enhance access to quality healthcare services for people across northern Odisha. The President also dedicated several public welfare and infrastructure projects, including a mega integrated piped water supply project for mining-affected villages in Kusumi Block. The Supreme Court today ruled that the right to walk on a demarcated footpath is a fundamental right. A bench of Justices P.S. Narasimha and A.S. Chandrukar held that a citizen's fundamental right to walk on a demarcated footpath is primary and shall have priority over movement by motorized vehicles. In a significant verdict, the apex court said it forms part of the right to movement guaranteed under Article 19 1D and other fundamental rights including Article 21, right to life and liberty. The National Testing Agency NTA today said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination, which is scheduled for the upcoming Sunday. In a statement, the NTA said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. Meanwhile, the NTA has also launched an official WhatsApp channel for candidates. It said that all official WhatsApp messages will be sent only from its verified number, which is +91 78 27 98 02 87. India has slammed Pakistan at the United Nations as it is accused Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. India called Pakistan a Frankenstein state that gets shocked when its own monster bites back. The remarks were made by Anupama Singh, First Secretary at India's permanent mission to the United Nations yesterday, after Pakistan and the Organization of Islamic Cooperation raised the issue of Jammu and Kashmir during the interactive dialogue on the UN High Commissioner's annual report.
2: This is the country where the sitting defense minister boasts of hosting, training and deploying terrorist state policy, and yet Pakistan calls itself a victim of terrorism. Indeed, a paradox which only Pakistan could sustain. It is a living example of a Frankenstein state which is shocked when its own monster bites back.
1: In badminton, India's Ashmita Chaliha stormed into the women's single semi-final of the Macau Open in China today. Ashmita secured her place in the last four with a straight game victory over South Korea's Kim Min-sun in the quarterfinals. And with that, we end this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11:10 हुए हैं। सभी श्रोताओं को मेरा यानी प्रिया का स्नेह भरा नमस्कार। मैं हाजिर हूँ कार्यक्रम आपकी पसंद और आपकी फरमाइश लेकर। दोस्तों, पहला खत लिखना भी कितना खास होता है। हर लफ्ज में एक एहसास होता
4: है। स्वागत है, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्र प्रथम के मुद्दे पर। तो प्रोफेसर अंशुल जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो एक 12 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रही है और इसमें राष्ट्र प्रथम की अवधारणा और खास तौर पर हम जो पॉलिसी मेकिंग या नीति निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे आप किस तरह से देखते हैं कि वैश्विक परिवेश में, परिदृश्य में किस तरह से इसे एक नई दिशा दी गई है।
5: विगत 12 वर्षों में हमने भारत की यदि विदेश नीति और आंतरिक नीति की दृष्टि से देखें तो वैश्विक राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ साथ हमने वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा दर्शन है, जो सदियों पुराना है, उसको भी वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है और एक रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए

0: विश्व बंधुत्व की भावना के साथ हमने न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़े परिवर्तन किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब नीति निर्माण की हम दृष्टि से देखते हैं, तो हमने भारत की यदि हम ब्रांड इमेज को देखें, तो वो एक विगत 12 वर्षों में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर ये इमेज वैश्विक स्तर पर बनी है, जिसमें भारत को ग्लोबल साउथ का प्रणेता दूसरे देश मानने लगे हैं। और इसके पीछे कारण है, उदाहरण स्वरूप जब 2023 में हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी थी, जिसे कि पश्चिम के शक्तिवान देशों का एक मंच माना जाता था, उसका एक डेमोक्रेटाइजेशन करते हुए हमने अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के रूप में G20 से जोड़ा। तो इस प्रकार से ग्लोबल साउथ की नेतृत्व की भूमिका में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारी पॉलिसी मेकिंग की वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा जो पश्चिम के तमाम शक्तिवान देश हैं और ग्लोबल साउथ के विकासशील और अविकसित देश हैं, उनके बीच संतुलन बनाए रखने का एक पुल का काम भारत ने किया है, लेकिन इसके साथ साथ अपने राष्ट्रीय हितों को भी सर्वोपरि रखा है। तो जब बात आई कोविड की, कोविड के काले समय के दौरान हमने न सिर्फ अपने लिए 140 करोड़ हमारी आबादी के लिए हमने टीके बनाए, होम ग्रोन वैक्सीन्स बनाए, हमने दुनिया भर के देशों को, लगभग 150 देशों को हमने जीवन रक्षक दवाएं और टीके भेजे, और वैश्विक स्वास्थ्य की जो कूटनीति है उसमें एक नया हमने अध्याय शुरू किया। एक रणनीतिक संतुलन हमारी नीति के माध्यम से हमने बनाए रखा। तो हमने नॉन अलाइंड की बजाय ऑल अलाइंड की नीति अपनाई, जिसमें एक ही समय में एक तरफ हम रूस के एक नेचुरल अलाय वर्षों से हैं, उस यात्रा को हम जारी रख पाए, और दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया सफल अध्याय शुरू किया। हम इसराइल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, लेकिन हमारी विदेश नीति में पैलेस्टीन को भी मान्यता है। तो इस प्रकार से उधर यूक्रेन के साथ भी संवाद जारी रखा, क्वाड के माध्यम से अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी की, तो ब्रिक्स की भी हमारे पास महत्वपूर्ण मेंबरशिप है। वैश्विक सम्मान में वृद्धि हुई इस नीति की वजह से, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में 30 से अधिक देशों के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया है। और इसी से समझ में आता है कि कूटनीतिक दृष्टि से, नीतिगत दृष्टि से भारत किस तरह से एक सफल देश के रूप में आगे बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल अंशु, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, तो विदेश नीति के मोर्चे पर भारत के पारंपरिक और नए साझेदारों के साथ संबंधों को किस तरह से प्रभावित किया गया? क्या लगता है आपको, कैसा बदलाव रहा है, ये अच्छा बदलाव रहा है या कुछ चुनौतियां भी रही हैं?
0: ये एक बड़ा और सफल बदलाव मैं मानती हूँ। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तब शीत युद्ध चल रहा था, जिसमें दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। तब की स्थितियों को देखते हुए भारत ने नॉन अलाइन रहने का निर्णय लिया, और तब की स्थितियों के हिसाब से वो महत्वपूर्ण था, जिसमें हम न USSR के ब्लॉक के साथ, न अमेरिका के ब्लॉक के साथ अटैच हुए, बल्कि जो विकासशील देश थे एशिया के, लेटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, उनके साथ हमने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से भू राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, इसमें यह आवश्यक हो जाता है कि अलग अलग विषयों को लेकर जहां जिसके साथ हमारी एक साझा हमारे इंटरेस्ट हैं या हित हैं, वहां पर उन सकारात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाएं, हैंडशेक करें। तो भारत विगत 12 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन ये रहा कि नॉन अलाइंड से ऑल अलाइंड देश बना, और यही कारण है कि एक और रशिया के साथ हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है ही, हम नेचुरल अलाय हैं रशिया के, दूसरी और अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें कि काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को लेकर हमने विशेष तौर पर काम शुरू किया, और वहीं एक इशू बेस्ड इंगेजमेंट भी हमने कूटनीति में जोड़ा। और वो क्या है, तो अलग अलग जो मुद्दे हैं, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा का क्षेत्र हम देख लें, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या तकनीक की दुनिया को देख लें, कृषि का क्षेत्र देख लें, शिक्षा का क्षेत्र देख लें, या सामरिक क्षेत्र देखें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों के साथ हम जुड़े। हम लैटिन अमेरिका के देशों के साथ विगत 12 वर्षों में पहली बार इतना करीब गए, हम अफ्रीका के देशों के पास गए। इन देशों के पास बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये अविकसित देश हैं। तो इनके साथ भारत ने एक रोड मैप बनाया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स अलग अलग देशों के साथ शुरू की। एशिया में हमने अपने पड़ोसियों के साथ और चीन जैसे देश के साथ में रिश्तों को सामान्य करने का प्रयास किया। हालांकि चीन की तरफ से जिस तरह से हमारी सीमाओं पर लगातार चुनौतियां प्रस्तुत की, तो वहां पर फिर हम चुप भी नहीं रहे। तो सबसे हमारी यदि विगत 12 वर्षों में मैं विदेश नीति की सफलता बताऊं, तो वो ये है कि हम एक तरफ राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ, लेकिन विश्व बंधुत्व का दर्शन रखते हुए अलग अलग देशों के साथ अलग अलग अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी मल्टीपोलैरिटी को, मल्टी अलाइनमेंट को, वैश्विक सुरक्षा शांति को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर चीन जैसे देश जब आकर हमारी सुरक्षा के लिए कोई खतरा उत्पन्न करते हैं, या पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद

0: को लगातार पल्लवित पोषित करता है, तो फिर वहां पर भारत सक्षम, समर्थ और सशक्त रूप से जवाब भी देता है। तो इसमें चुनौतियां तो निश्चित तौर पर आती हैं जब पाकिस्तान जैसा देश हमारे सामने हो, जो अपने प्रॉक्सीज को या आतंकवादी संगठनों को लगातार एक्टिव करके आगे बढ़ाते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने का काम करता हो। लेकिन दूसरी ओर द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर हमने जो साख बनाई, जो सफलता, जिस तरह से दूसरे देशों की सहायता की जब उन पर जरूरत पड़ी, तो फिर यहां पर इन चुनौतियों का समाधान भी हम निकाल पाने में सफल रहे हैं।
1: बिल्कुल, जाहिर है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कामयाबी भारत को हासिल हुई उसके बारे में अंशु जोशी जी बता रही थी। अब हम रुख करते हैं एमपी नाथैला साहब का। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय और सुरक्षा के मोर्चे पर अगर हम बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पर, तो पिछले 12 सालों में हुए बदलावों को आप किस तरह से आंकते हैं और इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे?
2: जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो अभी एनवायरनमेंट है, ये आप देखेंगे पहले काफी डिस्ट्रिक्ट में माओ इसका काफी प्रभाव पड़ा हुआ था, जिसके वजह से वहां पर डेवलपमेंट बिल्कुल रुका हुआ था। लेकिन अब जो है, पिछले कुछ सालों में इतना जोर दिया गया माओइस्ट को ख़त्म करने के लिए, और सबसे बढ़िया बात तो ये रहा कि हमारे गृह मंत्री ने एक आदेश जारी कर दिया कि 31 मार्च तक 2026 में एक बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए सीआरपीएफ और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काफ़ी जोर लगाकर, खासकर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जितने भी आतंकवादी थे, इनके पीछे बड़े पैमाने पे ऑपरेशन लगाए और उन

में, झारखंड में और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जितने भी आतंकवादी थे इनके पीछे बड़े पैमाने पे ऑपरेशन लगाए और उन ऑपरेशन में कई माओवादियों को मार गिराया और उनको मार गिराने की वजह से इनका मनोबल इतना नीचे गिर गया कि करीबन 5,000 माओवादी पिछले 2 साल के अंदर अपने आप खुद आके सरेंडर कर गए। और सबसे बढ़िया ये इसका प्रभाव रहा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम निकाला, स्कीम निकाला, जिसमें कि उनको 50,000 रुपये दिए जा रहे थे, उसके अलावा उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी और मकान दिए जा रहे थे। इनके वजह से काफ़ी तादाद में माओवादी अपना जो जंगल में रिहाइश थी वो छोड़ के बाहर आए और सरेंडर कर दिए फोर्सेस के सामने, जिसके वजह से माओवादी का बिल्कुल खात्मा हो गया है। और यहाँ इनके नेता भी जो थे वो भी कई नेता, बड़े बड़े नेता जो कि पहले बड़े कट्टर आतंकवाद थे, उन्होंने आगे आकर अपने आप आत्मसमर्पण किया और इसके वजह से माओवादी तकरीबन ख़त्म ही हो गए। अभी केवल एक ही बचा हुआ है झारखंड में, जो कि पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में वो भी मारा जाएगा या वो खुद सरेंडर कर लेगा, क्योंकि अब उनको भी पता है कि अब यह चलने वाला नहीं है। उन्हीं के कई फॉलोअर्स सरेंडर कर चुके हैं और ये मिसर बेसरा के पास केवल कुछ ही आदमी बच गए होंगे जो कि सेरेंडा फॉरेस्ट के जंगलों में घूम रहे हैं और ऑपरेशन भी कोबरा के बड़े जोरों से जारी है और कुछ दिनों में ये मारे जाएंगे या खुद सरेंडर कर देंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में करीबन 8,000 जो मिलिटेंट्स थे, इंसर्जेंट्स थे, उन्होंने खुद सरेंडर किया, जिसमें कार्बी अंगलोंग के इंसर्जेंट्स थे, बोडोस के इंसर्जेंट्स थे और आसाम के भी इंसर्जेंट थे और उसके अलावा मणिपुर में जो यूएनएलएफ के इंसर्जेंट थे सब ने सरेंडर किया है। और उनके सरेंडर करने के बाद काफ़ी मात्रा में वहाँ पर हथियार ख़त्म हो गए और इंसिडेंट भी ख़त्म हो गए और उस वजह से काफ़ी वहाँ पर शांति फैलाया गया उस इलाके में और उसके वजह से डेवलपमेंट भी काफ़ी ज़ोरों से चल रहा है और इन डेवलपमेंट्स के वजह से लोगों को बहुत फ़ायदा चल रहा है। पहले ये डेवलपमेंट वगैरह रुके हुए थे,

0: उनकी आतंकवाद ने काफी जोरों से वहां पर कब्जा मार के रखा हुआ था और इसको खत्म करने के बाद अब डेवलपमेंट जारी हो गई है। सड़कें बन रही हैं हर जगह, कनेक्टिविटी बढ़िया बन रहा है और करीबन 70 से 80 एयर स्ट्रिप्स भी रिवाइव कर दिए गए हैं कई जगहों में, और जिनके वजह से अब वहां पर एयर फ्लाइट्स भी शुरू हो गए हैं। अब लोगों को काफी सुविधा पहुंच रही है कि वो एक जगह से दूसरे जगह नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं दूसरे जगहों में भी आराम से सफर कर सकते हैं।
1: इसके अलावा आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि घरेलू मोर्चे पर अपने रक्षा उत्पादों में हम किस तरह से और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर का जो बजट है वो बड़े पैमाने पर बढ़ा है, तो उत्पादन किस तरह से हो रहा है जो भारत को और मजबूती की तरफ आगे बढ़ा रहा है?
0: इसमें तो कोई शक नहीं है कि कई जो इक्विपमेंट्स है वो इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं और वो आत्मनिर्भर को अपने फोकस में रखते हुए तकरीबन 38,400 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट वो अब जो है शुरू कर दिया गया है। हमारे यहाँ से हथियार बन रहे हैं और ये एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा पहले जो हम हथियार मंगा रहे थे बाहर से उसमें भी काफ़ी गिरावट आई है। करीबन 5,500 डिफेंस आइटम्स जो पहले हम बाहर से मंगाते थे वो हमने मंगाना बंद कर दिया और अपने ही देश में इन सब का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। तो इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे देश के इकोनॉमी को हो रहा है और उस वजह से जो युवक हैं उन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में। तो इस तरीके से काफ़ी नौकरियां अभी लोगों को मिल रहे हैं, 15 लाख जवानों को इससे काफ़ी फायदा हो रहा है। आज ही के दिन करीबन 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, अब रुख करते हैं प्रोफेसर जोशी का। मैम, आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 12 सालों में भारत को एक रिएक्टिव नेशन के बजाय एक प्रोएक्टिव नेशन के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम उदाहरणों का जिक्र किया आपने कि एक जो ग्लोबल साउथ की एक प्रभावशाली आवाज बन रहा है भारत, साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की भी पहल भी मानवीय दृष्टिकोण से एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो इन सब चीजों का एक फायदा अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर देखें भारत को, तो वो किस तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है?
2: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा में जोड़ा, क्योंकि अक्सर हम अपनी विदेश नीति की सफलता की बात करते हैं, हमने किस प्रकार के की नीतियां बनाई और किस तरह से विश्व के अलग अलग कोनों में जाकर के किस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर मित्रता के नए प्रतिमान स्थापित किए, हम इस पर तो बात करते हैं, पर इसके जो आउटकम्स हैं उसकी चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ ऐसे टेंजिबल आउटकम्स हैं जो हमने अर्जित किए। उदाहरण बताती हूं कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने पिछले दिनों भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की, जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण एफटीए है और इसके साथ साथ एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट भी यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ साइन किया और ये एशिया में भारत दूसरा देश है जिसके साथ ये डिफेंस पैक्ट ईयू ने साइन किया है। अब इस एफटीए के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार से सकारात्मक टेंजिबल दृष्टि से आउटकम्स इसके निकल के आएंगे और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन को तो बहुत उछाल मिलती हुई दिखाई पड़ती ही है। प्रोफेशनल मोबिलिटी की दृष्टि से भी हमारे पास, हम इस वक्त दुनिया की जो यूथ आबादी है, हमारे पास 22% जो यूथ पॉपुलेशन है उसका हमारे पास शेयर है। यदि हम प्रोफेशनल्स की दृष्टि से देखें तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स का और यंग फोर्स का हम देश है, वी आर अ यंग नेशन। तो यूरोप के इन देशों को इसी प्रकार के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो आप देखिए, अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा, इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा, हमारा जो बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड है ईयू के सदस्य देशों के साथ उसमें इजाफा, तो निश्चित तौर पर रेवेन्यू जनरेशन में और एफडीआईज में इजाफा, तो इससे ओवरऑल जीडीपी में बढ़ोतरी। और फिर इसके साथ साथ जो एक रोजगार की बात आती है, क्योंकि हम एक बहुत हेविली पॉपुलेटेड देश है, तो उसमें फिर हमको एक सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और ऐसा हम अलग अलग, यदि आप यूएई के साथ के अपने एफटीए को और हमारी व्यापारिक डील को देखें तो वहां पर भी प्रोफेशनल मोबिलिटी इज इन द सेंटर। आप यदि अभी हमारे साथ, हमारी मर्कोसुर के साथ जो कि लैटिन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग ब्लॉक है, उनके साथ भी एफटीए को लेकर के बातचीत लगभग फाइनलाइज है। पश्चिम एशिया के संकट की वजह से जीसीसी के देशों के साथ भी हमारा एफटीए लगभग फाइनलाइज था, थोड़ा सा वो मुझे लगता है थमता हुआ नजर आता है वहां की स्थितियों की वजह से, पर उसमें भी प्रोफेशनल मोबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ। तो ये तो टेंजिबल आउटकम्स की बात हुई, मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे

0: एक उदाहरण है। तो को अब जैसे यदि मैं डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाऊं, तो पहले हम एक नेट इंपोर्टर देश के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अपनी सफल विदेश नीति के चलते आज हम एक एक्सपोर्टर देश बन के इस एक डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में उभरे हैं, जिसमें अपने आसपास के कई ऐसे देश हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में विशेषकर हमारे होम ग्रोन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको देख करके और चमत्कृत थे, और भारत से उन्होंने हमारे जो होम ग्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो दूसरे इक्विपमेंट हैं, वो लेना शुरू किया है। बहुत सुखद समाचार है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारा जो मेक इन इंडिया का और विकसित भारत 2047 का रोड मैप है, तो कुछ इस प्रकार के आउटकम्स है। उदाहरण स्वरूप वैक्सीन मैत्री, जब हमने 150 देशों को अपने यहाँ के वैक्सीन भेजे, तो उस समय के ब्राजील के, ये एक उदाहरण है, ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे जैर बोल्सोनारो, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने संजीवनी ले जाते हुए हनुमान जी का चित्र लगाया और हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा कि आप नहीं जानते आपने ब्राजील के लिए क्या किया। इसके बाद ब्राजील के साथ हमारा एक अलग स्तर पर स्ट्रेटेजिक डायलॉग और पार्टनरशिप शुरू हुई। तो हमने जब सोरल अलायंस और बायोफ्यूअल अलायंस की स्थापना की, इसका पायनियर किया, तो ब्राजील उसमें हमारा सबसे बड़ा सहयोगी देश बनकर के सामने आया। तो ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपने वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ, पॉजिटिवली किसी दूसरे देश के लिए अच्छा करते हैं, तो उसके कुछ ऐसे आउटकम्स आते हैं जो फिर हमारी जो ये लंबी सुदीर्घ विकसित भारत की यात्रा है उसमें हमें योगदान करते हुए नजर आते हैं। मैं अमेरिका का उदाहरण दूं, अमेरिका के साथ बहुत महत्वपूर्ण डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में लेमोवा, कॉमकासा और बेका नाम के ये लॉजिस्टिक सप्लाईज को लेकर के हुए बड़े महत्वपूर्ण समझौते हैं, और अमेरिका ने अपना रियल टाइम सैटेलाइट एक्सेस भारत को देना शुरू किया, जो कि ऐतिहासिक है। तो ये काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म्स की दृष्टि से देखें या अपने सामरिक क्षेत्र में अपर हैंड की दृष्टि से देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे क्वाड का मंच हो, ब्रिक्स का मंच हो, एससीओ का मंच हो, इप्सा हो, तो I2U2 की हम बात करें, तो भारत जिस प्रकार से अलग अलग अपने इनिशिएटिव्स के चलते आगे बढ़ा है, तो उसमें ग्लोबल साउथ की हमने आवाज मजबूत की, एक पुल के रूप में हम पश्चिम के देशों के और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में एक साथी बन करके आए, और इसके अलावा हमने हमारे मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए विकसित भारत 2047 की यात्रा के लिए बहुत सारे माइलस्टोन्स जो हैं वो अकम्प्लिश किए हैं।
1: और शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में G7 की बैठक के दौरान जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीएम मोदी को एक टफर निगोशिएटर कहा, क्योंकि जब तमाम बायलेटरल ट्रेड समझौतों की जब बातचीत हो रही, तो भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि भारतीय निर्यातकों के साथ जो है किसी भी तरह के लिए उनके लिए नुकसानदायक ये डील नहीं होनी चाहिए, और भारत का सामान, मेक इन इंडिया सामान जो है बिकना, वही प्राथमिकता रही है प्रधानमंत्री मोदी की।
0: बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ, आपने इस बिंदु को भी चर्चा में जोड़ा, और यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में हम देख सकते हैं कि 30 से अधिक दुनिया के देशों ने सर्वोच्च उनके राजकीय सम्मान से नवाजा है। भारत की क्या साख है, भारत का क्या परचम लहरा रहा है दुनिया में, इस बात का ये प्रतीक है। और बिल्कुल टफ नेगोशिएटर है। तो मैं आपको उदाहरण दूं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की जब हम बात करते हैं, तो उसमें लगातार अमेरिका की तरफ से दो बिंदुओं पर हम पर प्रेशर बनाया गया कि एक तो हम रशिया से तेल और गैस लेना बंद करें, और दूसरा ये कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दें। तो चाहे आप पश्चिम एशिया के देशों या मंचों के साथ अपने FTAs को देखें, आप हाल ही में हुए EU के साथ के अपने FTA को देखें, आप दूसरे जो एक दर्जन भर के लगभग अपने FTAs हैं, और अलग अलग जो सेपा है, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक हमारे जो अग्रीमेंट्स हुए हैं कई देशों के साथ में, तो हमने इस बात को जब नेगोशिएशन के लिए स्टेक होल्डर्स बैठते थे, तो इस बात को हमने स्पष्ट किया था कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल सेक्टर किसी के लिए नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव सेक्टर है। हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स और इससे जुड़े हुए जो हमारे भाई बहन हैं, या जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, फिशरीज से जुड़े हुए जो भाई बहन हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ लघु और मध्यम उद्योग, और विशेषकर जो भारतीय कला से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं, उनको कैसे नए नए बाजार मिल सके, उनको कैसे हम प्रमोट कर सके, ये भी जब भी हमने आर्थिक और तकनीकी कूटनीति के हमने समझौते किए हैं या इसको लेकर हम आगे बढ़े, तो वहां प्रधानमंत्री ने इसकी बात की है। तो आखिरकार जब अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील अनाउंस हुई, तो उसमें फिर ये बात स्पष्ट होकर के आई कि इन दोनों बिंदुओं पर भारत ने किसी प्रकार का नेगोसिएशन नहीं किया। और वहीं जैसे रूस से जो तेल और गैस लेने की बात है, सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे हमें रूस से तेल और गैस मिल रहा था। तो हमको उर्सुला वॉन ने भी 2 या 3 साल पहले लगभग ये चेताया था कि हम रूस से तेल और गैस लेना बंद करें, लेकिन तब भी हमारे विदेश मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया था कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को केंद्र में रखते हुए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए वही डिसीजंस लेता है जो भारतीयों के हित में है। जब हम पर प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए गए डोनाल्ड ट्रंप ने जब घोषणाएं की, तो हमारे प्रधानमंत्री

0: ने घोषणा की थी कि भारत के लोगों को मैं इसका नुकसान नहीं उठाने दूंगा और मेरा व्यक्तिगत इसमें नुकसान हो सकता है, मुझे कीमत चुकानी पड़ सकती, मैं इसके लिए तैयार हूं। और इसके बाद भारत ने लगातार अपने जो ये तमाम सफल विदेश नीति से मित्र बनाए हैं, तो हमने इन सबसे सहायता ली, अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया, अपने एक मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस को फिर हमने बढ़ाया, और इसके चलते देखिए हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई ऐसा इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा हम पर जब प्यूनिटिव टैरिफ्स लगे और बड़ा हल्ला मचा था कि अब क्या होगा और नुकसान होगा और अब हम क्या करेंगे, लेकिन आप देखिए कि हमने 7% से ज्यादा और फिर 8% की क्वार्टरली हमने जीडीपी ग्रोथ रजिस्टर की थी,
1: बिल्कुल
0: जो अपने आप में एक ऐतिहासिक ग्रोथ रही। तो ये इस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ में इस प्रकार के अलग अलग अकम्प्लिशमेंट्स के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
1: हम रुख करते हैं एमपी नथालिया साहब का, उनसे पूछते हैं कि सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिक्र किया कि तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रेड कॉरिडोर से ग्रीन जोन में बदलने की रणनीति अपनाई गई थी और वहां भी कामयाबी हासिल लगी, नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा संवाद और समन्वय के भी परिणाम सामने आए। तो आपसे जानना चाहेंगे जो एक और तीन बड़े ऑपरेशन हुए थे, उरी का हम जिक्र करें, बालाकोट का जिक्र करें या ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों का, तो ये तीन जो बड़े एक्शन रहे हैं इसको भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन ऑपरेशंस ने किस तरह से परिभाषित किया और क्या मायने आप देखते हैं यहां पर जो एक एक्शन रहा?
2: इसमें सबसे बढ़िया चीज ये था कि जैसे ही वो कहीं इस तरह के वारदात कर रहे थे, जैसे कि अटैक किया उन्होंने कॉन्वॉय सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर, उरी में अटैक किया और उसके बाद जो पहलगाम में अटैक किया, हमने तुरंत उसका जवाब दिया। ये नहीं कि हम रुके रहे सोचते रहे क्या करना है, लेकिन तुरंत अटैक करके हमने उनको साबित कर दिया कि इस तरीके के हरकत अगर आप करेंगे तो हमारा कार्रवाई एकदम जवाबदारी होगी। और इसमें खासकर जो पहलगाम अटैक हुआ था और जिसके बाद अब सिंदूर चला, उसमें करीबन 100 जो आतंकवादी टॉप के उन लोगों को मार गिराया और कई उनके आतंकवाद के जो बेस अक्रॉस द बॉर्डर थे वो भी खत्म कर दिए गए। हमारे एयरक्राफ्ट ने जाके वहां पर अटैक किया और उनका खात्मा किया, जिसके वजह से उनमें काफी ढीलपना आ गया, अब वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। और इसके अलावा ये भी है कि जब भी वो कोशिश करते थे पहले बॉर्डर से क्रॉस करने के लिए, काफी बार सफल हुए। मैं खुद वहां श्रीनगर में रहा हूँ, गए दिन हमारे एनकाउंटर होते रहते थे। अब जो है हालात काफी सुधर गए हैं और सुधरने की वजह से ये है कि वहां पर डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है और यहाँ तक कि डेवलपमेंट ट्रेन भी चलने लगे हैं, राइट फ्रॉम जम्मू से लेकर बारामूला तक चल रही हैं। पहले ये सब हम सोच नहीं पाते थे। और उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखें तो मिजोरम कनेक्ट हो गया रेलवे से। पहले हमें सिलचर जाना पड़ता था, सिलचर से फिर बाय रोड जाना पड़ता, अब जो है रोड कनेक्टिविटी इतना बढ़िया हो गया थ्रू रेलवे कि लोग सीधे ऐजवाल तक पहुंच सकते हैं दिल्ली से लेकर वहां तक। तो ये जो कनेक्टिविटी है इससे काफी बड़ा फायदा हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को आने जाने में काफी इसमें सुविधा पहुंची है। इसके अलावा ये है कि जब भी वहां से कोई कार्रवाई हो रही है तो उसका हमारा इंटेलिजेंस जो है इतना रोबस्ट हो गया है कि हमें सब पता चल रहा है कि वहां पर अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है और उसी वक्त कार्रवाई कर दी जा रही है ताकि उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो इससे काफी लाभ पहुंच रहा है और आने वाले दिनों में ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट कह रही है कि कश्मीर में काफी पीसफुल सिचुएशन है, अभी अमरनाथ यात्रा भी होने वाला है, काफी तादाद में फोर्सेस पहुंच रहे हैं वहां पे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वहां पर कई जिलों में जहां आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है वो भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि इतना वहां पर शांति फैल चुका है कि AFSPA की बाद में जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
1: सर, क्योंकि आपने तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, इसलिए आपसे ये जानना जरूरी हो जाता है कि आतंकवाद और आतंकवाद को जो लोग पालते पोसते थे उस दौर में या आज से एक दशक पहले की अगर हम बात करें, 12 साल पहले की बात करें, तो उस रुख को आप किस तरह से बदला हुआ आज पाते हैं?
2: पहले ये था कि हमारे पास इंटेलिजेंस का थोड़ी सी कमी थी, लेकिन अब जो है इंटेलिजेंस इतना हमारा रोबस्ट हो गया है कि जैसे ही उनका कोई कार्रवाई वो वहां से करने की कोशिश करते हैं उससे पहले ही हम उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि वो हमारे जवानों पे या हमारे इलाके के अंदर आके हमला ना कर पाए।
1: इतने दिनों में भारत की एक नई डिफेंस कैपेबिलिटी भी सामने आई है, हम चाहे मेक इन इंडिया की बात करें या जिस हिसाब से डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनाए जा रहे हैं, तो ये अब इनका निर्यात भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में होने लगा है क्योंकि भारत की शक्ति पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। इस पे आप कितना ज्यादा जो है इजाफा मानते हैं कि दुनिया के देशों में

0: निर्यात कितना ज्यादा बढ़ा है, उस मोर्चे पर कितनी सफलता मिली है?
1: ये जो ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर, इसमें पाकिस्तान ने भी काफी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इनके जितने भी अटैक करने की कोशिश की गए वो सब विफल कर दिए, क्योंकि हमारे पास जो था एयर डिफेंस सिस्टम काफी रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसके वजह से उनके जितने भी अटैक्स हो रहे थे वो विफल कर दिए गए और हमें ज्यादा उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अगर ये हमारे पास डिफेंस सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं होता, जो कि शील्ड जैसे बन गया था, तो हमारे लिए काफी मुश्किल हो सकता था। लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम के वजह से हम लोग उनको रोक पाए और वो नुकसान नहीं कर पाए।
0: प्रोफेसर जोशी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो भारत की उभरती हुई वैश्विक भूमिका विकसित भारत की तरफ है, इसमें आपको क्या लगता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को किस तरह से गति मिल रही है और आने वाले दिनों में जो एक लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनने का, उसे हम किस तरह से पूरा होते हुए देखेंगे?
2: देखिए, जब हम अपने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देखते हैं, तो हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भारत की जो सफल विदेश नीति है, विगत 12 वर्षों में हम जिस तरह से एक ऑल अलाइंड पॉलिसी पर चले हैं, इसने कैटलिस्ट की भूमिका निभाई है। तो भारत के यदि हम आर्थिक विकास की ओर देखें, तकनीकी प्रगति की ओर देखें, वैश्विक सुरक्षा, अपनी आंतरिक सुरक्षा की बात करें, तो हमारी विदेश नीति जो है, इसके माध्यम से हम इनसे जुड़े हुए लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए लगातार अपने विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी जब कूटनीति को हम देखते हैं, तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर बेस्ड है, मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित है। हम किसी एक देश की हेजेमनी की नहीं, बल्कि मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे वैश्विक राजनीति में लोकतंत्र को बनाए रखना है और साथ साथ हमारे देश का विकास हो और नागरिकों के हितों को प्राथमिकता मिले। तो यदि हम अपने आर्थिक मोर्चे पर जाएं और अपनी आर्थिक कूटनीति की बात करें, तो विकसित भारत 2047 को यदि हम देखते हैं, तो हमारी विदेश नीति का एक बड़ा जो फोकस एरिया रहा है वो FDI रहा है। किस तरह से हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, मैंने लगातार अलग अलग FTAs का उदाहरण दिया, जिनके माध्यम से इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर। फिर यदि हम तकनीक की दुनिया में चले, तो चाहे AI की बात करें या हम डिजिटलाइजेशन की बात करें, तो AI समिट का ग्लोबल साउथ का भारत पहला देश है जिसने इस बार होस्ट करते हुए एक बड़ा कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया, जिसमें देश विदेश से कई राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की और AI को लेकर के जो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने की बात चल रही है, उसमें भी भारत एक प्रणेता की भूमिका निभा रहा है। फिर आप सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में चले, क्रिटिकल मिनरल्स की दुनिया में चले, तो इन सब में अपनी विदेश नीति के माध्यम से हमने जो नई मित्रताएं लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन देशों के साथ जोड़ी है, आगे बढ़ाई है, उसके माध्यम से हम इस लक्ष्य की पूर्ति कर पा रहे हैं, क्योंकि ये विकसित भारत की यात्रा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो इसके जरिए हमारे जो भारतीय उद्योग हैं वो मजबूत होते हैं और जो हमारी ग्लोबल वैल्यू चेन है उससे हम अपने उद्योगों को जोड़ते हुए एक यहाँ पर अपना एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। फिर हम ग्लोबल साउथ की आवाज प्रणेता बन के जो उभरे, तो उसमें जो लगातार हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय मंचों का डेमोक्रेटाइजेशन हो और अंतरराष्ट्रीय मंचों में वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इसमें जो ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसके नेतृत्व की बात करते हैं, इसको आज पूरी दुनिया अपना समर्थन दे रही है, चाहे यूरोप के शक्तिवान देशों को आप देखें या लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के हमारे समकक्षी देशों को देखें। तो UNSC जैसे संस्थानों में भारत लगातार भारत जैसे देशों के नेतृत्व की मांग कर रहा है और अपनी स्थायी सदस्यता के लिए, तो अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर गए, तो वहां स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने इस बात को फिर पुरजोर तरीके से रखा कि भारत को UNSC में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो एक वैश्विक समर्थन जो है वो आज हमें हासिल हुआ है और ये विकसित भारत 2047 का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है हमारे लिए कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अपनी नेतृत्व की भूमिका बढ़े। फिर यदि हम अपनी सुरक्षा की बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, तो आसपास एक फ्लक्स की सिचुएशन है, दो युद्ध चल रहे हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी लगातार तनाव बना रहता है, इन सबके बीच हमारी जो विदेश नीति है वो किस प्रकार से लगातार हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रहे, और अभी पश्चिम एशिया की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जिस तरह से ईरान ने बंद किया और पूरी दुनिया ने संकट को झेला, 40% लगभग तेल, गैस और LPG पूरी दुनिया को सप्लाई होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के माध्यम से, और कुल जरूरत का 80-90% अपना तेल, गैस और LPG चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश मंगाते हैं। हमने लगातार 27 देशों की बजाय 41 देशों से तेल, गैस और LPG मंगाने का हमने पिछले 12 वर्षों में ये काम किया और अपनी जो ऊर्जा आयात हमारा जो है उसको हमने डाइवर्सिफाई किया। तो हमने अपनी इस प्रकार की डायनामिक ऊर्जा पॉलिसी के चलते ऊर्जा सुरक्षा हम बरकरार रख पाए, तब जबकि दूसरे देशों में 40-60-70% तक की मूल्य वृद्धि हुई। आप देखिए कि भारत में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रही, ऑयल गैस की हमारी निर्बाध आपूर्ति लोगों को मिली। फिर

0: टाइम सिक्योरिटी जो है उस पर एक विशेष हमारा ध्यान है। हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन के उभरे हैं प्रशांत क्षेत्र में और हिंद महासागर क्षेत्र में। हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से पहले सागर डॉक्ट्रीन प्रस्तुत किया जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल था। फिर जब दोबारा मॉरिशस की यात्रा की तो उन्होंने महासागर नीति रखी जो कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल है। तो तमाम हिंद महासागर के जो लिटोरल देश है और जो इंडायरेक्टली जुड़े हुए देश है वो सब आज भारत को प्रणेता मानते हुए भारत से जुड़ रहे हैं और हम इन देशों के साथ साझा विकास भी कर रहे हैं। और फिर विदेश देशों में जो अपने भारतीय प्रवासी हैं जो हमारे लिए हमारी जीडीपी के लिए एक बड़ा कहीं ना कहीं योगदान तो करते ही है, हमारी संस्कृति के वाहक है, एम्बेसडर्स हैं, तो उनकी सुरक्षा उनके सशक्तिकरण को भी हमने एक प्राथमिकता दी है। तो आप देखिए जब जब अलग अलग विश्व में हमने संकट देखे वहां भारत ने तुरंत इवैक्यूएशन प्लान्स लॉन्च करके भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया और जो भारतीय वहां पर रह रहे थे उदाहरण स्वरूप रशिया यूक्रेन वॉर में उनको तुरंत भारत वापस लाने की पहल और सफलतापूर्वक इसका भी अकम्प्लिशमेंट हमारी विदेश नीति की वजह से हो पाया। जब हम विकसित भारत 2047 के सामरिक लक्ष्यों को देखें, आर्थिक लक्ष्यों को देखें, तकनीकी लक्ष्यों को देखें, वैश्विक मंचों पर आगे बढ़ने के लक्ष्य को देखें तो अपनी विदेश नीति के माध्यम से हम लगातार अपने विकसित भारत के विजन को मिशन को साकार कर पा रहे हैं।
1: आखिर में आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्र प्रथम की नीति रही है भारत की, वो शायद वही एक वजह है जिसकी वजह से दुनिया भर में जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं अपने नागरिकों की बात करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, तो ये एक नीति इसने देश के नागरिकों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भावना को किस तरह से और कितना मजबूत किया है, क्या मानती हैं?
0: ये जब हम इस नीति को देखते हैं या इस पूरे फिनोमेना को देखते हैं तो ये हमारी विदेश नीति का एक आधार स्तंभ है जिसमें हम राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण की बात करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो हमारी डिप्लोमेसी के एपिसेंटर में हैं और इसके माध्यम से हम किसी के दबाव में नहीं आते, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और विश्व मंच पर अपने हित की तो बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित रखते हैं कि देश विदेश में जो अपने लोग रह रहे हैं भारतीय प्रवासी जो हैं उनकी सुरक्षा और उनके विकास को हम आगे बढ़ा सके। और इसमें फिर हम देखिए एक संतुलन बना के रखते हैं और इसके जरिए हम अलग अलग जो स्वभाव के देश हैं उनके साथ अपने पारंपरिक और नए तरीके के संबंधों को आगे ले जा रहे हैं। संकट के समय हम दूसरे देशों की तो सहायता करते हैं लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे लोग किसी संकट में ना फंसे। तो ये हमारी नेशन फर्स्ट की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि संकट में फंसे हुए भारतीयों को हम सुरक्षित रूप से स्वदेश लेकर के आते हैं। सबसे बड़ा बिंदु आतंकवाद पर जिस प्रकार का रुख पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनाया है, जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स टेररिज्म, तो ये अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता है। ये नेशन फर्स्ट की बात है, ये पीपल फर्स्ट की बात है और इसमें एक बहुत ही गजब का समन्वय हमने अपनी डिप्लोमेसी और अपनी रक्षा शक्ति के बीच में एस्टेब्लिश किया है और इसके चलते, इस नेशन फर्स्ट की बात के चलते आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको हमने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी बड़ी दृढ़ता से रखा है।
1: बिल्कुल, तो अंशु जोशी जी और एमपी नाथाले साहब आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।
3: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 11:45 हुए हैं। अब हमारी आज की दूसरी और अंतिम सभा समाप्त होती है। कल प्रातः 5:52 पर प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।